मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आश्विन मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 8 अक्टूबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 50 सेकेंड्स हुए हैं। आरंभ होती है अब हमारे केंद्र से प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा में आज आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र अरुणा वर्मा। सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार और तकनीक को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त भाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों का समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं देशगान से।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब प्रस्तुत है महेंद्र कपूर के स्वर में ये भक्ति गीत।

कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति के रूप में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में श्री रामचरितमानस के दोहे।

अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए चिंतन में महात्मा गांधी एक यात्रा का 7वां भाग। आलेख और वाचन है सुमित गौतम का।

0: लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी। वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा। आइए चले इस यात्रा में।
1: महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर का एक गीत है जिसमें उन्होंने सर्वहारा के बीच ही अपने प्रभु के होने की ओर इंगित किया है। इस गीत का संक्षिप्त भावार्थ है, अज्ञान के अंधकार में अपने हृदय को छिपाकर किस देवता की पूजा में निमग्न है। तू आंखें मीच कर देख, देवता इस घर में नहीं है। जहां कृषक हल चलाकर अन्न बीज धरती में बो रहे हैं, श्रमी जहां पत्थर तोड़कर पथ बना रहे हैं, धूलि दूसरे जिनके कर और तन है, स्वच्छ वसन छोड़कर उन्हीं के समान तू भी धूल में चल। प्रभु अपनी रचना में बधे सबके साथ हैं। जहां अधम से अधम और दीन से दीन रहते हैं, उसी भूमि पर तुम्हारे चरण निवास करते हैं। तुम तो सबसे पीछे, सबसे नीचे, सर्वहारा जनों के बीच में हो। अनेक लंबे लंबे वर्षों के बाद भी लगता है जैसे बापू का समग्र जीवन इस गीत के शब्द शब्द में बोल रहा हो। आजादी के समय बंगाल जब अमानुषिक बर्बरतापूर्ण अत्याचारों से कराह उठा, लगा जैसे किसी ने लहलहाती फसल में आग लगा दी हो। धर्म, संस्कृति, राजनीति और मानवता सब कुछ जल उठे। निरीह मानवता कराह उठी, उसकी वेदना से कांप उठा सारा राष्ट्र। किसी को कुछ भी सूझना पड़ा कि अब क्या हो। किसी ने प्रतिहिंसा की बात की तो किसी ने दमन की। किसी ने शांति का पाठ शुरू किया और कोई मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। किसी की आंखें फौज पर जमी और किसी ने राष्ट्रीय सरकार की आलोचना करने में गौरव समझा। लेकिन अपने जीवन के 40 वर्ष अहिंसा की साधना में लगा देने वाला व्यक्ति इस खतरनाक समय में भी उसी के हवाले अपने को सौंप, सब कुछ एक दिन छोड़ चुपके से बंगाल की ओर चल दिया। एक लकड़ी और खादी का अंगोछा ओढ़ वह भारत राष्ट्र का कर्णधार पुनः सबसे अधिक शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग के साथ हो लिया। उसने कहा, मैं किसी का इंसाफ करने या किसी के खिलाफ फैसला देने के लिए बंगाल नहीं जा रहा हूँ। मैं वहाँ लोगों के सेवक की हैसियत से जा रहा हूँ। मैं वहाँ के हिंदू मुसलमान दोनों से मिलूंगा। अपनी 17 साल की उम्र से ही मैंने यह सबक सीखा है, सभी इंसान, फिर वो किसी भी कौम, रंग या मुल्क में क्यों ना हो, मेरे अपने सगे हैं। अगर हम भगवान के सेवक हैं तो हमें चाहिए कि सारी सृष्टि के भी सेवक बने। बापू का समग्र जीवन सदा से उस सर्वहारा वर्ग के साथ रहा है जो सबसे अधिक शोषित, पीड़ित और पद्दलित रहा है, जो शांति का जनक और क्रांति का अधिष्ठाता माना गया है और जिसके उत्कर्ष में ही अखिल राष्ट्र का उत्कर्ष जुड़ा है। बापू अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसकी सेवा से कभी नहीं चूके। एक बार आचार्य कृपलानी ने कहा था, मार्क्स तो सेवाग्राम में रहते हैं, यदि आप वास्तविक क्रियात्मक प्रजातंत्र देखना चाहते हैं तो आपको सेवाग्राम जाना चाहिए, जहां लोग बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक बात में पूर्ण समानता का आनंद उठा रहे हैं। जिन्होंने एक बार भी सेवाग्राम की यात्रा की है, वहां की राष्ट्र निर्माण कार्य विधायक संस्थाओं का निरीक्षण किया है, सेवाग्राम के एकांत कोने में व्यक्ति मानव के जरिए विश्व मानव की उपासना में तल्लीन उस सेनानी संत के दर्शन किए हैं, चाहे किसी भी देश या किसी भी जाति या किसी भी विचार के क्यों ना हो, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सेवाग्राम के उस संत की छवि देखते हुए गुरुदेव का ये गीत जैसे कानों में घुलता जाता है। अज्ञान के अंधकार में अपने हृदय को छिपाकर तू किस देवता की पूजा में निमग्न है, वे तो वहाँ हैं जहाँ अधम से अधम और दीन से दीन रहते हैं। सबसे पीछे, सबसे नीचे, सर्वहारा जन के बीच ही उनका निवास।

चिंतन में अभी श्रोता सुन रहे थे महात्मा गांधी एक यात्रा का सातवां भाग। आलेख और वाचन था सुमित गौतम का। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

बड़ी चतुराई से मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में कौशल्या तथा राम के प्रति ऐसे विष का बीज डाल दिया जिसके प्रभाव में सूर्य कुल के सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास सबको एक बारगी सुखा डालने की क्षमता थी। सौत की ईर्ष्या की सैकड़ों उल्टी सीधी मन गणंत कहानियां सुनाकर मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कहती है, हे रानी, अपना मित्र या शत्रु तो पशु भी पहचान लेते हैं, परंतु तुम्हें तो अपने हित अहित की पहचान नहीं है। एक पखवाड़े से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और तुम्हें इसकी सूचना आज मुझसे मिली है। हे स्वामिनी, अब तुम्हारी स्थिति वही होगी जो दूध में पड़ी मक्खी की होती है। यदि पुत्र सहित राजा की चाकरी करोगी तब तो यहां रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। अपने अनिश्चित भविष्य की आशंका से रानी कैकेयी कांप जाती है। अब उन्हें ये भान होता है कि पिछले कई दिनों से उनकी दाहिनी आंख फड़कती रही है और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। वो मन में ठान लेती हैं कि मायके जाकर शेष जीवन बिता देंगी, किंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करेंगी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर। लीजिए अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा, भिंडी की फसल को बीमारियों से कैसे बचाएं। जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, सब्जियों में भिंडी एक प्रमुख फसल है। भिंडी की फसल में अनेक बीमारियों का प्रकोप होता है, लेकिन सभी बीमारियों में पीत सिरा और खर्रा रोग बहुत ही अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। यदि फसल पर पीत सिरा मोजक वायरस का आक्रमण फसल बुवाई के 35 से 40 दिन के अंदर हो जाता है तो फसल की पैदावार बहुत कम हो जाती है। पीत सिरा मोजक एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों की सिराएं कुछ मोटी, पीली और चमकीली हो जाती हैं और धीरे धीरे ये पत्तियां पीली और छोटी हो जाती हैं, बाद में सिकुड़कर मुड़ने लगती हैं। पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और भिंडी विकृत होकर कड़ी, छोटी और हल्के पीले रंग में परिवर्तित हो जाती है, जिससे खाने योग्य नहीं रहती है और बाजार में बेचने पर कीमत नहीं के बराबर मिलती है। भिंडी की फसल में पीत सिरा मोजक रोग का संचरण बेमेसिया टेविकाई नामक तंबाकू की सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। ये मक्खियां भिंडी के पौधों पर से ही अपना पोषण प्राप्त करती रहती हैं और प्रजनन वहीं पर बढ़वार होती रहती है। इस प्रकार रोगी पौधों से रोग के विषाणुओं को स्वस्थ पौधों तक पहुँचाती है। जब ये फसलें खेत में नहीं रहती हैं, जब ये मक्खियां कुछ जंगली किस्म के पौधों पर निष्क्रिय रूप में रहकर अपना जीवन निर्वाह करती रहती हैं, फसल में जिन पौधों पर पीत सिरा मोजक रोग के लक्षण दिखाई दें, उन्हें तत्काल उखाड़कर जलाकर नष्ट कर दें। फसल बुवाई के 35 दिनों तक पीत सिरा मोजक रोग के प्रति अधिक सजग रहें। खेत के आसपास उगे सभी खरपतवारों को समय समय पर नष्ट करते रहें और रोग रोधी किस्में उगाएं, जैसे पंजाब सात, परवड़ी, दीप मालका, क्रांति जैसी प्रजातियों का चयन करके बुवाई करनी चाहिए। फसल को सफेद मक्खी से बचाव के लिए मेटासिस्टा की 3 लीटर मात्रा को 1500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर की दर से 15 से 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। पहला छिड़काव फसल बुवाई के 25 दिन बाद अवश्य करें। इसी तरह फसल पर 5-6 छिड़काव करके सफेद मक्खी की संख्या में कमी संभव है, जिससे रोग की रोकथाम में सहायता मिलती है। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान का प्रयोग भी काफी लाभदायक है। इसी तरह फफूंद जनित खर्रा रोग होता है। इस बीमारी का प्रभाव पत्तियों, कोमल टहनियों और फलों पर होता है। रोग की आरंभिक अवस्था में रोग ग्रसित पौधों की पत्तियों के निचले भागों पर सफेद रंग का पाउडर जमा हो जाता है। यह चूर्ण या पाउडर आरंभ में छोटे छोटे धब्बों के रूप में उत्पन्न होता है और बाद में पूरी की पूरी पत्ती को ढक लेता है। अधिक रोग संक्रमण की स्थिति में पत्तियों पर वक्रता आ जाती है। अंत में पत्तियां पीली पड़कर मुरझाकर गिर जाती हैं। खर्रा रोग की प्रभावशाली और सस्ती रोकथाम के लिए सल्फेक्स या बेटालेस की आवश्यक मात्रा घोल बनाकर हर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। अच्छे परिणाम के लिए पहला छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत करें, जिससे फसल में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव कर सकते हैं और फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा, भिंडी की फसल को बीमारियों से कैसे बचाएं। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव साथी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: पॉलीथिन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथिन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती?

0: जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय, खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
1: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
2: सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। जेब्रा क्रॉसिंग पर अपने वाहन की गति धीमी रखें। हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें क्योंकि दाहिनी ओर से वाहन ओवरटेक करते हैं। कभी भी वाहन के बाईं ओर से ओवरटेक ना करें। सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड्स के निर्देशों का पालन करें। बेवजह हॉर्न ना बजाएं और बड़े वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।

0: सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।
1: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
2: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
1: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ।
2: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
1: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
2: और उसको पिएं छान कर उबाल कर।
1: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
2: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
3: पानी रे पानी,
4: पानी पानी रे पानी,
1: आओ मिलकर करें प्रयास
2: शुद्ध पानी हो सबके पास। याद रखो हमारी बात,
1: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
2: जंगल है धरती का गहना,
1: सदा इसकी रक्षा करना,
2: होगी जो धरती पर हरियाली,
1: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।
5: अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार।
6: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रशासनस्य प्रमुखरूपेण निरन्तरजनसेवां कुर्वता 25 वर्षाणि पूर्णानि कृतानि। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसितभारतसङ्कल्पसभां सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतं दूरदर्शीनीतिभिः अथ कठिनपरिश्रमेण च 47.5 वर्षपर्यन्तं विकसितराष्ट्रस्य स्वप्नं निश्चितरूपेण साकारयिष्यति। विकसितभारतसङ्कल्पसभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् वर्तमानप्रशासनस्य नीतयः सर्वेषां नागरिकाणां कृते

0: समाधानोपायानां प्रदाने केन्द्रिताः सन्ति।
1: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशो भूमि इत्यत्र इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य दशम संस्करणस्य उद्घाटनं करिष्यति। ह्यः आरब्धः ह्यः अयं चतुर्दिवसीय कार्यक्रमः दूरसंचार विभागेन अथ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इत्यनेन च संयुक्त रूपेण आयोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे दूरसंचारस्य अंकीय संपर्कस्य तथा प्रौद्योगिकी नवोन्मेषस्य क्षेत्रेषु भारतस्य उल्लेखनीय प्रगतिं प्रदर्शयिष्यते। सहैव वैश्विकस्तरे सहकाराय निवेशाय तथा ज्ञानविनिमयाय अयं कार्यक्रमः मञ्चं प्रदास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अद्यतनाः तिष्ठन्तु, अग्रेसराः भवन्तु। एक्स्पटले @AIRNewsHindi अथ इन्स्टाग्राम माध्यमे AIRNewsAlerts इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु।
0: वस्तु सेवा कर परिषदः 57वं उपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोजयिष्यते। वित्तमन्त्रिणः निर्मला सीतारमण इत्येतस्याः अध्यक्षतायां भविष्यमाने उपवेशने वस्तु सेवा कर सम्बद्ध विवादानां समाधानाय तथा क्रय सम्बद्ध कर समायोजनस्य प्रवाहं सुदृढीकर्तुं नीति सम्बद्ध परिष्काराणां विषये चर्चा भविष्यति। अस्य उद्देश्यम् अनुपालनाय अपेक्षितं समयं व्ययञ्च न्यूनीकरणमस्ति। वित्तमन्त्रालयस्य सूत्रानुसारं प्रशासनं वस्तुसेवाकरव्यवस्थायाम् आगामि परिष्काराणां कृते पञ्चसूत्रसम्बद्धयोजनायाः प्रस्तावं प्रस्तोष्यति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जन्मदिवसस्य अवसरात् सितम्बरमासस्य 17 दिनाङ्के गुजरातस्य वडनगरात् काशीपर्यन्तं प्रारब्धा सेवासङ्कल्प बाइक यात्रा ह्यः सफलतया सम्पन्ना। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य नितिन नवीनस्य उपस्थितौ गुजरातस्य वडनगरात् काशीपर्यन्तम् आयोजितायाः अस्याः सेवायात्रायाः समापन समारोहं सम्बोधितवान्। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उक्तवान् यत् वडनगरात् काशीपर्यन्तमियं यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः 25वर्षीयं सेवासङ्कल्पं सम्मानयितुम् एकः अवसरः अस्ति। भारतर्तु विज्ञानविभागेन अद्य केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तराखण्ड, पश्चिमबंगाल, सिक्किम चेत्येतेषां स्थलानां केषुचित् क्षेत्रेषु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशो भूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम

0: संचार, उद्यम परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल हैं। आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारक और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा कल काशी में संपन्न हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में आयोजित समापन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में काशी और पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए बदलाव देश के सामने हैं। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपाय करने का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार अर्थव्यवस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उसने रियाद के उत्तर में एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया और यमन की राजधानी सना में उस प्रक्षेपण स्थल को नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल सऊदी राजधानी को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलिबल इनपेंट्रेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि इस वर्ष एक्सरसाइज वायुशक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय अभ्यास ड्रोनाथन और जारी ऐतिहासिक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति सहित कई महत्वपूर्ण विधियों के जरिए वायुसेना अपनी युद्धक तैयारी को लगातार परख रही है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मोचोवा का सामना निकोला बार्तुनकोवा से और मीरा एंड्रीवा का मैच एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:20 पर श्रोता आनंद लेंगे राजेश कुमार शर्मा की कुछ काव्य रचनाओं का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित करेंगे प्रातः 7:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रातः 8:30 पर। सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रस्तुत करेंगे प्रातः 9:00।

प्रातः 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे बलराम पाठक। आप सुनेंगे राग कोमल ऋषभ आसावरी में शास्त्रीय गायन। श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर।

दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आप सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण। दिन के 11 बजे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। दिन के 12 बजे अपराह्न 2 बजे और 2:30 में चित्रपट संगीत के जरिए महिला कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अपराह्न 1 बजे आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति।

शाम 4 बजे श्रोता सुनेंगे विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:02 पर आज आप सुनेंगे आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 6 बजे। शाम 7:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में और फिल्म संगीत सुनेंगे रात 9:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश श्रोता सुनेंगे रात 10 बजे और 10:30 पर कार्यक्रम राग रजनी। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी ग्वालियर और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे।

0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मुंबई में उद्योगपतियों से निवेश पर संवाद करेंगे और खंडवा में 12 और 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इसमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर और गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यम परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने स्टेट पार्टनर के रूप में प्रदेश के टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन अब केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं है बल्कि रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास का माध्यम भी बन गया है। उन्होंने नागरिकों से पर्यटन के लिए देखो पूरा देश पर सबसे पहले मध्य प्रदेश का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि अब चंबल नदी पर गांधी सागर बांध के पास दुनिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज पावर प्लांट स्थापित होने जा रहा है।
1: केन बेतवा, पार्वती काली सिंह और अब तो अभी 4 महीने बाद ही पंप स्टोरेज का वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर संयंत्र मध्य प्रदेश में चालू होने वाला है। चंबल के पास, चंबल की नदी के एक बहुत बड़ा गांधी सागर डैम है। अपने यहाँ ऐसे बिजली के बनाने के लिए पंप स्टोरेज की एक नई टेक्निक चाहिए जिसके बलबूते पर जो पानी एक बार रहेगा वो पानी बार बार रिसाइकल करते हुए आपकी बिजली लगातार बनती जाती, वो बिजली बनाते हुए यंत्र आपने टूरिज्म के माध्यम से भी काम में ले सकते
0: हैं। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को पात्र लोक सेवकों को समय पर पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक समय सीमा में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंध में सभी विभागों, संभायुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अनुसार प्रत्येक चयन वर्ष के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सामान्यतः सितम्बर से नवम्बर के बीच आयोजित करना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक ने कल रेपो दर में 25 आधार अंक यानी 0.25% की बढ़ोतरी कर इसे 5.25 से बढ़ाकर 5.50% कर दिया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन चली बैठक के बाद आज ये घोषणा की। RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई का अनुमान 5% से बढ़ाकर 5.2% कर दिया है, जबकि GDP वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7.1% किया है। रिजर्व बैंक के अनुसार रेपो दर बढ़ने से बैंक ऋण वृद्धि की गति कुछ कम हो सकती है लेकिन इसका समग्र आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मुंबई में फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले होने वाले संवाद में मध्य प्रदेश के क्षेत्र विशेष, औद्योगिक क्षेत्रों और निवेश अवसरों को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी करेंगे। ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, नर्मदापुरम के रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, धार के PM मित्रा पार्क और उज्जैन के मेडिकल डिवाइसेस पार्क की संभावनाएं उद्योग प्रतिनिधियों के सामने रखी जाएंगी। जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। खंडवा में 12 और 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह और गीत संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से किशोर कुमार की जन्मस्थली पुलिस ग्राउंड में होने वाले समारोह में वर्ष 2026 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अभिनेता रघुवीर यादव को अभिनय के लिए प्रदान किया जाएगा। 12 अक्टूबर को ये शाम मस्तानी गीत संगीत संध्या में स्थानीय कलाकार प्रस्तुति देंगे। वहीं 13 अक्टूबर को सम्मान समारोह के बाद गायक सुदेश भोसले गीत संगीत की प्रस्तुति देंगे। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर कांस्टेबल ड्राइवर सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी है। इसके तहत कुल 1000 पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आंधी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज सतना, रीवा, माऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में आंधी और बारिश का अलर्ट है। कल भी पन्ना, सतना, रीवा, माऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल और अनूपपुर में बारिश की संभावना है। प्रदेश से मानसून 3 अक्टूबर को विदा हो चुका है। इस बार मानसून के दौरान प्रदेश में सामान्य से करीब 4% कम बारिश दर्ज हुई। आपको समाचार संक्षेप में। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। झाबुआ में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय बड़कुआ रोड पर आयोजित 3 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। शिवपुरी जिले में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु तहसील स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन आज 8 अक्टूबर से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल नर्मदापुरम स्थित एसएनजी स्कूल खेल मैदान में जिला स्तरीय सेवा ज्योति संकल्प यात्रा निकाली गई। वहीं जबलपुर में भी भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत कल 8 विधानसभा क्षेत्रों में सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली गई। मंडला में वन्यजीव संरक्षण सप्ताह 2026 का समापन हुआ। कान्हा टाइगर रिजर्व कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए पोस्टर पेंटिंग रंगोली और क्विज प्रतियोगिताएं कराई गई। सतना जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों चित्रकूट, रैगांव, सतना, नागौद और रामपुर बघेलान के सभी 1552 मतदान केंद्रों पर युवाओं के नाम जोड़ने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। डिंडौरी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विकसित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मीडियम वेव साथी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः 7:20 और 25 सेकेंड्स हुए हैं। लीजिए अब सुनिए राजेश कुमार शर्मा से कुछ काव्य रचनाएं।
1: एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, देखें।

आशा आश्वासन की चादर, ताना बाना स्वप्नों का। बंद देखें।

का गीत की अंतिम पंक्तियां, यौवन तरुणाई सपनों का दूर दूर तक है जाना, यौवन तरुणाई स्वप्नों का दूर दूर तक है जाना, वृद्धावस्था कुछ असफल स्वप्नों का घर वापस आना, मृत्यु संजोए आहत अनुभव

0: घटाओ घट घट घूमी प्यास। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे राजेश कुमार शर्मा से काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR से भी। इस समय प्रातः के 7:30 और 30 सेकंड्स हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल स्वरों में फिल्म आपकी कसम का ये गीत। बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत से सवारा था राहुल देव बर्मन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का ही, क्षमा कीजिएगा, आनंद बख्शी का ही लिखा हुआ और राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में फिल्म बरसात की एक रात का ये गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
1: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म दाह का ये गीत। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम अभी सुबह के 8 बजे तक आप सुन सकते हैं।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सुरों में फिल्म अवतार का ही गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सुरों में ही मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ और राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में फिल्म बड़े दिलवाला का ये गीत।

श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत आशा भोसले के साथ किशोर कुमार को फिल्म बंदिश में। बोल है आनंद बख्शी के, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

आशा भोसले और किशोर कुमार की गाय फिल्म बंदिश के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़।

0: समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम चार नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
2: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चन को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीददार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन,
5: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टी एन वेणुगोपाल ने बताया कि

0: वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
1: वाटर मेट्रो ने कोची में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोची के बैकवाटर्स ने वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
0: कोची भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है, जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबदान में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउत उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिजान में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
3: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वही का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। जरूरत सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, इसी है नहीं। बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ पहाड़, बीच में हम रहते हैं।
4: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
5: न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा,
6: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, जा अब्दुल।
4: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्निसाक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्निसाक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
7: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
4: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
6: कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
4: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मनोज शाह और दिया चिताले ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनोज और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गाँव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताले की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट 10th इंडिया मोबाइल कांग्रेस एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली दिस मॉर्निंग। 57 GST काउंसिल मीटिंग टू बी हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली टुडे। Veteran actor Nana Patekar passes away in Goa. India joins US and 13 other economies in signing joint ministerial statement to address global excess capacity and production in key manufacturing sectors. IMD forecasts heavy rain in Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. And in table tennis, Manu Shah and Dia Chitale create history, become first Indian mixed doubles pair to reach Grand Smash final, semi-final, I beg your pardon, at China Smash in Beijing. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress, IMC, at Yashobhumi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began

0: One of India's most acclaimed actors, Patekar was known for his performances across Hindi and Marathi cinema with a career spanning several decades. He earned widespread recognition for films such as Parinda, Kranti Veer, Ab Tak Chhappan and Welcome.
1: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है।
2: रह

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि तुषार कांति घोष का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 21 सितंबर। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, प्रयागराज से बीनू प्रजापति और बुढ़ार मध्य प्रदेश से सविता सोनी। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आज़ादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आज़ादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह भर नहीं है, इतिहास उन धड़कनों का नाम भी है जो समय के बीत जाने के बाद भी हमारे अंदर स्पंदित होती रहती हैं। कुछ नाम किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ नाम किताबों के साथ साथ देश की स्मृति में अंकित हो जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है अमर शहीद बाजी राउत का, जिसे याद करना केवल अतीत को याद करना नहीं है, बल्कि उस साहस को प्रणाम करना है जो उम्र का मोहताज

समाज नहीं था। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं, आंखों में सपनों और कल्पनाओं की दुनिया होती है, उस उम्र में उन्होंने अपने हाथों में देश की आन थाम ली थी। इतिहास के पन्नों में धड़कती एक ऐसी घटना जिसकी नमी कभी सूखी नहीं। एक नाव थी, एक नदी थी, एक रात थी, और उस रात से कहीं अधिक काला सत्ता का अंधकार था, और सामने 12 साल के एक छोटे से बच्चे का अडिग साहस। एक ऐसा क्षण जो इतिहास को उजालों से भर गया। मात्र 12 वर्ष की उम्र में अत्याचारी शासन के विरुद्ध लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। बाजी राउत भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर सन 1926 को ओडिशा के ढेंकनाल जिले के नीलकंठपुर नामक गांव में हुआ था, जो ब्राह्मणी नदी के तट पर बसा हुआ है। बाजी राउत एक निर्धन मल्लाह परिवार से संबद्ध थे। उनके पिता का नाम हरि राउत और माता जी का नाम रानिया देवी था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया और परिवार संकट में आ गया। इस कठिन परिस्थिति में उनकी माँ ने उनका पालन पोषण किया। वो आसपास के घरों में धान कूटने और मजदूरी का काम किया करती थीं। बाजी राउत के दो बड़े भाई भी थे। अत्यंत कठिनाई से परिवार का गुजर बसर हो रहा था। आर्थिक कठिनाई के कारण उनकी माँ बाजी राउत की शिक्षा का खर्च भी नहीं उठा पाती थीं। लेकिन जीवन की पाठशाला बड़ी थी। बाजी राउत ने बचपन से ही अन्याय और गरीबी को देखा था। नदी की धार संग बहते उनके जीवन ने मेहनत के पसीने को देखा था और उनके भीतर साहस, स्वाभिमान और निर्भीकता के संस्कार पड़े।

ओडिशा की ढेंकनाल रियासत अपने दमनकारी और क्रूर शासन के लिए कुख्यात थी। प्रजा पर करों का बोझ था बेगार और शासन की कठोरता ने एक व्यापक असंतोष को जन्म दिया था। ये वो समय था जब देश में स्वाधीनता आंदोलन गति पकड़ रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन जारी थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही देसी रियासतों और राज्य रजवाड़ों के अत्याचारों के विरुद्ध प्रजामंडल आंदोलन भी आरंभ हुआ। ढेंकनाल में भी जनता का आक्रोश बढ़ा और वहां प्रजामंडल का गठन हुआ। वैष्णव चरण पटनायक ढेंकनाल प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जो वीर वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने ढेंकनाल के कोने कोने में घूमकर युवाओं, किसानों और मजदूरों को संगठित किया। बालक बाजी राउत अपने गांव नीलकंठपुर में प्रजामंडल की बैठकों में शामिल होते, उनकी बातें सुनते। निर्दोष ग्रामीणों पर सिपाहियों के अत्याचारों ने उनके बाल हृदय को भीतर तक उद्वेलित कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही बाजी राउत ने स्वयं को प्रजामंडल आंदोलन के प्रति समर्पित कर दिया और अपना सामाजिक जीवन एक सजग बाल क्रांतिकारी के रूप में आरंभ किया। प्रजामंडल आंदोलन को निचले स्तर तक मजबूत करने और आंदोलनकारियों के बीच संवाद तंत्र को सुचारू बनाए रखने के लिए बच्चों और किशोरों की एक विशेष शाखा गठित की गई, जिसे वानर सेना कहा गया। बाजी राउत इसी वानर सेना में शामिल थे। वानर सेना के सदस्य ब्रिटिश पुलिस और राजा के सिपाहियों की गतिविधि पर नजर रखते, आंदोलनकारियों तक गुप्त सूचनाएं और संदेश पहुंचाते, गांव में ढोल बजाकर सभा के आयोजन की सूचना लोगों को देते थे। इसके साथ ही नदी, घाटों, जंगलों और गुप्त रास्तों की पहरेदारी भी वो किया करते थे, ताकि पुलिस या राजा के सिपाही अचानक हमला न कर सकें। बाजी राउत दिन रात इन कामों में सक्रिय रहा करते थे। चूंकि वो एक मल्लाह के पुत्र थे, इसलिए अंधेरे में नदी पार कर गुप्त संदेशों के आदान प्रदान में विशेष भूमिका निभाते। इस तरह वो और उनके बाल साथी दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर आंदोलनकारियों को पुलिस की दबिश से बचाते थे। 1938 का साल आते आते ढेंकनाल का प्रजामंडल आंदोलन अत्यंत तीव्र हो गया था। चारों ओर से विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। जनता अब और अत्याचार सहने को तैयार नहीं थी। इन परिस्थितियों ने जनता और शासन के बीच तनाव को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य केंद्र था भुवन गांव। ब्रिटिश और रियासत की सेना आंदोलन से अत्यंत परेशान हो उठे और दमन चक्र तेज हो गया। उद्देश्य था किसी भी तरह प्रजामंडल आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना, लेकिन आंदोलनकारी तो जैसे स्वयं सैनिक बनकर निकल पड़े थे।

ढेंकनाल का प्रजामंडल आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। राजा और ब्रिटिश हुकूमत आंदोलन को किसी भी कीमत पर कुचलने के लिए आक्रामक हो चुके थे। 10 अक्टूबर सन 1938 को ढेंकनाल राजा के सिपाही और ब्रिटिश पुलिस का संयुक्त दल भुवन गांव पहुंचा। पुलिस नेताओं को पकड़ना और ग्रामीणों पर दबाव बनाना चाहती थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका प्रतिरोध किया। इस तरह ये संघर्ष बढ़ने लगा। पुलिस ने निहत्थे ग्रामीणों पर गोली चला दी। इसके बावजूद ग्रामीणों का उग्र विरोध जारी रहा। स्थिति बिगड़ने लगी तो ब्रिटिश पुलिस और सशस्त्र बलों ने गांव से लौटने की सोची। वो सुरक्षित ढेंकनाल शहर पहुंचना चाहते थे और वहां पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता नीलकंठपुर घाट से होकर ब्राह्मणी नदी को पार करना था। 11 अक्टूबर सन 1938 को पुलिस बल नीलकंठ घाट पर पहुंचा। आधी रात बीत चुकी थी। नदी तट पर केवल एक नाव बंधी थी। उस रात पहरेदारी का जिम्मा 12 साल के बाजी राउत पर था। प्रजामंडल के शीर्ष नेताओं ने बाजी राउत को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पुलिस या राजा के सिपाहियों को नदी पार करने के लिए कोई नाव न दी जाए, क्योंकि वो ढेंकनाल से और सैन्य बल लाकर भुवन गांव और नीलकंठपुर में धावा बोल सकते थे। आधी रात को बाजी राउत के पास हथियारबंद पुलिस पहुंची। आदेश आया, नाव खोलो और नदी पार कराओ। सामने बंदूकें थीं और पीछे संगठन का आदेश और गांव की सुरक्षा का प्रश्न। बाजी राउत ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारी आपे से बाहर हो गया। बाजी राउत को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। उन पर बंदूक तान दी गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने नाव की रस्सी को जोर से पकड़ रखा था। बाजी राउत को धक्का देकर जब पुलिस नाव में बैठने की कोशिश करने लगी, तब उन्होंने शोर मचाकर गांव को सचेत करना शुरू किया। बौखलाए अधिकारी ने राइफल की भारी बट से बाजी राउत के सिर पर प्रहार किया। उनके सिर से खून बहने लगा। बावजूद इसके उन्होंने नाव की रस्सी छोड़ी नहीं और गांव वालों को आवाज देते रहे। इस पर क्रोधित पुलिस अधिकारी ने उन्हें गोली मार दी। बाजी राउत वहीं ब्राह्मणी नदी के तट पर शहीद हो गए। शोर सुनकर गांव के लोग घाट की ओर दौड़े। पुलिस ने उन पर गोली चला दी। इस तरह बाजी राउत के कुछ अन्य साथी लक्ष्मण मलिक, फगु साहू आदि भी शहीद हो गए। बाजी राउत की शहादत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। उनकी अंतिम यात्रा ने उड़ीसा में जनता को आक्रोश से भर दिया। ज्ञानपीठ सम्मान से अलंकृत उड़िया कवि सच्चिदानंद राउत राय ने बाजी राउत शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी और इस बाल शहीद की स्मृति को साहित्य में अमर कर दिया। उनका भावपूर्ण स्वर यही था कि ये चिता नहीं साथियों, अंधेरे देश में स्वतंत्रता की वो ज्योति है जिसकी लौ कभी बुझती नहीं, जिसकी लौ कभी बुझती नहीं। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि बाजी राउत का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, बाजी राउत का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
3: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुन रहे सभी श्रोता साथियों को अरुणा का नमस्कार। श्रोता मित्रों, यूं तो हम अपने कार्यक्रम में आपसे रोज ही कुछ अच्छी खबरों से रूबरू करवाते हैं आपको, लेकिन आज अल सुबह हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली। आप में से कई श्रोता साथियों को इसकी जानकारी हो चुकी होगी, दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे। आज के दिन सुबह सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट के कारण इस संसार से विदा लेनी पड़ी।

और फिल्म निर्माता थे, जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते थे। इनका जन्म 1 जनवरी 1951 को मुरुंड जंजीरा महाराष्ट्र में हुआ था। मुंबई के विद्यालय से शुरुआती पढ़ाई की और बाद में सर जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से इन्होंने स्नातक किया। 13 साल की उम्र में पिता के व्यापार में भारी नुकसान के चलते उन्हें चूना भट्टी में फिल्मों के पोस्टर पेंट करने का काम करना पड़ा। संघर्ष के दिनों को झेलते झेलते उन्होंने मराठी रंगमंच से अपने अभिनय शुरुआत की। नाना पाटेकर को 1978 में फिल्म गमन में एक सहायक अभिनेता के रूप में पहला अवसर मिला, लेकिन उन्हें बड़ी पहचान मिली साल 1989 में आई फिल्म परिंदा में अन्ना नामक अपराध सरगना की भूमिका से, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी मुख्य फिल्मों में अंकुश, प्रहार, तिरंगा, क्रांतिवीर, खामोशी, अग्नि साक्षी और अब तक 56, साथ ही वेलकम और राजनीति जैसी फिल्में भी रही हैं। नाना पाटेकर को अभिनय के लिए 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। कला और सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2013 में पद्मश्री से विभूषित किया जा चुका है। नाना पाटेकर अपनी सादगी और परोपकार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के सूखे और संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए नाम फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अभिनीत हुई फिल्मों से वो हमें प्रेरणा देते रहेंगे सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई बातों को उठाने के लिए। इस महान अभिनेता को हमारी ओर से शत शत नमन। और सुनते हैं उन्हीं पर अभिनीत फिल्म प्रहार का ये गीत, विदुषी शोभा गोटू की आवाज़ में।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वाली में श्रोता साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोता मित्रों, आज मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि है। हिंदी और उर्दू साहित्य के महानतम लेखकों में शुमार मुंशी प्रेमचंद का आज ही के दिन निधन हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम यूं तो धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन साहित्य जगत में वो प्रेमचंद या उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही जैसी उपाधियों से जाने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने राजा रानी की काल्पनिक कहानियों से हटकर ग्रामीण भारत, किसानों, मजदूरों और शोषित वर्ग की पीड़ा को अपनी लेखनी का मुख्य आधार बनाया। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियां और 150 उपन्यास लिखे। प्रमुख उपन्यासों में गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन और कहानियों में कफन, पूस की रात, ईदगाह और दो बैलों की कथा आज भी बेहद प्रासंगिक है। उनका मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम है। उन्होंने अपने कलम को समाज सुधार का एक सशक्त औजार बनाया। आज के दिन देशभर में साहित्यिक गोष्ठियां और कार्यक्रम आयोजित कर हम इस महान विभूति को याद कर रहे हैं। इन्होंने भारतीय समाज की संवेदनाओं को अमर कर दिया। श्रोता साथियों, आज ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि भी है। भारतीय राजनीति के युग पुरुष और जेपी के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का आज ही के दिन 1979 को पटना में निधन हुआ था। जेपी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और अद्वितीय राजनीतिक नेता थे। 1970 के दशक में उन्होंने तत्कालीन सरकार की तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। उनके एक आह्वान पर देश का युवा वर्ग सड़कों पर उतर आया था। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता से दूर रहकर जनता के बीच रहने का फैसला किया। वे विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन और भूदान आंदोलन से गहराई से जुड़े रहे। समाज सेवा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज पूरा देश उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रहरी के रूप में याद करता है। उनके विचार आज भी युवाओं को न्याय और पारदर्शिता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।

श्रोता साथियों, आज भारतीय वायुसेना दिवस भी है। भारतीय सशस्त्र सेना का एक प्रमुख और शक्तिशाली अंग है भारतीय वायुसेना, जो देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और रक्षा करता है। इसकी स्थापना 1932 में ब्रिटिश शासन के दौरान रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में हुई थी और मुख्यालय था नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, जो कि भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर का नेतृत्व भारत की राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय वायुसेना भारत की दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना में से एक है। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को रॉयल शब्द हटाकर इसे पूर्ण भारतीय पहचान मिली। भारतीय वायुसेना ने 1947, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध के अलावा कई महत्वपूर्ण अभियानों में देश के लिए अहम भूमिका निभाई है। इसके बेड़े में सुखोई, राफेल, तेजस और मिग जैसे उन्नत लड़ाकू विमान के साथ साथ परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं।

श्रोता साथियों, आज विश्व दृष्टि दिवस भी है। हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को इस दिन को मनाया जाता है। दृष्टिहीनता के विषय में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रोकी जा सकने वाली दृष्टि समस्या और अंधेपन के प्रति लोगों को शिक्षित करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। समय पर आंखों की जांच और सही इलाज के महत्व देना भी इस दिन का मुख्य उद्देश्य है और दुनिया भर की सरकारों और संगठनों को बेहतर नेत्र देखभाल और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित करना भी इस दिन का उद्देश्य है। हम अपनी आँखों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, सचेत रहें, यही इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

और श्रोता मित्रों, अब चलते चलते हमारे युवा श्रोताओं के लिए रोजगार से जुड़ी हुई कुछ बातें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती का अच्छा अवसर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य के

अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। और इस कुल पदों की सबसे ज़्यादा वैकेंसी स्टेनोग्राफर के लिए है। ऐसे में शॉर्ट हैंड का ज्ञान रखने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान पढ़ाई के लिए व्यावहारिक अनुभव और आर्थिक सहयोग की तलाश कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह महीना बेहद खास साबित हो रहा है। देश की मुख्य संस्थाओं और सरकारी विभागों द्वारा स्कूली बच्चों से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति और विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की गई है। इन योजनाओं के तहत विद्यार्थियों को 75,000 रुपये तक की आर्थिक मदद और 20,000 रुपये प्रतिमाह तक का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। ये योजना है विद्याधन स्कॉलरशिप, SDEF स्कॉलरशिप, NHI विंटर इंटर्नशिप और NHRC विंटर इंटर्नशिप। शिक्षाविदों के अनुसार वर्तमान दौर में केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जहां छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को बिना किसी आर्थिक तनाव की पढ़ाई पूरी करने में मदद करती है, साथ ही विशेष योग्यता भी उनके करियर में खासा मदद करती है, तो निश्चित रूप से ये खबर हमारे युवा श्रोताओं के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। और अब समय कह रहा है कि हम आपसे विदा लें। कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अरुणा को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय प्रातः के 9:30 और 30 सेकेंड्स हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं बलराम पाठक। आप सुनेंगे राग कोमल ऋषभ आसावरी में सितार वादन। लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपने सुना बलराम पाठक का राग कोमल ऋषभ असावरी में सितार वादन। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव। साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। अभी प्रातः के 10 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे दमोह जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। दमोह जिले से मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम भी बदल गया है। सुबह शाम जहां मौसम में ठंडी देखी जाती है, वहीं दोपहर में तेज धूप और गर्मी भी देखी जा रही है। सोयाबीन भावांतर योजना के तहत जिले में किसानों के निशुल्क पंजीयन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू हो गई है। किसान 17 अक्टूबर तक निर्धारित 23 पंजीयन केंद्रों पर ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करा रहे हैं। इस खरीफ सीजन में जिले में सोयाबीन का रकबा करीब 50,000 हेक्टेयर में है। इसमें 35,000 से अधिक किसानों ने सोयाबीन की बोनी की है। इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए भी किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। पीडब्ल्यूडी ने बारिश में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी 18 सड़कों के लिए कुल 6,66,18,000 रुपए के टेंडर जारी किए हैं। पहले चरण में 10 सड़कों की 51.5 किलोमीटर लंबाई पर 3,85,72,000 खर्च होंगे। दूसरे चरण में 8 सड़कों की 52.5 किलोमीटर लंबाई पर 2,80,40,000 रुपए खर्च होंगे। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन जेपी सोनकर ने बताया है कि एसटीएमसी स्कीम पहली बार लागू की गई है। इसके तहत एजेंसी को एक साल तक सड़क की देखरेख करनी होगी। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत पिछले दिनों दमोह स्टेशन से द्वारका सोमनाथ यात्रा ट्रेन निकली, जिसको संस्कृति और धर्म न्याय राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में दमोह जिले के 468 तीर्थयात्री सहित रक्षक और पर्यवेक्षक सवार हुए। हमारे संवाददाता से बातचीत में मंत्री श्री लोधी ने बताया,
2: प्रसन्नता का विषय है कि तीर्थदर्शन की एक ट्रेन दमोह से होके जा रही है, जिसमें 468 यात्री जा रहे हैं, 10 अनुरक्षक, 1 पर्यवेक्षक।
1: पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद दमोह से कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबी फोर लेन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अब स्टेट हाईवे 63 को 2 लाइन से 45 मीटर चौड़ा करके फोर लेन में तब्दील किया जाएगा। ऐसा होने से दमोह कटनी के बीच यात्रा समय में करीब 1.5 घंटे तक की कमी आने का अनुमान है। जबलपुर मंडल के डीआरएम कमल कुमार तलरेजा ने सागर से दमोह रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां चल रहे करीब 25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए बन रहा नया एफओबी पुराने ब्रिज से करीब 3 गुना अधिक यानी 12 मीटर चौड़ा होगा। इसमें यात्रियों के लिए लिफ्ट और एक्सकलेटर की सुविधा भी रहेगी। जिले के तेंदुखेड़ा और सवेरा क्षेत्र की सदियों पुरानी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को अब संरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग ने दोनों तहसीलों के 5 प्राचीन स्थलों को राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है। सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दमोह में 2608 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनमें से 2370 कनेक्शन भी किए जा चुके हैं। पिछले

नो सीएसआईआर की 85वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली स्थित एएनएससी परिसर के भारत रत्न श्री सुब्रमण्यम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने डाक टिकट का विमोचन किया। इस डाक टिकट की डिजाइन दमोह निवासी मयंक गाडिया के द्वारा तैयार की गई थी। दमोह पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सीन ऑफ क्राइम मोबाइल फॉरेंसिक वैन मिली है। खास बात यह है कि इस वैन के जरिए फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मौके से ही साक्ष्य का मनोवैज्ञानिक तरीके से संकलन संरक्षण और प्राथमिक परीक्षण कर सकेगी। दमोह जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे दमोह दिल्ली की चिट्ठी, यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: सदी हो तुम।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म आदमी खिलौना है के शीर्षक गीत से। इस गीत को स्वर दिया है अलका याग्निक ने। गीत समीर का है, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और गांव केरू जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द। इसी गीत को सुनना चाह है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल ने। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा राणी, प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश संतोष और पांडुरंग कुंभार। आप सब सुनिए फिल्म आदमी खिलौना है का ये शीर्षक गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और इसी गीत को सुनना चाह है गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खट्टक। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म आईना का शीर्षक गीत। लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में, गीतकार एक बार फिर से हैं समीर और धुन तैयार की है दिलीप सेन, समीर सेन ने। हमें संदेश भेजा है आप श्रोताओं ने भी, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और आदर्श नकल बुलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। आप सब सुनिए फिल्म आईना का शीर्षक गीत, अलका, लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं। श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेशों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम अभी सुबह के 10:58 तक आप सुन सकते हैं। श्रोता साथियों, आज दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। उन्हीं को याद करते हुए हमारे

कुछ श्रोता मित्रों ने हमें संदेश भेजा है उनकी अभिनीत फिल्मों के कुछ गीतों को लेकर, और उनमें से एक गीत हम चुन रहे हैं अभी, फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से। गीत है देव कोहली का और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने, आवाजें हैं जॉली मुखर्जी, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा। धानोरा विटाली तहसील नांदूरा बुल्ढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। इसी गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध किया है। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर विर्क, जयतेग विर्क और मीका विर्क ने। आप सब सुनिए फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन का ये गीत। आवाजें हैं जॉली मुखर्जी, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म वजूद का गीत। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में, गीतकार हैं जावेद अख्तर, धुन तैयार की है जतिन ललित ने, पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। रामहेसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े और स्वप्निल धाड़े, नवाशहर पंजाब से इस गीत को सुनना चाहे गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका और वाणी। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू जाजोरिया और गुड्डू। झज्जर हरियाणा से

इसी गीत को सुनना चाहे तुषार सिंह, रिंकी शेखावत ने। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। आप सब सुनिए फिल्म वजूद का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम अभी आप सुन सकते हैं सुबह के 10:58 तक। श्रोता मित्रों, जैसा कि आप सभी को आज सुबह ही पता चला है कि प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। उन्हीं को याद करते हुए हमारे कुछ श्रोता साथियों ने हमें व्हाट्सएप किया है और संदेश भेजा है उनकी अभिनीत फिल्मों के कुछ गीत सुनवाने के लिए। और अब सुनिए फिल्म खामोशी द म्यूजिकल का ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है जतिन ललित ने। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। दतरंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। बोरखेड़ा पीतरामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूणत। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति और रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। जेलोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा। और जालंधर से मीना कौर और संदीप कौर। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें अनुरोध किया है खंडवा से राकेश, पिंकी और दुर्गा ने। क्राम नागर कोहरा, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। आप सब सुनिए फिल्म खामोशिकल द म्यूजिकल का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में अब लीजिए आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुलाम है मुस्तफा का ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और ए हरिहरन की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है राजेश रोशन ने। पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। हरगोविंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू और शिक्षा संधू, प्रतिष्ठा संधू और मैक्स। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें संदेश भेजा है खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश जगता। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म गुलाम है मुस्तफा का ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति, ए हरिहरन की आवाज़ों में।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म अंकुश से। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठ्ठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परेदी सुरोशे और मायरा सुरोशे। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और राबिन राणा।

फिल्म अंकुश के गीत को सुनना चाह है? शिवाजी को चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनकी मम्मी पापा ने। रोहिदास चौक पंढरपुर महाराष्ट्र से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। सरदना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन। और यहीं से मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन। बागड़ी मोहल्ला रतलाई रतलाम से कपिल, शोभा, फुंदीबाई बागड़ी और सत्य नारायण। किशनगंज बिहार से इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें अनुरोध किया है रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, मेघा राशि, माधुरी किरण और अनुराग मोहन ने। और कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू। आप सब सुनिए फिल्म अंकुश का ये गीत, अशोक खोसला, मुरलीधर और घनश्याम वासवानी की आवाज़ों में। गीत अभिलाष का है और संगीतबद्ध किया है कुलदीप सिंह ने।

0: अशोक खोसला, मुरलीधर और घनश्याम वासवानी की गाय फिल्म अंकुश के इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।
1: नई दिल्ली के यशोभूमि में आज से इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण की शुरुआत हो रही है। 3 दिवसीय इस आयोजन में यहां 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मुंबई में फार्मा मेडिकल डिवाइसेस समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले होने वाले इस इंटरैक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी करेंगे। भारतीय वायुसेना आज अपना 94वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर हिंडन एयरबेस में आयोजित समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने परेड की सलामी ली और उसका निरीक्षण किया। खंडवा में 12 और 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह और गीत संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। किशोर कुमार की जन्मस्थली पुलिस ग्राउंड में होने वाले समारोह में वर्ष 2026 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अभिनेता रघुवीर यादव को अभिनय के लिए प्रदान किया जाएगा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें घर पर बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों के प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। और प्रदेश से मानसून 3 अक्टूबर को विदा हो चुका है। इस बार मानसून के दौरान प्रदेश में सामान्य से करीब 4% कम बारिश दर्ज हुई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन EIR और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हर सुबह जब हम जागते हैं अपनी पूरी ऊर्जा से नया स्वप्न गढ़ने के लिए, तब क्या हम याद करते हैं कि आज भी कोई प्रहरी अपने हिस्से का सुकून देश के नाम लिख रहा है? क्या हम रोज ये महसूस करते हैं कि किसी की चौकन्नी आंखों के भरोसे करोड़ों आंखों में भविष्य के सपने पलते हैं? श्रोताओं, सैनिक होना केवल वर्दी पहन लेना नहीं है, ये अपने हिस्से की धूप किसी और के आंगन के नाम कर देना है। ये अपने घर परिवार को किनारे रखकर देश के नागरिकों की सलामती को सबसे ऊपर रखना है। वो जवान जो सरहद पर खड़ा है, दरअसल वो केवल सीमा की रखवाली नहीं कर रहा है, वो हमारे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बीच एक अडिग विश्वास बनकर खड़ा है। और आकाश के प्रहरी हैं हमारे वायु योद्धा, जिनके लिए आसमान कोई सीमा नहीं बल्कि संकल्प का विस्तार है, जिनके विमानों की गर्जना में भारत के सामर्थ्य का स्वर सुनाई देता है और जिनकी उड़ानें हमें याद दिलाती हैं कि राष्ट्र का आत्मविश्वास जब पंख लगाता है तो आकाश का विस्तार भी छोटा पड़ जाता है। आज 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। आज का दिन उन जांबाज सैनिकों को सलाम करने का दिन है जो आकाश की ऊंचाइयों को उसके पूरे गौरव से छूते हुए कहते हैं, नभः स्पर्शम दीप्तम। हमारे वो वीर जवान जिन्होंने आकाश को अपनी कर्मभूमि बनाया और साहस को अपनी पहचान। तो आज बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने वीर सैनिकों की, बात करेंगे उस ऋण की जिसे किसी भी तरह से चुकाया नहीं जा सकता है, बात करेंगे उस साहस पराक्रम बलिदान और गौरव की जिसे कोई भी पदक पूरा बयान नहीं कर सकता, और उस विश्वास की जिसके कारण हम चैन की नींद सोते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में आप बताइए हमें कि जब आप अपने सैनिकों को याद करते हैं तो आपके मन में कौन सा भाव सबसे पहले उठता है? अपने वीर सैनिकों को याद करते हुए आज आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए हमें। बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
2: नमस्कार, मैं लक्ष्मी ठाकुर बात कर रही हूँ, ग्वारा ललन खीरा जिला छतरपुर से।
1: लक्ष्मी ठाकुर जी, कैसी हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो इसी का संदर्भ लेते हुए आज हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो सैनिकों के नाम कुछ संदेश दें। सैनिकों के लिए उनके मन में क्या भावनाएं हैं, वो क्या सोचते हैं?
2: जी देखिए, जो सैनिक हैं वो दिन रात सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देश की रक्षा करते हैं।
1: जी
2: जी, अपने परिवार से दूर

0: रहकर दिन रात चाहे ठंड हो या गर्मी हो, हर पूरे मन से अपने देश की सेवा करते हैं और हमें सुरक्षा देते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी, तभी तो हम यहाँ अपने देश की सीमा के अंदर आराम से बैठ कर रह पाते हैं। जश्न मनाते हैं, जब हम त्योहार मनाते हैं तो वो वहाँ सीमा पे रहते हैं।
1: जी, जब हम त्योहार मनाते हैं तो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे होते हैं कि हमारे त्योहार में कोई खलल न पड़े, हमारी जिंदगी में कोई अशांति न हो, हम सुरक्षित रहें। तो किस तरह से उनका ऋण चुकाया जाए, है ना? हम तो सिर्फ कृतज्ञता ज्ञापित ही कर सकते हैं, उन सैनिकों को सलाम कर सकते हैं।
0: जी, सलाम कर सकते हैं और जितनी बनी देश के लिए हम कुछ कार्य करें।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि चूंकि उनका तो पूरा जीवन ही देश के लिए है, वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम एक भारतीय होने के नाते एक अच्छे नागरिक बने, अपने सभी कर्तव्यों का ठीक से पालन करें। ये भी एक तरह से हमारी ओर से देश की सेवा होगी, है ना?
0: जी, समाज में सामंजस्य बना के रखे सभी से।
1: जी, तो लक्ष्मी जी, सैनिकों को याद करते हुए बस यही बात मुझे याद आती है कि वो कहते हैं कि हम ही कृष्ण का चक्र सुदर्शन, हम अर्जुन के तीर हैं, ध्रुव प्रहलाद भरत के भाई, हम अभिमन्यु वीर हैं, हम हंसते हैं तूफानों में, रोना धोना क्या जाने, भारत माँ की संताने हम शीश झुकाना क्या जाने, धरा उठा लें गगन झुका दें, उठें चले सीना ताने, भारत माँ की संताने हम शीश झुकाना क्या जाने।
0: और जी, मैं भी एक पंक्ति बोलना चाहूंगी।
1: जी,
0: श्रीनगर हो या गुवाहाटी और अपना देश अपनी माटी,
1: क्या बात है।
0: और मैं सलाम करना चाहती हूँ उन वीर सैनिकों को जो दिन रात सीमा पर हैं और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं।
1: लक्ष्मी जी, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने फोन किया और अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: बद्र प्रसाद कुशवाहा, ग्राम हथेड़ा, तहसील बिजराहगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से।
0: बद्री प्रसाद जी, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी
0: देखिए, 8 अक्टूबर की जो तारीख है उसे हम भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना की आधिकारिक स्थापना इस दिन हुई थी, है ना? और आप जानते ही होंगे कि पहले भारतीय वायुसेना का जो नाम था वो था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, लेकिन 1950 में भारत के गणराज्य बनने के साथ ही रॉयल शब्द हटा दिया गया और हमारे देश की सेना कहलाई भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना के सैनिकों को ही नहीं बल्कि हम अपनी तीनों सेनाओं के सैनिकों को याद कर रहे हैं आज के दिन, और हम चाहते हैं कि अपने सैनिकों के नाम आपका क्या संदेश है, उनके लिए क्या भावनाएं हैं आपके मन में, वो आप रखें।
1: मेरी भावना तो यह है कि देशभक्ति के प्रति हम लोग जैसे कि उन्हीं के सहारे में हम पूरा देश अभी तक सुरक्षित है।
0: बिल्कुल
1: जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैम उनका सम्मान करना चाहिए।
0: जी, उनके होने से ही हमारा देश सुरक्षित होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम तो अगर कोई भी रोजगार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो कुछ घंटे हमारे निश्चित हैं, लेकिन हमारे जो वीर सैनिक हैं वो 24 घंटे दिन रात, है ना, और मौसम को भी नहीं देखते कि ठंड का मौसम है या बारिश है या धूप है। बहुत तेज गर्मियों में भी वो तैनात रहते हैं, बहुत अधिक ठंड में भी वो तैनात रहते हैं, बर्फीली चोटियों पर वो खड़े रहते हैं।
1: उनका सहयोग देना चाहिए मैम।
0: बिल्कुल, उनके प्रति हम आभार कर सकते हैं, उनका सम्मान हमें करना ही होगा, ये एक कर्ज है हर भारतवासी के सर पर, है ना, सैनिकों का एक कर्ज है जिसे अदा करने का आप क्या सोचते हैं, क्या तरीका हो सकता है?
1: हमें तो मैम उनको तो इतना नमन करना चाहिए मैम कि ताकि हम लोग की देश के प्रति उन लोग का आत्मसमर्पण, सब कुछ समर्पण किए हैं मैम।
0: बिल्कुल, वो अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, न केवल अपना जीवन बल्कि अपना परिवार, अपनी खुशियाँ, अपने त्योहार, सब कुछ तो वो समर्पित कर देते हैं भारत माँ के चरणों में, है ना? तो उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। और बद्री प्रसाद जी, मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि वो अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे नहीं सहा जाता, ये सच है दाग गुलामी के उनने लहू से धोए हैं, हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं, है ना? तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, शत शत नमन करते हैं। आपने अपनी भावनाएं उनके लिए रखी।
1: मैं भी अपने तरफ से तीनों सेनाओं को नमन करना चाहता हूँ मैं।
0: तीनों सेनाओं के वीर सैनिकों को हमारा शत शत नमन। आपने हमें फोन किया, आपका बहुत आभार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। नमस्कार, नाम बताइए।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आपका नियमित श्रोता अमित तिवारी बोल रहा हूँ।
0: अमित जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है। और सुनीता सिंह जी बात कर रही हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: आपकी आवाज ही मैम पहचान है वो जी मान के चलिए।
0: हाँ।
1: आपकी आवाज हम लोगों के कानों तक पहुंचती है जी मान के चलिए कि हमारे जब कानों के द्वारा फिर अंदर रग रग में जाती है तो प्रफुल्लित हो जाता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका स्नेह है, आपका प्रेम है। अच्छा अमित जी, 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे वीर सैनिक हैं उनके प्रति आपके मन में जो भी भाव हो वो आप रखें।
1: बिल्कुल, इस दिन आसमान में सफेद सुकोई सुकोई तेज और प्रचंड जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान जैसे इनके वो बताए जाते हैं, तो इसमें क्या है कि सभी लोगों को सजग रहना चाहिए।
0: देखिए, जो भारतीय वायुसेना है वो दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है ना?
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल।

0: आसमान में उनकी वीरता के कितने ही कारनामे हमने देखे हैं और कई युद्ध हुए हैं जिसमें हमने ये महसूस किया है कि ज़मीन की सुरक्षा, अपनी जलीय सीमाओं की सुरक्षा, लेकिन अगर आसमान में आप प्रबल हैं तो फिर आप जीत जाते हैं, जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो हमारी वायुसेना के जो वीर सैनिक हैं वो लगातार तत्पर रहते हैं और रक्षा करते हैं देश की। जो सैनिक हैं, तीनों ही सेनाओं के जो सैनिक हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, उनके लिए आपके मन में क्या भाव हैं?
1: तो बस इसके लिए मैम हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे 94वां स्थापना दिवस 2026 में, इस वर्ष 2026 में भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के 94 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है।
0: देखिए, जो हमारी भारतीय वायुसेना है उसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, है ना? इसका भाव है कि गौरव और तेज के साथ आकाश को स्पर्श करो। और बिल्कुल हमारे जो सैनिक हैं इसी तरह से आकाश को स्पर्श करते हैं, हमारी सुरक्षा में वो तैनात रहते हैं। तो अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत आभार। इन पंक्तियों के साथ कि प्राणों को हमने सदा अकिंचन समझा है, सब कुछ समझा हमने धरती की माटी को, जिससे स्वदेश का गौरव उठे और ऊंचा, जीवित रखा हमने हर उस परिपाटी को। हमारे सैनिक बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, उन्हें हम शत शत नमन करते हैं और आपको करते हैं धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं ग्रामा पोस्ट गौना कुसमार थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो मित्र दीपक कुमार नामदेव बात कर रहा है। दीदी,
0: दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में।
1: जी दीदी,
0: क्या कहेंगे आप अपने सैनिकों के लिए, हमारे जो वीर सैनिक हैं तीनों ही सेनाओं के, उनके नाम क्या संदेश है आपका?
1: जी दीदी, जैसे हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों हैं, इन्हीं के प्रति हम लोग सुरक्षित हैं, नहीं तो आज हम लोग अंग्रेजों के गुलाम होते।

0: जैसे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, एक हमारे यहाँ की झांसी वाली रानी भी विश्व विख्यात ही है, और हम सभी वायुसेना के सैनिकों से यह उनको संवेदना देते हैं कि जो आज हम सुरक्षित हैं उन्हीं की बदौलत है, इसलिए वो तन धन और अपनी जान से भी लड़ रहे हैं और हम लोगों को सुरक्षित रखे हुए हैं भारत भूमि पर।
1: बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है हमेशा ही दीपक जी कि परिवार तो हम सबके हैं, उनके भी परिवार होते हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरे भारत के जो लोग हैं उनको परिवार माना है ना?
0: जी जी, ऐसा ही हमारे दिसंबर माह की घटना है, 25 दिसंबर को हुई थी, हमारे पड़ोसी गांव सोजना के एक सिक्किम हादसे में हो गए थे शहीद चरण सिंह, जो आतंकवादियों से लड़ने के लिए जा रहे थे और एक घाटी में उनका दुर्घटनाग्रस्त वाहन हो गया था, उसमें उनका निधन हो गया था, उनके लिए भी हम शोक व्यक्त करते हैं। जब हमारे सोजना गांव में जब उनको सलामी दी गई थी तो हजारों की तादाद में संख्या थी, उस दिन हम लोगों को किसी गांव में ना तो चूल्हे जले थे और हम लोगों को भावुकता हुई होती कि अगर हम लोग भी जवान में होते तो इसी प्रकार हम भी रक्षा देश के लिए करते।
1: क्या नाम बताया आपने उनका?
0: चरण सिंह।
1: चरण सिंह
0: सिक्किम हादसे में शहीद हो चुके थे भी।
1: जी जी, तो चरण सिंह जी को हम भी शत शत नमन करते हैं और उन्हें याद करते हुए मन में यही बात आती है कि उन वीर शहीदों को प्रणाम जो राष्ट्र तपोधन के समान, जिनका जीवन जीवन समान, जिनका यौवन यौवन समान। बिल्कुल, जीवन कैसा होना चाहिए ये बताते हैं हमारे वीर सिपाही, यौवन कैसा होना चाहिए, एक युवा को कैसा होना चाहिए ये बताते हैं हमारे वीर सैनिक। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और दीपक जी आपने हमें फ़ोन किया, आपका आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो हमने सोचा कि बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, क्यों ना हमारे श्रोता सैनिकों के नाम कुछ संदेश दें, वो क्या महसूस करते हैं अपने वीर सैनिकों को लेकर, ये हम जानना चाहते हैं।
1: मैम आपने बहुत ही अच्छा विषय चुना है 8 अक्टूबर का। मैम और इसमें देखिए सभी श्रोता जानते हैं और साथ ही साथ मैम हम सभी श्रोताओं को बताना चाहते हैं मैम, जो हमारे सैनिक हैं ये अपने परिवार की चिंता ना करके अपने देश की चिंता करते हैं मैम, अपने लिए जागते हैं, उनके घर में अभी कोई भी संकट आ जाए तो उसकी परवाह नहीं करते हैं, फिर भी देश की चिंता करते हैं मैम। तो ये सबसे वो है मैम जो कि अपने परिवार की चिंता ना करके गर्मी धूप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं मैम अपने लिए, तो ये तो उनको मैम इतना भी इनका वो किया जाए मैम कम है।
0: बिल्कुल, हम रातों को चैन से सोते हैं क्योंकि वो रात भर जागते हैं, है ना, वो सीमाओं पर तैनात रहते हैं, चौकसी करते हैं, तब हम चैन की नींद सोते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियों को थोड़ा सा किनारे करके वो देश के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करते हैं।
1: जी मैम।
0: अखिलेश जी आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, तो सैनिकों की हमने बात तो की है लेकिन जो भारतीय वायुसेना है उसका पराक्रम अद्भुत रहा है। इतिहास की तरफ जब हम लौटते हैं तो हम पाते हैं कि आजादी के तुरंत बाद 1947-48 में ही जो कश्मीर में घुसपैठ हुई थी, एक संघर्ष हुआ था, उसमें जो हमारी भारतीय वायुसेना ने किया था वो बेहद रोमांचक और बहुत ही स्मरणीय उसका योगदान रहा है। बहुत कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना के जवानों ने रसद और जवानों दोनों को श्रीनगर पहुंचाया था। तो हम सलाम करते हैं अपने भारतीय वायुसेना के सैनिकों को और साथ ही तीनों सेनाओं के सैनिकों को हम नमन करते हैं।
1: जी मैम, अभी जैसे मैम अभी एक जम्मू कश्मीर में भी हुआ था मैम एक हादसा,
0: जी जी,
1: वहाँ पर जो लोगों को मारा गया था आपने भी सुना होगा, हमारे श्रोताओं ने भी सुना था,
0: जी जी।
1: तो इसके लिए मैम जैसे ही हमारे सैनिकों को जानकारी मिली तो वहाँ पर मैम समय से पहुँच गए थे सैनिक, जो कि उसको रोका गया बिगर उसकी परवाह किए हुए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको उठा उठा के उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचा रहे थे, अपनी जान की बिगर परवाह करी।
0: ऐसी जगह पर पहुंचना और लोगों की सहायता करना, ऑपरेशन सिंदूर तो हमारे लिए गर्व का विषय है ही, है ना, हमारे जो जाबाज वीर सैनिक हैं उनके पराक्रम का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है ये। तो हम तो यही कह सकते हैं कि बढ़े अगम की ओर विहंस कर, होड़ लगाकर प्राणों की, राष्ट्र यज्ञ की पूर्ण आहुति की, देकर बलि अरमानों की, देकर बलि अरमानों की। हम अपने सभी वीर सैनिकों को नमन करते हैं और अखिलेश जी आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत आभार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं खातेगांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: गोविंद जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है बस।
0: आप जानते ही हैं कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे वीर सैनिकों के नाम संदेश दें, अपनी कुछ भावनाएं उन तक पहुंचाएं।
1: वीर संदेश क्या है, उनके कारण तो अपन जो जा ही रहे हैं, वो तो उन्होंने बहुत मेहनत करी और उससे पुराने लोगों ने भी वो मेहनत करी जिसका उपयोग अपन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनको तो बहुत सम्मान देना चाहिए, वो तो ईश्वर के सेकंड रूप है यही मान के चलो।
0: बिल्कुल, भगवान का दूसरा रूप है। और कितने ही लोगों
1: तो
0: का
1: क्या है कि उनके फैसिलिटी से तो अपन लोगों को आराम है, और वो नहीं करते और वीरगति नहीं होती उनकी, और सीमा पे नहीं रहते तो अपने हाल बहुत खराब होते।
0: चारों ओर से सीमाओं की रक्षा वो करते हैं,
1: वो करते हैं,
0: है ना। जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, हमारे वीर सैनिक 24 घंटे तैनात रहते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। और अगर हम वायु सेना की बात करें गोविंद जी, तो देखिए जो 1971 का युद्ध था, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, उसमें वायुसेना का जो योगदान था वो अतुलनीय था। लौंगेवाला का युद्ध कोई भूल नहीं सकता है ना। इसी तरह से 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, और इसमें भी जो भारतीय वायुसेना है उसने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसे दुनिया देखती रह गई। और आज जो हमारी सेना है, 0 से 50 डिग्री नीचे तापमान में सियाचिन पर तैनात है और सैनिकों तक रसद और रक्षा पहुंचाती है, रक्षक सेवा पहुंचाती है, है ना। तो हमारे जो वीर सैनिक हैं उनको हम क्या ही दे सकते हैं, है ना।
1: और अभी भी तैनात है ना, अभी भी
0: 24 घंटे वो तैनात
1: है, 24 घंटे वाले है ना वो। तो बिल्कुल,
0: त्योहार हमारे होते हैं वो कहाँ त्योहार मनाते हैं, वो तो सीमाओं पर जो भारत माता है उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं, है ना। उनका जीवन कितना अलग होता है, सिर पर कफन बांध आजीवन, ताल ठोक भूचालों से, एक आकी जूझते रहे जो अंधड़ और तूफानों से, वो हमारे सैनिक हैं। तो उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। और गोविंद जी, आज आपने हमें फोन किया, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार मैम, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ।
0: मोहम्मद वक्कार फरीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात आपकी
1: और
0: गीत हमारे
1: मैम
0: कार्यक्रम
1: आज
0: में।
1: मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, आज इस प्रोग्राम में मैं पहली बार शामिल हो रहा हूँ।
0: ओहो, पहली बार आपका फोन लगा है,
1: जी मैम बिल्कुल पहली
0: आपको
1: बार।
0: बहुत बधाई कि आपकी मेहनत सफल हुई है।
1: और एक खुशी की बात यह है कि आज मैंने पहली बार ही ट्राई किया है।
0: अच्छा, पहली बार कोशिश भी की। अच्छा, पहले
1: हाँ
0: कोशिश भी नहीं की थी, तो चलिए
1: मैम
0: पहले
1: बिल्कुल
0: ही प्रयास में आप सफल हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: मोहम्मद
1: मैम
0: वक़ार जी, हमारे जो
1: जी
0: वीर सैनिक हैं, उनके त्याग, साहस, पराक्रम, बलिदान पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या
1: हाँ
0: महसूस
1: मैम,
0: करते हैं
1: उनको
0: आप?
1: मैं शत शत मतलब नमन करना चाहूंगा, क्योंकि मैम उनके ही मतलब जो हमारे वीर सैनिक हैं उन्हीं की वजह से हम आज सुकून की सांस ले रहे हैं और अपने घरों में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, अपना काम काज कर रहे हैं, क्योंकि वो सरहद पर मौजूद हैं,
0: बिल्कुल।
1: हमारी जो निगरानी वो करते हैं और वो वहाँ डटे रहते हैं जिससे कि कोई अनहोनी ऐसी ना हो देश में। तो मैम
0: बिल्कुल
1: उनको मेरा बहुत बहुत नमन,
0: बिल्कुल, एक आभार मन
1: सैल्यूट
0: में,
1: करना चाहूंगा मैं उनको।
0: बिल्कुल। हर भारतवासी अपने वीर सैनिकों को सैल्यूट करता है। और भारतीय वायुसेना दिवस का अगर संदर्भ लें तो देखिए, 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ऑपरेशन सफ़ेद सागर,
1: और अभी
0: बहुत ही
1: कुछ समय
0: ऊंचाई,
1: पहले ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया था।
0: बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना थी, उसका पराक्रम तो पूरी दुनिया ने देखा। और कारगिल
1: बिल्कुल
0: युद्ध
1: मैम
0: की मैं बात कर रही थी कि 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर, है ना, दुर्गम पहाड़ियों में छिपे जो घुसपैठी थे, उनके ठिकानों पर सटीक निशाना करने के लिए जो वायुसेना थी, उसके बमों का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो लड़ाई थी, आधुनिक वायु

0: युद्ध इतिहास में इतनी ऊंचाई पर लड़ी गई पहली सफल लड़ाई थी, है ना?
1: बिल्कुल मैम।
0: तो हमारी जो वायुसेना है उसके पराक्रम के क्या ही कहने, है ना?
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे सैनिक होते हैं ये याचना नहीं रण चुनते हैं, है ना? ये रणवीर, ये शूरवीर जिद के पक्के हैं, ये सच्चे ध्वज वाहक हैं, साहस और संकल्पों के फूल नहीं शूलों पर ये चलते हैं और विजय पताकाएं फहराते हैं। तो इन सभी वीर सैनिकों को हम नमन करते हैं, इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और मोहम्मद वक़ार फरीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।

0: बादाब के गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। नमस्कार, नाम बताइएगा।
1: जी, मेरा नाम मयंक है।
0: मयंक जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं आप?
1: जी, मैं बहुत अच्छा हूँ।
0: क्या करते हैं?
1: मैं अभी वकालत के पेशे में हूँ।
0: अच्छा, तो मयंक जी, आज हम अपनी जो तीनों सेनाएं हैं उनके वीर सैनिकों की बात कर रहे हैं, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, क्या कहेंगे आप?
1: जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे वीर सैनिक जो है, और खास करके जो ऑपरेशन सिंदूर में अभी हमने उनका अदम्य साहस देखा, जो हमने शौर्य देखा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनके लिए हमारे जीवन में जो सम्मान और जो

0: प्यार है वो और बढ़ता जाता है, खासकर के जो जिस तरीके से कि आज हमारे सीमाओं पे जो समस्या है और जिस प्रकार से सीमाओं में हमारे जो वीर सैनिक डटे हुए हैं इतने बुरे हालातों में भी, तो मुझे लगता है कि हमें काफी उनका सम्मान करना चाहिए। और खास करके वायुसेना जो है अभी आप देख सकते हैं कि काफी नए उसमें इक्विपमेंट्स भी आए गए हैं और राफेल का भी इंडक्शन हुआ, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कदम लिया गया।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमारी जो वायुसेना है उसकी जो ताकत है उसको तो पूरी दुनिया मान रही है, और ऑपरेशन सिंदूर में वास्तव में सबने देखा। और जो युद्ध हुए हैं पहले भी, चाहे हम 1947-48 की बात कर लें जो कश्मीर में घुसपैठिए घुस गए थे, या बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की बात करें, या कारगिल युद्ध की बात करें, है ना, सभी युद्धों में जो वायुसेना ने उसका पराक्रम, वायुसेना का जो पराक्रम है वो अद्भुत रहा है। और इसके साथ ही सबसे खास बात ये है मयंक जी कि जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी वो भी तो दृश्य हमारे सामने है ना, कि हमारे जो सैनिक थे किस तरह से उन्होंने 20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला था रेस्क्यू ऑपरेशन में, है ना। तो सेना का काम सिर्फ युद्ध में लड़ाई करना ही नहीं बल्कि शांति काल में भी, चाहे बाढ़ हो, कोई भी आपदा हो, भूकंप हो, ऐसे कठिन समय में जो वीर जवान हैं वो देश के नागरिकों के साथ खड़े होते हैं, किस तरह से उनका आभार किया जाए। हम तो बस यही कहेंगे, जिनकी ज्योति किरण से जगमग आज देश का कण कण है, जय उन अमर शहीदों की हो, बोल रहा जनगणमन है, बोल रहा जनगणमन है। आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, आज आपके साथ मिलकर हमने अपने सैनिकों को याद किया, उनके साहस के आगे अपना सर झुकाया। समझने की बात यह है कि किसी भी सैनिक का त्याग शायद इतिहास की किसी एक पंक्ति में दर्ज हो जाए, लेकिन उसका अर्थ हर उस सुबह में जीवित रहता है जिसे हम बेखौफ होकर जीते हैं। और हमारे वायु योद्धा, उनकी उड़ान केवल बादलों को चीरती हुई आकाश तक नहीं जाती, वो हर भारतीय के मन में ये विश्वास जगाती है कि देश की आन पर आने वाली हर आंधी के सामने भारत के प्रहरी अडिग खड़े हैं। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस पर उन सभी वीरों को हमारा नमन, जिन्होंने अपने साहस से देश की सीमाओं को सुरक्षा और अपने त्याग से तिरंगे को ऊंचाई प्रदान की है। और चलते चलते आपसे हम यही कहेंगे कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों को हम भी पूरी ईमानदारी से निभाएं, यही हमारी ओर से सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी। इसी संकल्प के साथ अब इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे प्रस्तुति सुनीता सिंह की थी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हिंडन एयरबेस में आयोजित समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने परेड की सलामी ली और उसका निरीक्षण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदी और मराठी सिनेमा के मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि नाना पाटेकर ने सशक्त और भावपूर्ण अभिनव से मानवीय अनुभवों को जीवंत किया। उनका निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है। वहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि नाना पाटेकर ने हर किरदार में अद्भुत विविधता और रचनात्मकता दिखाई, जिन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। नाना पाटेकर को उनके विभाग और स्पष्ट विचारों के लिए भी सराहा जाता था। नई दिल्ली की यशोभूमि में आज से इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस आयोजन में यहाँ 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मुंबई में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री यहां प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें करेंगे और कर्मचारी चयन मंडल

भोपाल ने कांस्टेबल ड्राइवर सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नियम पुस्तिका जारी की है। कुल 1000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 15 से 29 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत सुनेंगे फिल्म गुलाम-ए-मुस्तफा से। गीत को सुरों से सजाया कविता कृष्णमूर्ति हरिहरन और साथियों ने। गीत लिखा आनंद बख्शी ने। संगीतकार हैं राजेश रोशन। फरमाइश हमें आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। श्रोता हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक। अगले श्रोता आदर्श नगर मलोट से हैं। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव, शाइना और निवाण शर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म परिचय से। गीत लिखा गुलजार ने, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फरमाइश हमें आई है थाना रोड बक्सर से, श्रोता है ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी। अगली श्रोता कवर कॉलोनी बड़वाह से हैं, प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज शिमाली। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे फिल्म जुर्म से। स्वर कुमार सानू और साधना सरगम के हैं, गीतकार हैं इंदीवर, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फरमाइश हमें आई है बोरखेड़ा पीप्रमल जिला उज्जैन से। श्रोता हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नेहरा, कुश मूड़त। अगले श्रोता आज़ाद नगर बक्सर हरिद्वार से हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

मुकेश की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म आनंद से। गीत लिखा योगेश ने, संगीतकार हैं सलिल चौधरी। फरमाइश हमें आई है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से। श्रोता हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक। अगले श्रोता गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और कान्हा जी आर्य। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे फिल्म आंधी से। गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, गीत लिखा गुलजार ने, संगीतकार हैं आर डी बर्मन। फरमाइश हमें आई है असालतपुरा मुरादाबाद से, श्रोता हैं मोहम्मद फरीद अंसारी, बिलाल अंसारी और ज़ुबेर अंसारी। अगले श्रोता डाबवाली हरियाणा से हैं, जेके बकुलिया, श्रीमती सुनीता बकुलिया, संजय अनिल और मीनू बकुलिया। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का भाग 7।

0: मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू झाड़ू वाले ने झाड़ू लगाई, गुसलखाना धो धोकर साफ किया और तब द्वार पर आकर देवी से बोला,
1: हजूर हजूर देख लीजिए सरकार, सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार।
2: अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए हैं, फिर इतनी जल्दी मांगने लगे।
1: क्या करूं हजूर, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी, अब घर देखूं कि काम करूं।
2: अरे तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते?
1: अब हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, सरकार कुछ मदद करेंगी ना।
2: हाँ हाँ तुम ठीक ठीक काम तो करो, मुझसे जो हो सकेगा मैं दे दूंगी।
1: सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है, हजूर इतना ख्याल करती हैं कि क्या बताएं। अरे दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती, सरकार को अल्लाह ने जैसी सकल सूरत दी है वैसा दिल भी दिया है। अल्लाह ही जानता है हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं, वो आपके तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकती हजूर।
2: चल झूठे कहीं के, मैं ऐसी कोई खूबसूरत हूँ क्या?
1: अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी पैसे वालियों को देखता हूँ मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात है ही नहीं, उनके चेहरे पर ऐसा नमक कहाँ सरकार।
2: अच्छा अच्छा 1 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा।
1: भला सरकार, मगर 2 रुपए दे देती तो।
2: अच्छा अच्छा ये लो। और
1: जाता हूँ सरकार, जाता हूँ, अब आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं?
2: अरे क्या पूछते हो, पूछो ना, मगर जल्दी, देखो मुझे चूल्हा जलाना है ना।
1: तो सरकार जाए, फिर कभी पूछ लूंगा।
2: नहीं नहीं कहो क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी भी नहीं है।
1: दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या?
2: नहीं यहाँ तो कोई नातेदार नहीं है उनका।
1: तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ।
2: दाल मंडी तो कोठे वालियों का ही मोहल्ला है ना।
1: हाँ सरकार है तो वही, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते।
2: नहीं शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते। हाँ वो कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता चले जाते हैं।
1: बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर ना जाया करें। अब क्या कहें सरकार, आदमी का दिल कितना ही साफ हो लेकिन देखने वाले तो शक करने ही लगते हैं ना।
0: इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए, मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलते हुए पूछा,
3: ये मुन्नू क्या कह रहा था?
2: कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था, खाने को मांगता था, 2 रुपए दे दिए, बातचीत तो बड़े ढंग से करता है।
3: तुम्हें तो बात करने का मरज है, और कोई नहीं मिला तो सफाई वाला ही सही, इस फुतने से ना जाने तुम कैसे बातें करती हो।
2: मुझे उसकी सूरत से क्या करना है जी, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे ना सुनूं।
0: श्याम बाबू ने बेले का गजरा रुमाल से निकाल देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह ना दिखाई दिया, तिरछी निगाहों से देखकर बोली,
2: आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं।
3: कौन मैं?
2: जी हाँ आप, मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हैं और जाते तो वहाँ हैं जहाँ जलसे होते हैं।
3: बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ, तुमसे कौन कहता है? यही मुन्नू।
2: मुन्नू ने

0: से कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टो मिलती रहती है।
1: तुम मेरी टो मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा? तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है? मैं तो तुम्हारी इन मद भरी आंखों का आशिक हूं। अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी आंखें उठाकर ना देखूं। आज शारदा कहाँ है?
0: नीचे खेलने चली गई है।
1: नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटरे बगिया दौड़ती रहती है, ना जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, तीन लड़के एक साथ दब गए।
0: क्या, तीन लड़के? अरे बड़ा गजब हो गया, किसकी मोटर थी?
1: इसका अभी पता नहीं चला, ईश्वर जानता है। तुम पर यह गजरा बहुत खिल रहा है।
0: चलो अब बातें ना बनाओ।
2: तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा,
3: हजूर हजूर, एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर न जाइएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है।
0: अच्छा, देख ली औरत कैसी है?
3: सरकार जैसी तकदीर में होती, अब क्या बताएं, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है। घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों से ठोकना पड़ती थी। अब क्या है कि मिजाज की सीधी है, हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हजूर, सैकड़ों पीछे एक भी पाक ना मिलेगी।
0: तुम लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं?
3: क्या करें हुजूर, क्या कहें, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी ना छोड़ा दे। सफाई वालियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है हुजूर।
0: चल झूठे कहें कि बाबू साहबों की औरतें क्या झाड़ू वालियों से भी गई गुजरी होती हैं?
3: अब सरकार कुछ ना कहलाए, हजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआई नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूं सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उसे बोलने को जीना चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने आज तक नहीं देखी।
0: अच्छा चल झूठा कहीं का, इतनी खुशामत करना किससे सीखा है भला?
3: खुशामत नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूं। हजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी, रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई, जूते की बड़ी दुकान है उनकी, अल्लाह ने जैसा धन दिया है वैसा ही दिल भी, आपको देखते ही आंखें नीची कर ली। आज बातों बातों में हुजूर की सकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है।
0: अच्छा, वो लंबा सा सांवले रंग का जवान?
3: हाँ हुजूर, वही मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें की वहां तुम्हारी दाल न गलेगी।
0: तुमने बहुत अच्छा किया, निगोड़े की आंख फूट जाए। अरे जब इधर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है, अब कह देना कि इधर भूल कर भी ना ताके वो।
3: कह दिया है हुजूर, अब हुक्म हो तो जाऊं, और तो कुछ साफ नहीं करना है हुजूर, सरकार के आने की बेला हो गई है, अब मुझे देखेंगे तो कहेंगे ये क्या बातें कर रहा है।
0: अच्छा ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से तो बच जाओगे ना।
3: जी जी जी, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे, मेरा तो यही जी चाहता है हुजूर कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं हुजूर, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है।
2: मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई थी। मुन्नू ज्यों ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले,
1: मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह ना लगाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए। ये भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी?
0: क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी।
1: थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना है।
0: मुझे तो ख्याल नहीं आता, अब होगी कोई बात, मैं कौन उसकी सब बातें बैठी सुना करती हूँ?
1: तो क्या वो दीवारों से बातें करता रहता है? देखो, नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इस मोहल्ले का मुसलमान लड़का है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की के पास खड़ी रहती हो?
0: चिक तो पड़ी हुई है।
1: चिक के पास खड़े होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है।
0: ये मुझे मालूम नहीं था, अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं।
1: हाँ, फायदा क्या है, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो।
0: गुसलखाना कौन साफ करेगा?
1: खैर आए, मगर उससे बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आए। सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं।
2: इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई।
0: अरे, ये मिठाई किसने दी?
4: राजा भैया ने तो दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा।
1: ये राजा भैया कौन है?
4: वही तो है जो अभी इधर से गए हैं।
1: वो तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है?
4: हाँ हाँ, वही वही। मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी।
0: क्या, तू उसके घर गई थी?
1: तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी। देखती नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं।
4: राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे।
1: तुम बैठी बैठी क्या क्या क्या करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती?
0: इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके तो नहीं रखा जा सकता।
1: तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो, ये मैं जानता हूँ। ये क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती?
0: बातें मैं किससे करती हूँ, यहाँ तो कोई पड़ोसिन भी नहीं है।
1: मुन्नू तो है ही है।
0: मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है हा? जिससे बैठी बातें किया करती हूँ। अरे गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो क्या करूं मैं भाई, मुझसे तो दुत्कारते नहीं बनता।
1: खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं।
0: तुम जाओ देखाओ, मैं नहीं जाऊंगी।
1: तुम तो महीनों से तमाशे की रेट लगाए हुए थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि मैं जो बात कहूं वो कभी ना मानूं?
0: जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा से ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे। भाई तुम मेरी जान खाने लगोगे, यही सोचकर मैंने कहा था। अब तुम कहते हो तो मैं चली चलती हूँ, तमाशा देखना किसे बुरा लगता है।
2: नौ बजे शाम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी दूर रह गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मुन्नू, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठा कर सैर कराने के लिए ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी,
4: बाबूजी बाबूजी, देखो वह राजा भैया आ रहे हैं। राजा भैया, राजा भैया, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं।
2: रजा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर सांठ गांठ है, नहीं तो रजा मुन्नू को साथ क्यों लेता। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा,
1: और तेज चलो, देर हो रही है।
2: तांगा तेज हो गया, रजा ने भी अपना तांगा तेज कर दिया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझला कर कहा,
1: तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे।
2: तांगे वाले ने उनकी ओर कौतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। रजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि रजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, व्यर्थ की बात बढ़ जाएगी। लहू का घूंट पीकर रह गए, अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को कल ही निकाल दूंगा। रजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय ना था। छावनी से घर लौट आए

0: देवी ने कोठे पर आकर कहा।
1: मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपए देने पड़ गए।
2: और मुन्नू से बातें करो और खिड़की पर खड़ी हो कर रजा को छवि दिखाओ। तुम ना जाने क्या करने पर तुली हुई हो।
1: ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो। इसका फल अच्छा ना होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। और उस अभागे मुन्नू की क्या हकीकत है? तुम मुझे इतना नीच समझते हो क्या?
2: नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूं। तुम्हें इस बदमाश को भी मुंह लगाने नहीं चाहिए था ना। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वो छटा हुआ शोधा है, या अब भी कुछ शक है?
1: मैं उसे कल ही निकाल दूंगी।
0: श्याम बाबू लेटे पर चित्त अशांत था। वो दिन भर दफ्तर में रहते थे। क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है? वो ये जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर ये भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती है और मोहल्ले के शोहदे उसको देख देख कर मन में ना जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार का बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। शोहदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर ना करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहु बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वो मकान छोड़ देने का निश्चय किया, और इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। देवी से बोले,
2: कहो तो ये घर छोड़ दे, इन शोधों के बीच रहने में आबरू बिगड़ने का भय है।
1: जैसी तुम्हारी इच्छा।
2: आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ।
1: मैं कौन सा उपाय बताऊं, और किस बात का उपाय? भाई मुझे तो घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। एक दो नहीं, लाख दो लाख शोधे हों तो क्या? कुत्तों के भूखने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है क्या?
2: कभी कभी कुत्ते काट भी तो लेते हैं।
0: देवी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। ये शक्की तो है ही, ना जाने उसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वो मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के एक सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर पर पट्टी बांधे लाठी टेकता हुआ आया और आवाज दी। देवी उसकी आवाज पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं, जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उनका चित्त लालायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा,
3: सरकार सरकार, जब से आपने वो मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूं, अरे उस घर को देखकर तो रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आऊं। पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरा करता हूं सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता। बस हर घड़ी आपकी ही याद आती रहती है सरकार। अरे हुजूर, जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा? हुजूर एक बात कहूं, ये मकान तो बहुत छोटा है।
1: तुम्हारे कारण तो ये मकान छोड़ना पड़ा।
3: मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई हुजूर?
1: तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे ना। अब ऐसे आदमी पर आदमी को शक होता ही है।
3: अरे अरे अरे अरे अरे सरकार, उस दिन की बात, अरे उस दिन की कुछ ना पूछिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था, वो छावनी में रहते थे, मुझे भी साथ बिठा लिया। उनका सईस कहीं गया हुआ था, अब मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे ना निकलते थे वो। सरकार उसे शोहदा गलत कहती हैं, उससे भला आदमी तो पूरे मोहल्ले भर में नहीं है। पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है हुजूर, 30 रोजे रखता है, घर में बीवी बच्चे सब मौजूद हैं। अरे क्या मजाल के किसी पर गलत निगाह हो।
1: खैर होगा, तुम्हारे सिर में ये पट्टी क्यों बंधी हुई है?
3: छोड़िए हुजूर, इसका माजरा ना पूछिए हुजूर, छोड़िए।
1: बताओ।
3: आपकी बुराई करते किसी को देखता हूं तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा,
4: मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं।
3: वो ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते।
4: अगर ऐसे नहीं थे तो पैसे देकर क्यों नहीं गए?
3: बस हुजूर इसी

0: बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वो ऊपर से कूद कर आया और मुझे ढकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चित सड़क पे गिर पड़ा। चोट तो आई हुजूर, मगर मैंने भी दुकान के सामने ही हलवाई को इतनी गालियां सुनाई कि याद करता होगा। वैसे अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर।
1: राम राम, नाहक लड़ाई की तुमने, सीधी सी तो बात थी। अब कह देते, तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लो भाई, हैं तो शहर में ही ना, दूसरे देश में तो नहीं भाग गए हैं।
0: अरे हुजूर, आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता मुझसे, फिर चाहे वो अपने घर का लाट साहब ही क्यों ना हो, भिड़ पड़ूंगा मैं तो। अब वो महाजन होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ कौन उसका दिया खाते हैं।
1: अच्छा, उस घर में अभी कोई आया कि नहीं?
0: कई आदमी देखने आए हजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी हैं वहां अब दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ के बैठे हैं, बिटिया को याद करके रोया करते हैं हुजूर। वैसे आपको हम गरीबों की याद काहे को आती होगी?
1: याद क्यों नहीं आती? अरे हम आदमी नहीं हैं क्या? जानवर तक थान छूटने पर दो चार दिन चारा नहीं खाते। अच्छा ये तुम पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर खा लेना, भूखे होगे ना।
0: हुजूर की दुआ से खाने की बिल्कुल तंगी नहीं है। अरे आदमी का तो दिल देखा जाता है हुजूर, पैसे की कौन बात, आपका दिया ही तो खाते हैं। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है, क्या बताएं हुजूर। अच्छा तो अब चलूंगा, बाबूजी आते होंगे, मुझे देखते ही कहेंगे ये शैतान फिर यहां आ पहुंचा।
1: अरे अभी उनके आने में बड़ी देर है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओह एक बात तो मैं भूल ही जाता था।
1: वो क्या?
0: रजा मियाँ ने बिटिया के लिए ये खिलौने दिए थे, बातों ही बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुधी नहीं रही। कहाँ है बिटिया?
1: अरे अभी तो मदरसे से आई नहीं, मगर इतने खिलौने लाने की क्या जरूरत थी? अरे रजा ने तो गजब ही कर दिया, भेजना ही था तो दो चार आने के खिलौने भेज देते, अकेली मेम 3-4 रुपए से कम ना होगी, कुल मिलाकर तो ये 30-35 रुपए से कम खिलौने नहीं है।
0: अरे हम क्या जाने सरकार, अब मैंने तो कभी खिलौने खरीदे ही नहीं। 30-35 रुपए के होंगे तो क्या होगा, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, अकेली दुकान से 50 रुपए रोज की आमदनी है हुजूर।
1: नहीं नहीं इनको तो लौटा ले जाओ, इतने खिलौने लेकर वो क्या करेगी, मैं सिर्फ ये एक मेम रखे लेती हूँ।
0: माफ करना हजूर, रजा मियाँ को बड़ा रंज होगा, मुझे तो जीता नहीं छोड़ेंगे, बड़े की मोहब्बत ही आदमी है हुजूर। बीवी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं।
2: सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उन पर टूट पड़ी।
1: अरे क्या करती है, अरे क्या कर रही है, मेम ले ले, और सब ये लेकर क्या करोगी?
3: मैं तो सब लूंगी, मेम को मोटर पर बिठा कर दौड़ाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा, इन बर्तनों में गुड़िया के लिए खाना बनाऊंगी। कहाँ से आए हैं अम्मा बताओ ना?
1: कहीं से नहीं आए हैं, मैंने देखने को मंगवाए थे, तू इनमें से कोई एक ले ले।
3: मैं सब लूंगी, मेरी अम्मा सब ले लीजिए ना, कौन लाया है अम्मा?
1: मुन्नू तुम ये खिलौने ले जाओ, सिर्फ ये एक मेम रहने दो।
3: कहाँ से लाए हो मुन्नू बताओ ना, बताओ
0: अरे,
3: ना।
0: अरे बिटिया तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं।
3: राजा भैया ने भेजे
0: हैं?
3: ओहो राजा भैया बड़े अच्छे हैं, कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने ना निकलेंगे।
1: अच्छा मुन्नू अब तुम जाओ, राजा भैया से कह देना कि फिर यहाँ खिलौने ना भेजें।
0: जी अच्छा।
2: मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा,
1: ला बेटी तेरे खिलौने रख दूं, बाबूजी देखेंगे ना तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि ये रजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे। देखो भूल कर भी उनसे ही खिलौनों की चर्चा ना करना बेटा।
3: हाँ माँ रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे।
1: और उनसे कभी मत कहना कि रजा मियाँ ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी रजा मियाँ को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे, कहेंगे कि लड़की भिकमंगी है क्या, हाँ सबसे खिलौने मांगती फिरती है।
3: हाँ माँ रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे।

0: इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए। भौहें चढ़ी हुई थीं। आते ही बोले,
1: वो मुन्नू शैतान इस मोहल्ले में भी आने लगा। मैंने आज उसे देखा। क्या वो यहां भी आया था?
2: हाँ, आया तो था।
1: और तुमने आने दिया? अरे, मैंने मना किया था कि उसे कभी अंदर मत आने देना।
2: आकर द्वार खटखटाने लग गया तो क्या करती?
1: उसके साथ वो शोधा भी रहा होगा।
2: उसके साथ और कोई नहीं था।
1: तुमने आज भी नहीं कहा होगा यहाँ मत आया करो।
2: मुझे तो इतना ख्याल ही नहीं रहा। और अब वो यहाँ क्या करने आएगा भला?
1: जो करने आया था वही करने फिर आए। तुम मेरे मुंह में कालिक लगाने पर तुली हुई हो।
2: मुझसे तुम ऐसी ऊटपटांग बातें मत किया करो, समझ गए ना? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने ऐसी कुछ बातें कही थी, आज फिर तुम वही बात कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द कहे ना तो नतीजा बुरा होगा, इतना कह देती हूँ। तुमने मुझे कोई वेश्या समझ लिया है क्या?
1: मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए।
2: तो मना क्यों नहीं करते थे? मैं तुम्हें रोकती हूँ।
1: तुम क्यों नहीं मना कर देती?
2: तुम्हें कहते क्या शर्म आती है?
1: मेरा मना करना व्यर्थ है। मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा।
2: अच्छा, अगर वो आता ही रहे तो क्या हानि है? सफाई वाले तो सभी घरों में आया जाया करते हैं ना।
1: अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझाए देता हूं।
0: ये कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी वो ये थी कि मेरे पति मुझे इतना नीच, इतना निर्लज्ज समझते हैं। जो काम शरीर बेचने वाली भी न करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न डाले। नीचे जाकर वो सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूं। वो इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वो किसी तरह रोक ना सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आए जाते हैं, तब तक क्यों ना सहेली के साथ खेल लूं, उसको खिलौने दिखा दूं। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौनों को देखने में मग्न हो गईं। इतनी मग्न हो गईं कि बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की उन्हें खबर ना हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास पहुंचे और,
1: तुमने ये खिलौने कहां से पाए?
3: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति क्रम में सातवीं कहानी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
4: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई में फार्मा, मेडिकल, मेडिकल डिवाइसेस सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले होने वाले इस इंटरेक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी करेंगे। आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर हिंडन एयरबेस में आयोजित समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने परेड की सलामी ली। वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के युद्ध अभियानों को याद किया। श्री सिंह ने कहा कि वायुसेना किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमेशा सतर्क, प्रतिबद्ध और तैयार है। किशोर कुमार की जन्मस्थली खंडवा में 12 और 13 अक्टूबर को अलंकरण समारोह एवं गीत संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में वर्ष 2026 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अभिनेता रघुवीर यादव को दिया जाएगा। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर कांस्टेबल ड्राइवर सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी है। कुल 1000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 15 से 29 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को पात्र लोक सेवकों को समय पर पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक समय सीमा में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। और हिंदी और मराठी सिनेमा के मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का आज दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नाना पाटेकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल

बहनों नमस्कार, कार्यक्रम है आपका अपना पसंदीदा चहेता महिला सभा और साथ हूँ आपके मैं आपकी सखी सुधा मिश्रा। बहनों आज का आपका ये आधा घंटा आपके सामान्य ज्ञान के स्तर को निश्चित तौर पर थोड़ा और ऊंचा कर देगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के दिन को खास बनाती कुछ खास जानकारियाँ। तो बस फिर देर किस बात की, अपने आप को जोड़े रखिए हमसे और हमें बताइए सुबह आँख खुलते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं। अच्छा कुछ सेकंड्स रुकिए बहनों और देखिए कि आपने आँख खोलने की कोशिश करी और आपकी आपकी आँख खुली ही नहीं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब कल्पना करिए कैसा महसूस कर रही हैं आप जबकि आप कुछ भी देख नहीं पा रही हैं और अगले कुछ मिनटों में आपकी आँख खुल जाती है। कैसा महसूस किया आपने? मुझे लगता है उस कुछ सेकंड्स में ही आँखों की अहमियत आपने पूरी शिद्दत से महसूस की होगी। तो बहनों जब हमारी आँख खुलती है हम सबसे पहले अपने आसपास देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं, है ना, और फिर अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में लग जाते हैं। आपको आज हमने ये छोटा सा प्रयोग इसलिए करवाया कि हमारे लिए देख पाना इतना सामान्य है कि हम अक्सर इसकी अहमियत पर गौर नहीं करते और हमें इसी बात की याद दिलाता है विश्व दृष्टि दिवस। मैंने हर वर्ष अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को यानी कि आज विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को आंखों की सेहत को लेकर जागरूक करना, दृष्टि संबंधी जो भी समस्या हो समय रहते उसकी पहचान करना और उपचार के लिए प्रेरित करना। स्कूल जाते कई मासूम बच्चों की आंखों पर चश्मा लगा देखकर अब किसी को ज्यादा हैरानी नहीं होती। कुछ वर्षों पूर्व ऐसे एकाध बच्चे दिखते थे और अब बहुतायत में हो गए हैं। एक नजर ऐसा होने के कारण पर हम डालते हैं बहनों, बच्चों की बदलती जीवनचर्या, उनके खान पान में बदलाव और बच्चे ही क्यों बड़ों पर भी ये सारी बातें लागू होती हैं। हमारा अधिकतर समय कंप्यूटर, मोबाइल और दूसरी स्क्रीन पर गुजरता है। ऐसे में आंखों में थकान, जलन, सूखापन और धुंधला दिखाई देने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है हम अपनी इन अनमोल आंखों को भी थोड़ा आराम दें। लगातार स्क्रीन देखने के बजाय बीच बीच में नजर स्क्रीन से हटाएं, कुछ सेकंड्स आंखों को बंद रखें फिर खोलें, पढ़ते समय पर्याप्त रोशनी रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें। हरी सब्जियां, रंग बिरंगे फल और संतुलित पौष्टिक आहार हमारे पूरे शरीर के साथ साथ आंखों के लिए भी अच्छे होते हैं। तो बहनों आज दृष्टि दिवस पर हम बस इतना करें कि हम अपनी आंखों का ख्याल रखेंगे और अपने परिवार को भी आंखों की नियमित जाँच के लिए जागरूक करेंगे, क्योंकि बहनों आंखें सिर्फ हमें दुनिया दिखाती ही नहीं, वो हमें इस दुनिया से जोड़ती भी हैं।

0: और हमने बातें आपसे आंखों की की, यह खूबसूरत गीत सुना, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही उपयोगी भेंटवार्ता। आज की हमारी भेंटवार्ता का विषय है ग्लूकोमा क्या है। इस विषय पर डॉक्टर ब्रिजेश चौधरी से बातचीत कर रहे हैं विपिन यादव।
1: श्रोताओं नमस्कार। जो हमारी आंखें या नेत्र होते हैं उनके बिना तो हम जीवन के रंग देख ही नहीं सकते। आज हम ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण रोग के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे नेत्र या आंख से संबंधित है, वो है ग्लूकोमा। और इस महत्वपूर्ण रोग की बातचीत पर चर्चा करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया हुआ है डॉक्टर ब्रिजेश चौधरी जी को, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। ब्रिजेश जी, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हमारे श्रोताओं के लिए हम जानना चाहेंगे कि ये जो ग्लूकोमा है, जिससे कि काफी लोग भयभीत भी होते हैं, ये आखिर है क्या?
2: ग्लूकोमा ये कांचेबंद की बीमारी, जिसको हिंदी में बोला जाता है
1: जी।
2: इसमें आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है, वैसे आंख में भी एक निश्चित प्रेशर होना ही ठीक रहता है। इससे ज्यादा प्रेशर हो जाए तो फिर आंख का पूरा सिस्टम उस दबाव के कारण दबने लगता है, कमजोर होने लगता है और आगे चल के अंधत्व की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है।
1: मतलब इतना खतरनाक ये रोग है कि इससे आंखें जा भी सकती है।
2: जी हाँ, क्योंकि जी। कुछ ग्लूकोमा तो पता चल जाते हैं मरीज को, लेकिन कुछ ग्लूकोमा ऐसे होते हैं जिसको सामान्य तौर पर समझिए मीठा कांचेबिंद बोलते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे प्रेशर से आंख की रोशनी को इतना हद तक दबा देता है कि जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं अब तो आप काफी लेट हो गए।
1: तो ये जो आपने बताया मीठा कांचेबिंद, ये क्या डॉक्टर समझ सकता है यदि हम समय पर पहुंच जाए तो?
2: जी हाँ, इसीलिए एक समय 40 साल की उम्र के बाद सामान्यतः एक जांच करवा लिया करें।
1: जी जी।
2: इसमें ये कुछ बीमारियां रहती जिसको हम एक्सक्लूड यानी आउट करते हैं, जिसमें कांचेबिंद भी है।
1: अच्छा।
2: पहले ही वो 10 में से या 20 में से एक ही लोग को मिले, बट जिसको है और अगर वो छूट गया तो उस आदमी की रोशनी तो काफी कमजोर हो गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आंखों की कई बीमारियां होती हैं, पर इस बीमारी और अन्य बीमारियों में लक्षणों से हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कांचेबिंद ही है या ग्लूकोमा हो रहा है?
2: जो लक्षण वाले कांचेबिंद हैं उसमें तो मरीज को आंखों में दर्द होता है
1: जी।
2: दर्द कई बार इतना ज्यादा होता है कि वो खुद ही आगे चल के आता है कि मुझे आंख में दर्द हो रहा है
1: जी।
2: डॉक्टर लोग देखते ही समझ जाते हैं कि इसको कांचेबिंद होगा, फिर कुछ जांचों से वो चीज प्रूव हो जाती है, कन्फर्म हो जाती है।
1: अच्छा।
2: और फिर उसका इलाज होता है। ये तो दर्द वाला कांचेबिंद जिसमें आदमी खुद जाता है। जो बगैर दर्द का कांचेबिंद है उसमें आदमी कई बार खुद से नहीं अप्रोच कर पाता, उसीलिए हमने एक एज की सीलिंग बताई, लिमिट बताई कि आप 40 के ऊपर की एज में एक बार आंख की जांच करवा लिया करें
1: जी।

0: अगर वो मरीज पहुंचता है और थोड़ा बहुत भी हमको शंका होती है तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं कांचाबीन के, वो टेस्ट करते हैं, कुछ मोटे टेस्ट होते हैं, कुछ बारीक टेस्ट होते हैं
1: जी।
0: धीरे धीरे हमारी शंका के ऊपर, हर मरीज में तो सारे टेस्ट किए नहीं जाते, बट जिसमें जैसा टेस्ट लगा वैसा करते हैं तो पता चलता है कि कांचाबीन है।
1: चौधरी साहब, 40 साल के बाद आपने कहा कि परीक्षण करवाते हैं लगातार, कितना अंतराल होना चाहिए?
0: ये सभी अलग अलग लोगों पे वैरी करता है, बट सामान्यतः 2-2.5 साल में एक बार आंख की जांच करवा लें तो कुछ ज्ञात बीमारी और कुछ अज्ञात बीमारी दोनों पता चल जाएगी।
1: मतलब कम से कम इतना समय तो ये लेती है बीमारी पनपने के लिए?
0: जी जी बिल्कुल, लेकिन वही है, अगर आपको दर्द हो रहा है तब तो आपको तुरंत जाएंगे ही। कई बार दर्द इतना सीवियर यानी इतना ज्यादा होता है कि लोग खुद ही अप्रोच करते हैं डॉक्टर को।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये ग्लूकोमा या कांचियाबीन के कारण क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब?
0: कारण कुछ तो ज्ञात होते हैं, कुछ अज्ञात होते हैं। अज्ञात कारण में बोला जाता है प्राइमरी ग्लूकोमा, जिसमें कि कुछ कारण नहीं होता, जैसे ब्लड प्रेशर है अपने आप होता है, वैसे कांचियाबीन भी अपने आप होता है।
1: अच्छा।
0: और कुछ ज्ञात कारणों में आंख के अंदर कुछ इन्फेक्शन रहा, उस इन्फेक्शन से आंख की जो प्रेशर कंट्रोलिंग सिस्टम है जहां से आंख का पानी बाहर निकलता है, अंदर का पानी, वो सिस्टम क्लॉग यानी ब्लॉक हो जाता है, तो वहां से फिर प्रेशर का रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है
1: जी।
0: तो वो कुछ आंख की कुछ बीमारियां रहती हैं जिसमें कि प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन वो भी बीमारी बाहरी तौर से स्पष्ट नहीं रहता, अंदरूनी बीमारी रहती है। तो कांचियाबीन अपने आप में एक बीमारी है, इसके कारण बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कई बार अपने आप अज्ञात कारणों से ही होता है।
1: होता है। क्या नींद का भी इसमें योगदान हो सकता है?
0: नींद की कमी से सारे शरीर का सिस्टम डिस्टर्ब, जैसे बोलते हैं कि बैटरी चार्ज करने के लिए उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, वैसे शरीर का बैटरी चार्ज करने के लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ही चाहिए, है ना? तो सिस्टम को आप पूरा चलाते रहेंगे, उसको कहीं भी आप उसको रोकेंगे नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी। तो नींद की कमी से कांचियाबीन का सीधा रिश्ता तो नहीं है
1: जी,
0: लेकिन इनडायरेक्टली तो आ ही सकता है,
1: वो कारण बना सकता है,
0: कारण बना सकता है जी।
1: तो नींद कितने घंटे की होनी चाहिए जब हम आंखों की बात करें तो? कम से कम
0: हम लोग तो 8 घंटे की नींद बोलते हैं, चाहे आप एक साथ लें, चाहे 6 घंटे रात को, दिन में 2 घंटे या 7 घंटे, प्रेफरेबली 7 घंटे रात को और 1 घंटे दिन में, कभी भी आप समय निकाल के एक आफ्टरनून नैप ले लीजिए तो उससे आपका पूरा सिस्टम रिचार्ज हो जाएगा ठीक से।
1: क्योंकि अब जो है जैसे बच्चों की हम बात करते हैं, अब पढ़ाई जो है वो सघन रूप से हो रही है, उसमें स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग अपने व्यवसाय और व्यापार को अपनाते हैं, सेवाओं को दे रहे हैं, सभी जगह कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भागा दौड़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आप ये बताते हैं कि 7 से 8 घंटा नींद तो जरूरी होनी ही चाहिए। नींद के बाद यदि फिर भी हमें लगता है कि ये रोग हो सकता है या हो चुका है तो क्या उपचार के इसमें गुंजाइश है?
0: उपचार की पूरी गुंजाइश है, हर बीमारी में उपचार निर्भर करता है कि बीमारी किस समय पकड़ी गई
1: जी।
0: अगर सही समय पकड़ी गई है तो उपचार उसका समुचित हो जाता है और बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर समय थोड़ा लेट हो गए हैं तो उसके हिसाब से ठीक होने की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, बट ज़्यादातर आज की तारीख में चूंकि लोग काफ़ी जागरूक हैं तो बीमारी समय से पकड़ी जाती है और बीमारी ठीक भी हो जाती है।
1: तो इसमें क्या क्या मेथड या क्या क्या एक मोटे तौर पे हम जानना चाहेंगे अपनाए जाते हैं ताकि ये ठीक हो सके?
0: कांचियाबीन समय से पता करने के बाद, कुछ उनकी महीन जांचों करने के बाद उसकी दवाई चालू करते हैं
1: जी।
0: ज़्यादातर कांचियाबीन ड्रॉप से, आई ड्रॉप से कंट्रोल हो ही जाता है। शुरुआत में कुछ ज़्यादा दवाई चलेगी, बाद में धीरे धीरे दवाई कम करेंगे
1: जी।
0: और उसको फिर समय के साथ साथ प्रेशर मेजरमेंट यानी मापने के हिसाब से उसकी दवाइयाँ कम ज़्यादा करते रहेंगे।
1: अच्छा अच्छा।
0: अगर मरीज ठीक से दवाई ले तो ज़्यादातर कांचियाबीन के मरीज कई सालों तक खुश रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है, न देखने में, न व्यवहार में, काम करने में
1: जी।
0: ये निश्चित है कोई बीमारी होती जितनी पुरानी चलती है कुछ न कुछ शिथिलता वहाँ की नसों में डालती है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं यानी चीज़ों का महीन से आप परीक्षण समझना, जैसे आप रात को गाड़ी चलाते हैं
1: जी जी।
0: तो आप ड्राइविंग में हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है, ग्लेयर आ सकती है लाइट की, आसपास की चीज़ें जो आपको समय से दिखनी चाहिए वो कई बार नहीं दिखती, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट सामान्यतः लाइफ ठीक चलती है।
1: क्या शल्य क्रिया भी इसमें होती है?
0: जी हाँ, कांचियाबीन में जब प्रेशर एक ज़्यादा हो जाता है तो शल्य क्रिया होती है। पहले शल्य क्रिया बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि पहले दवाइयाँ कब लिमिटेड थी, आज की तारीख में पकड़ में बीमारी जल्दी आती है और दवाइयाँ भी काफ़ी आ गई है, शल्य क्रिया का परसेंटेज पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया है।
1: अच्छा,
0: इसलिए कि दवाइयाँ भले ही थोड़ी महंगी या सस्ती जो भी हो, पर शल्य क्रिया के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो दवाइयों में नहीं है। शल्य क्रिया में अगर कुछ बिगड़ गया तो आँख में इन्फेक्शन होना, ये होना, कुछ छोटी छोटी तकलीफें होती हैं
1: जी।
0: तो शल्य क्रिया आज की तारीख में ज़्यादातर उन लोगों के लिए लिमिटेड हो गई हैं जो ये दवाइयाँ लंबे समय तक नहीं ले पाते
1: जी।
0: तो उनमें शल्य क्रिया एक बार की प्रक्रिया हो गई, हमें मालूम है कि ये मरीज बार बार नहीं आ सकता, बार बार इलाज नहीं करा सकता
1: जी।
0: तो मरीज को समझा कि तुमको दवाइयाँ बहुत लंबे समय बहुत महंगी पड़ेंगी, इससे अच्छा है कि तुम शल्य क्रिया करवा लो, एक बार थोड़ा सा खर्चा लगेगा, वही बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा
1: जी,
0: और तुमको दवाइयों पर डिपेंडेंसी निर्भरता वो काफ़ी कम हो जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि ये अपने आप में बीमारी ना हो के कई बीमारी से जुड़ी भी हो सकती है, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बीमारी होती है डायबिटीज़ या शक्कर की बीमारी।
0: जी जी,
1: इसमें क्या ग्लूकोमा का संबंध होता है सीधा?
0: शक्कर की बीमारी में आँख की बीमारियाँ कुछ बढ़ के उभर के तो आती हैं
1: जी,
0: सीधा संबंध तो अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन परसेंटेज शक्कर की बीमारियों में कांचाबीन का नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है।
1: अच्छा, चलते चलते आपसे हम जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए कि वो क्या क्या सावधानी बरतें ताकि ना सिर्फ ग्लूकोमा बल्कि आँख के अन्य रोग भी ना हो, आँखें बड़ी तंदुरुस्त रहें उनकी।
0: आपको जैसा पता है 40 साल के बाद ग्लूकोमा ज़्यादातर होता है, तो 40 साल के बाद एक बार रूटीन आँख की जाँच करवा लें। बाकी आँखों का केयर, आँखों की जो सुरक्षा है वो तो बचपन से चालू हो जाती है। शुरू से आपको खाने पीने में हरी सब्जी, पपीता, गाजर, सलाद, दूध, इस तरह की चीज़ें आपको प्लेंटी में डालनी है। फिश से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, फिश में भी आँख की विटामिन काफ़ी होती है, तो बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि बच्चे ही तो आगे बड़े होंगे,
1: बिल्कुल
0: उनकी आँखें स्ट्रांग रहेगी तो आगे किसी बीमारी की संभावना थोड़ी कम रहेंगी। हाइजीन जो है आँखों का, उसमें है कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको सामंजस्य बना के रखना है।
1: जी।
0: आज की ज़रूरत तो है, इसके बगैर तो विकास होगा नहीं बच्चों का, लेकिन थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखना है ताकि पढ़ाई के लिए जगह मिले और इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम रहे। और ये चूंकि अनजान है बीमारी, इसलिए आपको जांच कराने से ज़्यादातर पता चलता है कि आपको कांचाबिंद हो रहा है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे नेत्र के लिए एक नई रोशनी दिखाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, आपने हमारी ये भेंटवार्ता सुनी, विषय था ग्लूकोमा क्या है, विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर ब्रजेश चौधरी और इनसे बातचीत की थी विपिन यादव ने। बहनों, ऊपर आसमान की तरफ कभी देखें तो लगता है ना कितना विशाल विस्तृत है ये आकाश, ये नभ, और इसी विशाल आकाश की निगरानी करते हैं हमारे वायु योद्धा। आज हम आपसे ये बातें इसलिए कर रहे हैं बहनों कि आज है 8 अक्टूबर और हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें भारतीय वायुसेना की स्थापना की याद भी दिलाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। बहनों, उस समय तो इसकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह एक आधुनिक और सक्षम वायुशक्ति के रूप में विकसित हुई। युद्ध के समय तो भारतीय वायुसेना की भूमिका सबसे अहम होती ही है, लेकिन इसके अलावा देश को जब भी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है तो राहत और बचाव कार्य में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुर्गम इलाकों तक सहायता पहुंचाना हो, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना हो या फिर जरूरी सामान पहुंचाना हो, वायुसेना के जवान अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। आज भारतीय वायुसेना आधुनिक तकनीक और नए विमानों के साथ लगातार अपनी क्षमताओं को मजबूत कर रही है। वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पृशम दीप्तम, गौरव के साथ आकाश को छुओ। तो बहनों, आज के दिन हम देश के सभी वायु योद्धाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सम्मान व्यक्त करें, उनके साहस, अनुशासन और समर्पण को नमन करें।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

बहनों, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे गांव हमारे ग्राम हैं। इनसे ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तभी तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां भी आप सबने जरूर सुनी होंगी कि है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गांव में। तो अपने हम अपने गांव में देखते हैं बहनों कि लोग अपने अपने घरों में रहते तो हैं और वर्षों से रह रहे हैं। घर को वो अपना घर भी समझते हैं, कहते हैं, लेकिन उनके पास उस संपत्ति

व्यक्ति का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता जो यह साबित कर सके कि यह घर और इसके आसपास की जमीन उनकी अपनी है। गांव में ऐसी स्थिति कई जगह देखने को मिलती है और इसी समस्या को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत गांव की आबादी वाले क्षेत्रों में घरों और जमीन का सर्वेक्षण आधुनिक तकनीक, खासतौर पर ड्रोन मैपिंग के माध्यम से किया जाता है। गांव के लोगों को इससे बड़ा लाभ मिलता है कि अपनी संपत्ति पर उनका स्पष्ट अधिकार कानूनी रूप से हो जाता है। साथ ही संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने और बैंकिंग सुविधाओं तक बढ़ाने में सहायता मिलती है। तो अब हर ग्रामवासी के पास अपने घर और जमीन का स्पष्ट रिकॉर्ड होगा। बहनों, आज हम आपके लिए लखपति दीदी योजना भी लेकर आए हैं। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य है गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाना। अब आप सोच रही होंगी कि आखिर ये लखपति दीदी है कौन? तो बहनों, हम आपको बता दें कि स्व सहायता समूह से जुड़ी कोई भी महिला जिसके परिवार की सालाना आय कम से कम 1 लाख रुपए हो और यह आय लगातार बनी भी रहे, यानी ऐसा नहीं कि कुछ महीने 1 लाख रुपए है और फिर कम है, मतलब यह आय टिकी रहे, तो उसे लखपति दीदी कहा जाता है। लखपति दीदी पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है बहनों कि महिला केवल परिवार की आय में सहयोग करने वाली न रहे बल्कि अपनी आय अर्जित करने वाली उद्यमी के रूप में आगे आए। यानी महिलाएं हुनर सीखें, अपना काम खड़ा करें, बाजार से जुड़ें और आर्थिक फैसलों में अपनी मजबूत भागीदारी निभाएं।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप

सुधा मिश्रा के गाए श्लोक गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनिए स्वास्तिका सोनी की गाई गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है।

0: स्वास्तिका सोनिकी का इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला गीत है कलयुग फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज़, आसिम रजा का गीत और रूहेलियात फैजल रफी का संगीत।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 5G कनेक्टिविटी अब देश के हर जिले तक पहुंच चुकी है और भारत में 5G के लिए 5,50,000 से ज्यादा बेस स्टेशन काम कर रहे हैं।
1: 2022 में इसी मंथ से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा, और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में है जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा, और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बढ़ी है।
0: वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी से शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हुई है और मोबाइल फोन सुशासन का भी अहम माध्यम बना है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि वर्ष 2014 में 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये थी, जो अब घटकर करीब 8 रुपये रह गई है। 4 दिवसीय इस आयोजन में 100 से ज्यादा देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी, 500 से ज्यादा साझेदार और प्रदर्शक तथा 600 स्टार्टअप शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज मुंबई में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश और

रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। जनवरी 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले इस संवाद में ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, नर्मदापुरम के रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट जोन और धार के पीएम मित्र पार्क तथा उज्जैन के मेडिकल डिवाइसेस पार्क की जानकारी उद्योगपतियों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन टू वन बैठकें भी करेंगे और उनकी निवेश व विस्तार योजनाओं पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट के दूसरे दिन यानी आज पर्यटन के नए क्षेत्रों और उनसे रोजगार बढ़ाने पर मंथन हो रहा है। दोपहर के सत्र में एडवेंचर टूरिज्म और एमआईसीई आधारित इवेंट इकोनॉमी को बढ़ावा देने की रणनीति पर चर्चा होगी। वन्यजीव पर्यटन को स्थानीय गांवों, युवाओं, होमस्टे, गाइड, हस्तशिल्प और स्थानीय कारोबार से जोड़ने पर भी जोर रहेगा। ट्रैवल मार्ट में B2B बैठकों के जरिए होटल, रिसॉर्ट, टूर ऑपरेटर और निवेशकों के बीच कारोबारी साझेदारी बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। भोपाल में SIR के दौरान सूची से बाहर हुए मतदाताओं के नामों की जांच के लिए BLO मैदान में काम कर रहे हैं। आज और कल शहर की 7 विधानसभा सीटों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां पर लोग अपने नाम की दोबारा जांच करा सकते हैं। जांच में पात्र पाए जाने पर स्थायी रूप से बाहर हुए या फिर पते पर नहीं मिले मतदाताओं के नाम फिर से मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। वहीं 1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं के नाम जोड़ने के लिए एडवांस में Form 6 भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर कल मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। भोपाल के रविंद्र भवन में हुए मुख्य कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग ने अशोका गार्डन में 50 लाख रुपए की लागत से सेवा ज्योति चौक बनाने की घोषणा की। प्रदेश के सभी जिलों में प्रमुख चौराहों पर सेवा ज्योति की प्रतिमा लगाने की घोषणा भी की गई, जिसे प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवाकाल और विकसित भारत 2047 के संकल्प का प्रतीक बताया गया। खंडवा में 12 और 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की स्मृति में 2 दिवसीय राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह और गीत संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वर्ष 2026 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अभिनेता रघुवीर यादव को अभिनय के लिए दिया जाएगा। 13 अक्टूबर को सम्मान समारोह के बाद गायक सुदेश भोसले और साथी कलाकार गीत संगीत की प्रस्तुति देंगे। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर कांस्टेबल ड्राइवर सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी है। कुल 1000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 15 से 29 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में 19 अक्टूबर को प्रसिद्ध प्रदेश स्तरीय पंजाबी दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले में किसान पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए 30 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में चतुर्वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत दीक्षारंभ कार्यक्रम का कल समापन हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:15 होने को है। थोड़ी देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
2: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
2: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान July 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
3: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेते निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्य मंत्री डीके शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को गया है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान

0: पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
2: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
3: जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे आने वाले पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
4: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है। यहाँ पे इवनिंग में लाइटिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए हैं। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
5: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुंह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपनी मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया कि ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
2: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।

0: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
1: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
2: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
1: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है बिरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर, सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हादिया, अस्मा, सालिया, शुएब खान, साइमा खान, मुस्तफ़ा, अफिया, राउफ और शहीद भाई, गांधीबाग का कोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, श्राहुनगर

तुम बिन टू। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा अंकित तिवारी की आवाज़ में। शकील आजमी के लिखे गीत की धुन बनाई है मनोज मुंतशिर ने। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी, शमीम बानो, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तान्या, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातमा अंसारी, डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, धामड़ी मानोरा जिला वाशिम से तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे और प्रज्वल डेरे, साथ ही अनुत डेरे, नेहरू वार्ड बस स्टैंड यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीत मालाकार, मुस्कान मालाकार, योगेश मालाकार और मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, महावीर संधु, गुरचरण गरोबर, रमेश मिगलानी। आप सबने सुनना चाहा है राज फिल्म का ये नगमा, अलका याग्निक का गाया हुआ। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है नदीम शवण ने।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कारका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, कान्हाजी आर्य, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरोल, दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता, सी आर कुलकर्णी और छत्तीसगढ़ दंतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया, थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी, पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। आप सबने पसंद किया है जिस्म फिल्म के इस गीत को, जिसे आवाज़ दी है के ने, सईद कादरी का गीत और एमएम क्रीम का संगीत।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 5G कनेक्टिविटी अब देश के हर जिले तक पहुंच चुकी है और भारत में 5G के लिए 5,50,000 से ज़्यादा बेस स्टेशन काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट के दूसरे दिन यानी आज पर्यटन के नए क्षेत्रों और उनसे रोजगार बढ़ाने पर मंथन हो रहा है। दोपहर के सत्र में एडवेंचर टूरिज्म और MICE आधारित इवेंट इकोनॉमी को बढ़ावा देने की रणनीति पर चर्चा होगी। भोपाल में SIR के दौरान सूची से बाहर हुए मतदाताओं के नामों की जांच के लिए BLO मैदान में काम कर रहे हैं। आज और कल शहर की 7 विधानसभा सीटों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर कल मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। भोपाल के रविन्द्र भवन में हुए मुख्य कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग ने अशोका गार्डन में 50 लाख रुपये की लागत से सेवा ज्योति चौक बनाने की घोषणा की। खंडवा में 12 और 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की स्मृति में 2 दिवसीय राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह और गीत संगीत संध्या आयोजित की जाएगी। और मौसम विभाग के मुताबिक 10 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम के साफ होने और बारिश का दौर थमने की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:33 पर 6:30, 8:35 और 9:30। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 6:00। 7:30 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर सतीश कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है आधुनिक तकनीक से कपास उत्पादन। साथ ही सुनिएगा लोकगीत और डॉक्टर रतनदीप सोनी की लघु वार्ता रवि फसलों की तैयारी। विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा आप सुन सकेंगे रात 8:00। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात 10:00 और रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन, राग होगा हमीर। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर अब हमारी ये सभा यही संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का लोक संगीत आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे सुधा मिश्रा के गाए लोकगीत।

सुधा मिश्रा के गाए इस दादरा गीत के साथ ही लोकगीत का कार्यक्रम, लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनेंगे स्वास्तिका सोनी की गाई गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

स्वास्तिका सोनी की गाइस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। नीचे सुनिए चित्रपट संगीत, आओ प्यार करें। पहला गीत सुनिए इस फिल्म से, कुमार सानू की आवाज़, श्याम राज का संगीत और आदेश श्रीवास्तव का संगीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनिए जीत फिल्म का ये नगमा। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है नदीम शवण ने।

इसके साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।

0: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। 3:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर कहा कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष और सेवा क्षेत्र महिलाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और आरोग्य केंद्रों सहित विभिन्न संगठित क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो गई है। आयुष मंत्रालय ने जानकारी दी है कि आयुष सेवाओं में कुल श्रम बल में 43% महिलाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। भोपाल में SIR के दौरान सूची से बाहर हुए मतदाताओं के नामों की जांच के लिए BLO मैदान में काम कर रहे हैं। आज और कल शहर की 7 विधानसभा सीटों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के भगवान महाकाल की भस्म आरती विशेष श्रृंगार के साथ संपन्न हुई। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक और पंचामृत से अभिषेक किया गया। और खंडवा जिले में 12 और 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की स्मृति में 2 दिवसीय राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह और गीत संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए निकोलाई गोगोल का लिखा नाटक इंस्पेक्टर जनरल, प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल।
1: समन्वित कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है निकोलाई गोगोल।
2: श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ विद्यार्थियों को जोड़ेगी। 550,000 बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी देश के प्रत्येक जिले में पहुंची। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल सिक्किम में रंगपो और रानीपुल के बीच नेशनल हाईवे 10 के विकास के लिए 993.64 करोड़ रुपए की मंजूरी की घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनर्जीवन पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनर्जीवन में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। आयुष मंत्रालय ने बताया है कि आयुष सेवाओं के कुल श्रम बल में 43% महिलाएं हैं। ये क्षेत्र अनुमानित 17,60,000 आजीविकाओं को सहयोग दे रहा है। वायुसेना दिवस आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की आयु में गोवा में निधन। दिवंगत अभिनेता का आज शाम पुणे के पास डोंजे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच आरक्षित विशेष रेलगाड़ियों के दो फेरे चलाएगा। और मानुष शाह और दिया चिताले की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये 30 घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। आगे हमारा प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: आसमान की बुलंदियों पर जब तिरंगा लहराता है तब दिखता है भारतीय वायुसेना का शौर्य पराक्रम। 8 अक्टूबर 1932 से लेकर आज तक इंडियन एयरफोर्स ने हर चैलेंज, हर चुनौती का साहस और वीरता से सामना किया है, कभी युद्ध भूमि में तो कभी आपदा राहत में। देश सेलिब्रेट कर रहा है आज एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे 2026, द डे ऑफ प्राइड एंड ऑनर, जब हम सल्यूट करते हैं अपने वीर जांबाजों को जिनकी उड़ान ने भारत को सेफ एंड सिक्योर रखा है। नवा स्पर्शम दीपतम टच द स्काई विद ग्लोरी। आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज का संदेश टू सोल्जर्स है एयरफोर्स डे स्पेशल। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं वायुसेना मेडल से सम्मानित सीनियर फेलो एट द मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आज के इस खास दिन।
1: धन्यवाद, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आम लोगों से अपनी भारतीय वायुसेना के दिवस के मौके पर आप लोगों से मिल पाया और अपने लोगों से भारत की वायुसेना के एक पुराने सैनिक होने के नाते
0: जी
1: आप लोगों से बात करके कुछ अपने विचार शेयर कर पाऊँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और कुछ फ्यूचर भारत को कैसे एरोस्पेस पावर बनना है
0: जी
1: उस पर बात कर पाऊँ।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और आपकी जो ये कीमती बातें हैं वो हम आज के इतने शो में करेंगे। और हम चाहेंगे अपने लिसनर से हमेशा की तरह से कि आप हमें मैसेज करें। हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9868107070। मोबाइल ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं, न्यूज़ ऑन AIR हमारी मोबाइल ऐप है जिस पर आप हमें लाइव सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान आज के बहुत ही खास दिन एयरफोर्स डे स्पेशल शो में ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर आज एयरफोर्स डे है, एक बेहद ही स्पेशल दिन, न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए, उसके पराक्रम शौर्य के लिए, बल्कि साथ ही साथ पूरे देश के लिए और देशवासियों के लिए। तो आप सर आज के दिन को किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 में कराची, जो आजकल पाकिस्तान में है, एक दिग रोड एयरफोर्स स्टेशन था जहां पर सिर्फ केवल चार

0: रीति जहाज़ों से बनी थी, जो छोटे से दो बायप्लेन होते थे
1: जी,
0: और उसको देख के आपने ऑफ सिंदूर में देखा कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को एक अपने अच्छा करारा जवाब दिया जब उन्होंने हमारे यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक किया
1: जी,
0: और फिर भारतीय वायुसेना ने अपना संयम दिखाते हुए सिर्फ टेररिस्ट को ही अटैक किया और कोई अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया।
1: बिल्कुल।
0: तो ये 94 भारतीय वायुसेना की एनिवर्सरी पर मैं भारतीय वायुसेना के अधिकारी
1: जी,
0: एयरमैन, नॉन कॉम्बेटेंट, सिविलियंस, संगनीज और वो सब लोग जो भारतीय वायुसेना से जुड़े हैं उनको मैं अपनी दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे भारतीय वायुसेना अपने देश की सीमाओं वायु की रक्षा करती रही है, वैसे ही आप लोग करते रहिए और हम चाहे वर्दी छोड़ चुके हैं, हम आपके साथ हैं और हमें आप पे गर्व है। आपको हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहें। और इस साल जो है भारतीय वायुसेना की परेड हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी
1: जी,
0: ये 3 वर्षों के बाद थी कि हिंडन में दोबारा हुई, और थीम दिया गया था स्पेशल जिसे हमने दिया गया इनफॉलिबल, जिसका मतलब है अचूक, और ये अचूक हमने दिखाया कि हम कितने अचूक थे जब हमने अटैक किया पिछले मई 2025 को। इम्परवेश अभेद, मतलब जिसे कोई रोक नहीं पाई दुनिया की, कोई डिफेंस नहीं रोक पाई
1: जी, जी।
0: और प्रिसाइज, आपने देखा होगा कि कैसे हमने छोटी सी जगह पर जाके बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे अटैक किया। तो भारतीय वायुसेना का ये जो थीम है ये इंडिकेट करता है कि हम सीरियस हैं, और मैं ऑल भारतीय वायुसेना के जो हमारे एक ही जो परमवीर चक्र विजेता है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि उनके जैसे कई लोगों के शौर्य की वजह से हमारा भारत सुरक्षित है और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने बहुत सर कीमती और बहुत ही खूबसूरत बात कही, और जाहिर है देशभक्ति की जो भावना है वो हर देशवासी में है, और जिस तरीके से आपने कहा कि वर्दी आपने भले ही छोड़ दी या रिटायर हो गया आप, लेकिन उसके बावजूद देशभक्ति की भावना है और जो अपनी एयरफोर्स के लिए जो आपका डेडिकेशन है और जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एकदम अनएक्सप्लेनेबल है और बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आज का डेडिकेटेड है एयरफोर्स डे स्पेशल है आज का, और आज के हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। देशभक्ति की भावना हर देशवासी में मौजूद है। हम आते हैं लौटकर, आप हमें मैसेज करें 9868107070 हमारा है नंबर।

0: संदेश टू सोल्जर्स का आज का खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर। आज है एयरफोर्स डे और एयरफोर्स डे स्पेशल शो में आज हमारे मेहमान हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग जी। सर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के स्पेशल शो में। सर हमारे पास ऑनरेबल चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का मैसेज है। हम चाहेंगे कि हम सब हमारे लिसनर्स को भी उनका ये मैसेज सुनाया जाए।
1: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashwani. On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force, we now bring you a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश।
3: नमस्कार, भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ। वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमय यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की नींव पर रची गई है। सन 1932 में मात्र 4 वापिती विमानों से उड़ान भरने वाली हमारी वायुसेना आज एक अत्यंत सक्षम, नेटवर्क सेंट्रिक और बहुआयामी फोर्स बन चुकी है। आज की दुनिया अस्थिर, अनिश्चित और जटिल दौर से गुजर रही है। हितों और परिस्थितियों के लगातार बदलने के इस माहौल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं। इन संघर्षों में हमने देखा है कि वायु शक्ति राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है। देश की वायु शक्ति का प्राथमिक माध्यम होने के नाते भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर रीअफर्म द पिवटल पावर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेटिंग आर कैपेबिलिटी and capacity to defend our sovereignty. Through major milestones this year, including exercise Vayu Shakti, various bilateral exercises, Dronathon, and the ongoing historic multilateral air exercise Tarang Shakti, we are actively testing our combat readiness and rapidly absorbing niche technologies into our operational plans. Apni marak shamta ke alawa, Bharatiya Vayu Sena ne sankat ke samay mein hamesha aage badhkar देश और मानवता की सेवा की है। चाहे देश के विभिन्न प्रदेशों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान नागरिकों की सहायता हो या जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाना हो, हमारे वायु योद्धाओं ने हमेशा कौशल और साहस का परिचय दिया है। हमारी यह प्रतिबद्धता हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है। नेपाल और युगांडा से लेकर वेनेजुएला, फिलीपींस, मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा और जमैका तक हमारी वायुसेना ने HADR मिशनों के माध्यम से सेवा के इसी संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है जो सेवा परमो धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंकुर ट्रेनर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अस्त्र आकाश तथा ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणालियाँ इसी संकल्प का प्रमाण है। आत्मनिर्भरता की इस नींव पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स

0: way into every aspect of our functioning. Our vision is to build an AI-augmented force where technology supports us, but humans remain in command. Our roles and tasks naturally take us beyond the confines of Earth's atmosphere, as space is a natural extension of the air domain. Our deepening partnership with ISRO, including our contribution to Gaganyaan mission, reflects this commitment. These capabilities form an integral part of our vision for 2047. Technology is only an enabler. The foundation of decisive victory has always been in the unity of purpose. Modern wars are not won by the strength of a single service, but through the combined strength of the entire nation. For Indian Air Force, jointness is the only way forward. Our endeavor is to ensure that the reach, speed, and precision of air power are fully harnessed so that its effects are felt across every dimension of the battle space. इस अवसर पर मैं अपने आदरणीय एयर वेटरन्स को नमन करता हूँ. आपकी दूरदृष्टि, समर्पण और मार्गदर्शी नेतृत्व ने ही इस सशक्त भारतीय वायुसेना की नींव रखी है, जो आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है. साथ ही मैं अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग पर अपनी प्राणों की आहुति देकर तिरंगे का मान रखा. आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज दैट थ्रू एवरी चैलेंज द अनवेवरिंग सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ऑफ आर फेलो सिटीजन्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द इंडियन एयरफोर्स. देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और आप सभी का आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है. अंत में हम समस्त वायु योद्धा, भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद एवं सटीक की अवधारणा का स्मरण करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र की रक्षा, उसकी संप्रभुता और अखंडता के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे तथा अपने आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम पर अडिग रहेंगे. जय हिंद.
1: On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force,
2: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स. आज का हमारा स्पेशल शो एयरफोर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, और हमारे साथ हैं वायुसेना मेडल से सम्मानित सीनियर फेलो एट द मनोहर पारिकार इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग जी. सर, बहुत बहुत एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा आप आज के स्पेशल शो में. और सर, इंडियन एयरफोर्स का मैं आपसे पूछ रहा, एक कोई स्पेशल सॉन्ग भी है
3: जी,
2: तो वो क्या कुछ जोश से भर देता है, आपको पुराने दिनों की याद दिलाता है?
3: भारतीय वायुसेना का एक अपना सॉन्ग है जिसे वायुसेना सॉन्ग कहते हैं
2: जी,
3: और
2: जी,
3: मैं
2: जी.
3: सुनना चाहूँगा क्योंकि ये हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है.
2: बिल्कुल सर,
3: यदि आप सुना पाएं तो बहुत
2: बिल्कुल सर जरूर. और हम यहाँ पर एयरफोर्स डे का ये गाना हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और डेडिकेट कर रहे हैं सर आपको भी.

0: सर कैसा महसूस कर रहे हैं इस सॉन्ग सुन करके?
1: मुझे लग रहा है कि ये भारतीय वायु सैनिकों को
0: जी
1: उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी कर्तव्य

0: विनिष्ठा और उनका जो कमिटमेंट है भारत के प्रति
1: जी
0: उसकी याद दिलाता है, उसको सेलिब्रेट करता है और बताता है कि कैसे भारतीय वायु सैनिक किसी भी स्थिति के लिए भारत के साथ खड़ा है, भारत के नागरिकों के साथ खड़ा है, भारत की सुरक्षा में खड़ा है और इस देश को किसी की नज़र ना लगे उसे बचाने के लिए तैयार खड़ा है। ये भारतीय वायुसेना की अंदर से आई हुई आवाज़ है जो शायद ये कुछ शब्द कहते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी आज जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, क्योंकि वो हमारे ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उन्होंने कुछ बात कही कि हमारी वायुसेना ड्रोन से लेके हाइपरसोनिक सिस्टम्स के लिए तैयार है,
1: बिल्कुल,
0: ज़मीन से लेके स्पेस तक के लिए तैयार है। उन्होंने जॉइंट प्लानिंग की बात की कि भारतीय वायुसेना हमेशा से ही जॉइंट प्लानिंग के लिए हमेशा तत्पर रही है और हमने ऑप सिंदूर में दिखाया कैसे जॉइंट प्लानिंग की वजह से हम दुश्मन के हर मंसूबे को धराशायी कर पाए। उन्होंने लीडरशिप की बात की, एक लीडर है जो बहुत ही एडवर्स सिचुएशंस को भी अपने फायदे के लिए, अपने सक्सेस को ट्रांसफॉर्म करता है
1: जी।
0: उन्होंने एक दो बात कही कि देश की सुरक्षा हमारा धर्म है। उन्होंने याद कराया भारतीय वायु सैनिकों को कि ये कभी ना भूलें और उन्होंने नागरिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि नागरिकों का सहयोग हमारी ताकत है। कैसे एक आदमी भारतीय वायुसेना की ताकत है, उन्होंने एक्सप्रेस किया। और एक जो इम्पोर्टेंट इशू उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता। जब वो बात कर रहे थे एएलएच, अंकुर, ट्रेनर, एलसीए, इन सब के पीछे मैं कुछ बहुत ही कुछ लोगों की बात बताना चाहूँगा जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता के लिए कब से प्रयत्न कर रहे हैं। और आप इनमें एक हैं डॉक्टर एस आर विल्लूरी, जो अमेरिका में अपना जॉब छोड़ के भारत में, जब इंडिपेंडेंट हुआ भारत में आए और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के एजेंसी के पहले डायरेक्टर बने और उन्होंने कई शुरुआत दी अपनी भारत में एयरक्राफ्ट डिज़ाइन को।
1: अच्छा।
0: शुरुआत में फिर थे डॉक्टर वी एम घाटगे। आप देखिए 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए और चार साल में उन्होंने भारत का पहला ट्रेनर बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान ट्रेनर 2। चार साल में कोई गुलाम देश अपना खुद जहाज ट्रेनर बनाए
1: जी।
0: और जबकि वो उसके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है,
1: बिल्कुल।
0: तो ये बहुत ही हमारे जो है भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ है
1: जी, बिल्कुल।
0: ऐसे हमारे एक एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह है जिनकी बातें मैं बाद में बताऊंगा
1: जी।
0: और कुछ एक रुस्तम भी दमानिया है जिनके नाम पे हमारे रुस्तम ड्रोन है। हमारे कुछ टेस्ट पायलट्स हैं जैसे सुरंजन दास, विंग कमांडर अशोक और बहुत सारे भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। और अगर मैं अब के ज़माने की बात करूँ तो आपका जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है
1: जी,
0: उसके जो जनक मैं कहना चाहूँगा वो है डॉक्टर कोटा हरि नारायण। वो अभी जीवित हैं और इतनी उम्र में अभी भी उतने ही जोश से भारत की सेवा में लगे हुए हैं।
1: बहुत खूब सर।
0: तो बहुत हमारे भारतीय वायुसेना को सक्षम बनाने के लिए जो वीर हैं
1: जी,
0: जो
1: जिन्होंने भारत ने
0: कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, शायद वो भी एक ऐसे हैं जिनको हमें इस दिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है और फ्यूचर आत्मनिर्भरता का है, फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी पर ले जाने का है। तो हमारे साइंटिस्ट का है, हमारे इंजीनियर्स का है, हमारे इनोवेटर्स का है, हमारे स्टार्टअप्स का है, हमारे एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का है और हमारी भारतीय इंडस्ट्री का है जो भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करे और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाए कि हम सिर्फ अपने देश की रक्षा ना कर पाएं बल्कि एक्सपोर्ट कर पाएं, हमारी इकोनॉमी को अच्छा बना पाएं और भारत को एक विकसित राष्ट्र बना पाएं।
1: सर जैसा आपने बताया, एक तो इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से एक आत्मनिर्भर भारत में इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे आपने बताया कि हमारी प्रीवियसली जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही कितने लोगों ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। सर और क्या पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको आप मेंशन करना चाहेंगे और इंडियन एयरफोर्स का उस आत्मनिर्भर भारत में भी जो योगदान रहा वो भी बताइए।
0: देखिए भारतीय वायुसेना ने अगर आप देखें जो पहला जो एक दो टू सीट एयरक्राफ्ट बनाया था वो था 1958 में, जिसको कानपुर वन कहते हैं।
1: अच्छा।
0: ये एचएल ने नहीं बनाया था,
1: ठीक है,
0: ये भारतीय वायुसेना

0: के इंजीनियर्स ने कानपुर में बनाया, इसलिए इसका नाम कानपुर वन बना।
1: ओके
0: फिर इन्होंने फोर सीटर बनाया जिसका नाम था कानपुर टू। हालांकि ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चला
1: जी,
0: लेकिन भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स बहुत कैपेबल थे
1: जी, बिल्कुल बना पाए वो।
0: हाँ, और मैं एक और बताना चाहूँगा कि एक एवरो जहाज था जिसकी हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लिया 1959-1960 के बाद।
1: ओके
0: और उस वक्त जो था हमने पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई और दो साल में उसको हमने पहला जहाज भारत में बनाया। ये जो इनिशिएटिव था
1: जी,
0: ये एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह जो उस वक्त इंचार्ज थे मेंटेनेंस कमांड के, उन्होंने एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो बनाया कानपुर में, जो उस वक्त के भारतीय वायुसेना चीफ सुब्रतो मुखर्जी उन्होंने इनॉग्रेट किया। और फिर हमने वो जो बाद में जो फाइटर बनाने के काम आया
1: जी,
0: और एयरक्राफ्ट हमने बनाए। तो भारतीय वायुसेना ने आपकी आत्मनिर्भरता में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और अगर मैं रीसेंट इनिशिएटिव्स देखूं
1: जी,
0: तो 8 अक्टूबर 2018 को भारतीय वायुसेना ने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था मेहर बाबा यूएस स्वॉर्म कॉम्पिटिशन। यूएस इज अनमैन्ड एरियल सिस्टम, या जिसको आजकल हम ड्रोन भी कहते हैं।
1: जी जी जी।
0: स्वॉर्म की तरह कैसे हम अपनी देश की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट या डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कर पाए या अपने देश की सुरक्षा में उसको इस्तेमाल कर पाए, ये जो कैपेबिलिटी है भारतीय वायुसेना ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। तो भारतीय वायुसेना बहुत कुछ करती आई है,
1: बिल्कुल,
0: और फ्यूचर में हमें बहुत स्कोप है आगे करने का।
1: और सर ये भी जैसे आपने बताया कि हमारा जो आजाद भारत का पहला जहाज, जैसे कि आपने बताया
0: HT2 1991
1: बनाया,
0: चार साल बाद जी,
1: 1947
0: में इंडिपेंडेंट हुए और चार साल
1: के अंदर
0: हमने एक टू सीटर ट्रेनर बना लिया। और ये बहुत सालों तक हम भारतीय वायुसेना की सेवा में रहा। मैंने इसको उड़ते हुए देखा 1990 के करीब,
1: तब तक
0: उड़ रहा था 1950, इतने साल इसने भारत की सेवा की। तो और बहुत हमारे कैपेबल से हमारे इंजीनियर्स रहे
1: सर। यही इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा सर, जो एयरफोर्स का पहला जहाज वो कब बना?
0: एयरफोर्स का बना जो भारतीय वायुसेना ने डिजाइन किया था वो था कानपुर वन, जैसे मैंने बोला 1958 में
1: जी।
0: और हालांकि बाद में हमारा रोल उस तरीके से नहीं था
1: जी,
0: लेकिन एयरफोर्स एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर था जब हम इंडिपेंडेंट हुए। टेक्नोलॉजी में, एविएशन टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे जो ब्रिटेन और या अमेरिका के पुराने जहाज थे
1: जी जी,
0: उनको कबाड़ खाने से ला के उसको ऑपरेशनल बनाया।
1: ओके
0: और उस वक्त जो था, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स जो थे फ्रंट एंड पे नहीं थे, हमारे इंजीनियर्स एक मेंटेनेंस और उन कामों में थे, तो उस समय में एयरक्राफ्ट को साल्वेज यार्ड से निकाल के उसको फ्लाइंग ऑपरेशनल बनाना, ये एक बहुत बड़ा रोल है।
1: इनफैक्ट
0: अगर आप हरजिंदर सिंह जी की स्टोरी सुने
1: जी,
0: तो वो इंजीनियर थे, उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में पायलट की ट्रेनिंग ली और पायलट लाइसेंस लिया।
1: अच्छा,
0: उस वक्त तो वो डिजाइन भी करते थे और उसको उड़ाते भी थे। मतलब नॉट हार्ड टेस्टिंग जहाज, लेकिन वो पायलट थी तो उन्हें डिजाइन और मेंटेनेंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ऐसे ही अगर आप रुस्तम भी दमानिया का समय पढ़ें, जो एक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, वो भी पायलट थे, वो अमेरिका में पायलट की ट्रेनिंग लेके आए और भारत में आके जब जहाज उड़ते थे तो वो डिज़ाइन के साथ साथ अपने इंजीनियर्स को बताते थे कि ये जहाज़ कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे भारतीय पायलट्स की आवश्यकता है। तो हमारे बहुत एक रिच हिस्ट्री रही है,
1: बिल्कुल,
0: सिर्फ वॉर फाइटिंग में नहीं बल्कि अपने देश को सशक्त बनाने
1: में
0: एरोनॉटिक्स कैपेबिलिटी बनाने,
1: और वो मेड इन इंडिया,
0: मेड इन
1: अपने ही लोगों ने बनाया,
0: मेरे मेड इन इंडिया में। अगर आप सुरंजन दास की बात करें तो जब हम अपना फर्स्ट फाइटर एयर का बना रहे थे
1: जी,
0: तो वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, तो जर्मन साइंटिस्ट बीच में चले गए।
1: अच्छा।
0: तो सुरंजन दास ने उनका काम टेक ओवर किया, तो टेस्ट पायलट होते हुए उन्होंने डिजाइन को अपने देश के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए
1: अच्छा,
0: उसको अगले लेवल पर ले जाने की प्रयत्न किया।
1: सर जिस तरीके से आपसे हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी जानकारी हमें मिल रही हैं, और जैसे आपने बताया कि पहला एयरक्राफ्ट हमारा कब बन गया था, ये हमारे लिए बड़ी ही फख्र की बात है, गर्व की बात है, और ये नॉलेज में हमारी एक तरह से बढ़ोतरी हो रही है। सर यहाँ पर मैं आगे बढ़ते बढ़ते आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं और आपसे बहुत सारी बातें करूँ, लेकिन इससे पहले कुछ मैसेजेस जो आ चुके हैं मैं उनको ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। हितेंद्र दास का असम से है मैसेज, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं सर आपको,

0: सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे और हमें भी उन पर गर्व है।
1: बिल्कुल। और यह है सर यशवंत आठमुठे धाराशिव महाराष्ट्र से। नमस्कार, जय हिंद सर, जय भारत कह रहे हैं आपसे। और ये मैसेज है मंसूर अली खान, आप सबको नमस्कार, वायुसेना को सलाम कर रहे हैं ये सर। और ये एक बहुत बड़ी कविता लिखकर भेजी है, ये बहुत बड़ी कविता है यश शिंदे की मुंबई से। और मुझे लगता है कि परिंदों से कह दो कि हम अपनी उड़ान और ऊंची कर लें, क्योंकि आसमान में अब बाजों का पहरा है। ये भारतीय वायुसेना के जाबाज सिपाही हैं, इनका हौसला समंदर से भी गहरा है। जिनकी हुकूमत से कांपता नीले अंबर का सीना है, देश के उन रखवालों का शान से ही तो जीना है, जिन्होंने सीखा सिर्फ वतन के लिए मरना और जीना है। नीले गगन की ओट में रहकर जो फर्ज निभाते हैं, वो तूफानों के रुख को भी मोड़ कर आते हैं। भारतीय वायुसेना के उन वीर सपूतों को सलाम जो आसमान में भारत का मान बढ़ाते हैं। वायुसेना के शेरों को शत शत नमन। हमारा वायुसेना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई सर आपके लिए। ये यश शिंदे मुंबई से मैसेज कर रहे हैं,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और सर ये आई एम प्राउड ऑफ ऑल यू सर, लव लाइफ IAF, जय हिंद। दीपांशु भटिंडा से, एयर फोर्स इज द बेस्टेस्ट इन द यूनिवर्स, जय हिंद। दीपांशु का सर ये मैसेज है। और ये मैसेज है रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र डहाणू वाड़वण से, जय हिंद सर जी, आपको ये कह रहे हैं। और ये है सर, जय हिंद टू टुडेज रिस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड गुड आफ्टरनून आरजे सर, थैंक यू, माय हार्डेस्ट लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल आवर बिलेवड इंडियन आर्मी फॉर दी सेल्फलेस सर्विस एंड इंडियन एयरफोर्स टुवर्ड्स द नेशन। आई बो माय हैट टू देम, माय सेल्फ शंकर लोथ फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 सर दिल्ली से ये कर रहे हैं। भारत माता की जय, जय वंदे मातरम। और ये सारे मैसेजेस लगातार हमारे पास सर आ रहे हैं, हम बीच बीच में कोशिश करेंगे इनको लेने की। लेकिन सर मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपने अपने करियर के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, क्योंकि आपका काम ही ऊंचाई पर जाना और फिर नीचे आना। तो उन उतार चढ़ाव में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी याद तो आता हो लेकिन आपको डराता भी हो, आप सिहर भी जाते हो, कुछ ऐसा?
0: नहीं देखिए, मेरे एक सीनियर कहते थे कि डर लगता है। मैंने कहा यस सर, कहते फिर तुम जियोगे।
1: अरे वाह,
0: डरना चाहिए लेकिन उस डर को ओवरकम करना भी आना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अगर आप डर को नहीं ओवरकम कर पाते तो हम उड़ नहीं पाते।
1: अगर हम, डर भी जरूरी है।
0: हाँ, क्योंकि वो सैनिटी रखता है आपको सोचने की, ठीक दिशा, ठीक डिसीजन लेने की एक ज्ञान देता है आपको, बार बार याद कराता है कि किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना।
1: Exactly.
0: तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी, हम जहाँ पर ऐसी सिचुएशंस में थे कि लगता नहीं था कि निकल पाएंगे
1: जी।
0: लेकिन उस वक्त अपने माइंड को कूल रखना और ठीक डिसीजन लेना, अपनी टीम, देखिए भारतीय वायुसेना में मैं हेलीकॉप्टर पायलट हूँ, दो पायलट होते थे, हमारे टेक्नीशियंस होते थे, तो एक टीम थी हमारा। मैं तो कहता हूँ जो हमारा NC जो सुबह खाना लाता था या पानी लाता था, वो भी हमारी टीम का मेंबर
1: है। बिल्कुल।
0: और हमारी वाइफ जो सुबह पता नहीं 4 बजे बेचारे उठती थी या कब उठती थी, हमारे पूरे जो वायुसेना की टीम थी उनकी फैमिली, उनके जो कमिटमेंट, उनके जो सेक्रीफाइस हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस होती थी। हमारा दिल करता था कई बार कि हम घर जाएं लेकिन नहीं जा पाते थे। तो मुझे लगता है ये एक नहीं, बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन वो अपनी देश की ड्यूटी से बड़ी नहीं थी।
1: नहीं थी, बेशक सर। यही डेडिकेशन जो हम देखते हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस के, हमारे सोल्जर्स में, हमारे सिपाही, हमारे सैनिकों में, वो जज्बा, वो देशभक्ति से, मतलब देशवासियों को भी पूरा देशभक्ति से भर देता है वो। सर एक इंसिडेंट है आपका, मैं आपसे उस पर पूछना चाहूंगा। अगस्त 1998
0: जी,
1: 18,000 फीट की ऊंचाई पर आप फ्लाई कर रहे हैं
0: जी, जी।
1: सर ऐसा क्या हुआ कि उस दिन जिंदगी बदल गई और आज आप हमारे सामने बैठे हैं
0: जी? वो एक ऐसा दिन था जिसमें बहुत अच्छा सा मौसम था
1: जी,
0: और हम नॉर्मल, देखिए मैं नॉर्थ सेक्टर में था
1: जी,
0: ग्लेशियर मतलब ले सेक्टर में अगर आप बोलिए, और हम जो है सब सेक्टर नॉर्थ में दौलत बेग ओल्डी में गए थे।
1: अच्छा।
0: वहाँ पर हमने अपना जो भी अपना ऑपरेशन था किया
1: जी,
0: वापस आ रहे थे और मेरे साथ मेरे को पायलट थे फ्लाइंग ऑफिसर नितिन वेल्डे, हम दोनों फ्लाइंग करके अपना ऑपरेशन करके वापस आ रहे थे, हमारे साथ एक पैसेंजर भी थे। और जब हम वापस आ रहे थे तो एक प्लेस है सासेरला, सासेरला मतलब पास कहते हैं, तो उसको हम जैसे ही क्रॉस किया तो हमारे इंजन फेलियर हो गया। और देखिए हेलीकॉप्टर में जब इंजन फेल होता है तो ये ग्लाइड नहीं करता, नीचे जाता बहुत तेजी से।
1: ओके।
0: तो जब

0: बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। तो मैं कहूँगा ये मेरे को पायलट की सूझबूझ थी कि मैं जहाज़ उड़ा रहा था और वो देख के मुझे बता रहा था कि किस तरफ जाना है।
1: अच्छा,
0: और
1: ये
0: देखिए
1: आपका उनका कोऑर्डिनेशन था
0: कोऑर्डिनेशन था। और
1: जी।
0: देखिए हम जो पायलट हैं हमें इंजन की आवाज़ की आदत है। उस दिन साइलेंस थी
1: अच्छा
0: तो वो बहुत डेडली साइलेंस थी। शायद दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमी होंगी जो मैं अभी याद नहीं कर पाता हूँ,
1: जी
0: बट उस वक्त मुझे याद था कि काफ़ी कुछ दिमाग से निकला था। कुछ सेकंड्स का ये जर्नी थी। हमारा जहाज बहुत तेज़ी से ज़मीन की तरफ जा रहा था। 18,000 से करीब जब मुझे लगा कि मैं ज़मीन पे जो नीचे जो 11,000 फुट पे थी
1: जी
0: वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, तो मैंने कोपायलट से बताया कि लैंडिंग की जगह बताओ। तो उन्होंने
1: अच्छा
0: मुझे बोला दाहिनी तरफ को एक जगह थी, मैं जिस तरफ जा रहा था। तो उन्होंने जैसे ही बोला मैंने उस तरफ देखा, एक ही पॉइंट था, आगे पहाड़ था। तो
1: अच्छा
0: हमने फ्लेयर किया। और हेलीकॉप्टर में क्या होता है, आपके पास एक ही चांस होता है। जब आप फ्लेयर करते हो, आप
1: जी
0: जहाज में पीछे करते हो, नीचे से जो हवा आ रही होती है,
1: जी
0: जैसे ही आप डिस्क को टिल्ट करते हो
1: जी
0: तो आपके पास एक ही मौका होता है, या तो आप बच गए या नहीं बचे,
1: अच्छा, दूसरा कोई चांस
0: दूसरा
1: नहीं।
0: कोई चांस नहीं। तो वो जो था आई थिंक बेस्ट ऑटो रोटेशन लैंडिंग मैंने अपनी लाइफ की थी, जिसने बचाया। मेरे जो टीचर्स थे, मेरे जो
1: जी
0: इंस्ट्रक्टर थे,
1: जी
0: जिन्होंने हमें डांट डांट के प्रिसीजन सिखाया, वो इंजन आरपीएम मेंटेन करना सिखाया और फोकस करना सिखाया। और जो ले में जो मेरे जूनियर और मेरे पियर्स और सीनियर्स थे, उन्होंने बताया कि कैसे आपको
1: इस सिचुएशन
0: आरपीएम
1: में
0: में हैंडल करना है। तो
1: जी
0: मुझे लगता है वो पूरी ज्ञान जो था वो एक सेकंड में जो बुआ
1: एक सेकंड में
0: उसने हमारी लाइफ को बचा दिया। आज मेरी जो है ये
1: जी
0: दूसरी लाइफ है। मेरा जो को पायलट है,
1: जी
0: मेरे जो बाकी मित्र हैं जिन्होंने हमें रिकवर किया, हम
1: जी
0: दो जहाज थे, दूसरे जहाज ने आगे हमें रिकवर किया।
1: अच्छा
0: तो मुझे लगता है वो प्रोफेशनलिज्म मेरे सीनियर्स, मेरे पियर्स, मेरे बाकी सारे
1: कोलिग्स आपके
0: वायुसेना
1: जी
0: के जो थे उसका एक निचोड़ था। और शायद जो अच्छी काम था या भगवान की मर्जी थी कि मुझे एक सेकंड लाइफ मिलनी है।
1: बिल्कुल
0: अभी ज़मीन के से बहुत दूर होते हुए भी पहाड़ के बीच में
1: जी
0: 14,200 फीट 200 फीट पे जहाज़ को रिकवर किया और जहाज़ टूट गया, लेकिन हम में से किसी को चोट भी नहीं आई। हम
1: वो
0: तीनों
1: क्रैश हो
0: निकले,
1: गया।
0: क्रैश होके टूट गया, फिर हम तीनों बाहर निकले, हमें दूसरे जहाज़ ने रिकवर किया। तो शायद आई थिंक हमारी जो वायुसेना का प्रोफेशनलिज्म है कि कैसे आप सिचुएशन को डील करते हो, उसको
1: जी
0: कोई भी सीरियस, मतलब हम बहुत सीरियसली लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: और मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स ने जिस तरीके से सिखाया, जितनी प्रैक्टिस कराई, एक एवरेज बंदे को भी एक हाईली प्रोफेशनल बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना की मैं जितनी तारीफ करूं कि
1: बिल्कुल
0: एक
1: सर
0: आम लड़के को उसको एक प्रोफेशनल पायलट बनाया। और फिर ये जो है, मैं 1998 की बात है,
1: जी
0: उसके बाद 2012-13 तक मैं 2008-9-7-8 तक रेगुलर फ्लाइंग की।
1: अच्छा
0: तो उतनी देर उसके बावजूद चलते रहना, उसके बाद कितने
1: बिल्कुल
0: लोगों ने जो सिखाया होगा,
1: बिल्कुल
0: और लगभग मैंने 4,700 घंटे उड़ाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
1: बिल्कुल सर। तो ये अपने आप में बहुत ही यादगार और बहुत ही कमाल की बात है कि जो आपने इंसिडेंट बताया कि वो सर्वाइवल जो था वो लाइफ चेंजिंग रहा। तो इसलिए सर हम आपकी इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि आप उस मौके पर किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया, उस सिचुएशन को आपने संभाला और सारे लोग बच गए और आज आप साक्षात हमारे साथ हैं और हम इस पर बात कर रहे हैं। तो हम ये कहें कि ये फ्लाइंग जो है वो अपने आप में बहुत एक्साइटिंग भी है लेकिन बहुत ख़तरनाक भी है। तो जो सर है ना कि हीर आसमानी, तो जब आसमान में उड़ते हैं तो फिर बस कुछ नज़र नहीं आता, हम आसमान में होते हैं।
0: मेरे ख्याल खतरनाक तो नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि अगर आप जब प्रोफेशनलिज्म आता है तो खतरनाक नहीं होता।
1: जी
0: आप उसको कैसे सिक्योर बनाते हैं, ये
1: बिल्कुल, और साथ में एंजॉय भी करते हैं,
0: एंजॉय तो करना, आई थिंक प्रोफेशनलिज्म में आप पूरा फोकस्ड होते हैं।
1: फोकस्ड होते हैं।
0: जी
1: हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आर के नारंग। आप सुन रहे हैं आज का एयरफोर्स डे स्पेशल। मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और ये है 102.6 एफएम नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो, दिल से दिल तक।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। आज है एयरफोर्स डे और आज के हमारे खास मेहमान एयरफोर्स डे पर ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर, हम अगर बात करें ड्रोन टेक्नोलॉजी की, ड्रोन्स जो है आजकल जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसका बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? भारत कहाँ है? हम अपने ड्रोन्स भी डेवलप कर रहे हैं आजकल, हम टेक में भी काफ़ी आगे जा चुके हैं, आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
1: देखिए, ड्रोन्स भारत नहीं पूरे विश्व में
0: जी
1: वॉर फाइटिंग को भी बदल रहा है और आम नागरिक के लिए भी बहुत बड़ा चेंज ला रहा है।
0: जी,
1: भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत को हम एक ग्लोबल ड्रोन हब देखना चाहते हैं 2030 में। और मिलिट्री में अगर आप देखें, जितनी भी वॉर्स हुई हैं, आर्मेनिया अज़रबैजान वॉर हुई, अगर आर्मेनिया ने तैयारी नहीं की तो वो वॉर फटाफट लूज कर गया, तो इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि ड्रोन अभी मैन्ड एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की सिचुएशन में नहीं है,
0: लेकिन सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल, तो ड्रोन से ही सब अब तो
1: ड्रोन एक सिग्निफिकेंट पार्ट बनने जा रहा है। और इसमें जो है भारतीय जो स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, और इवन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जैसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है मिलिट्री ड्रोन्स बना रही हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बैंगलोर है वो बना रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जिसका एक कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम है, घातक प्रोग्राम है हमारा जो है, आर्चर प्रोग्राम है
0: जी।
1: और जो स्टार्टअप्स जो हैं वो जो है हमारे एग्रीकल्चर के लिए बना रहे हैं।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: एक स्वामित्व स्कीम है, ड्रोन दीदी स्कीम है, तो भारत में काफी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं कॉशन देना चाहूंगा, अगर आप यूक्रेन वॉर में देखें, जो क्रिटिकल ड्रोन इंपोर्टेड कंपोनेंट थे उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ यूक्रेनियन की डेथ हो गई, वो चाइनीज DJI ड्रोन यूज कर रहे थे और उनके वाइस प्रीमियर ने पब्लिक में जाके एक्स पे वो उस पोस्ट को डाला। सिमिलरली अगर आप देखें पेजर और वॉकी टॉकी में जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं
0: जी,
1: वो 3000 हिजबुल्ला लड़ाके इंजर्ड हुए उसकी वजह से और 40 से 50 मारे गए। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो

0: वल्नरेबल थे। तो मुझे लगता है ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी जब हम आत्मनिर्भरता जो कर रहे हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि क्रिटिकल कंपोनेंट इंडिया में बने और हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है जैसे घातक है, आर्चर एनजी है, या आर्चर एनजी जो है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हमारी डीआरडीओ के लेबोरेटरी एडीई बना रही है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बना रही है कैट्स प्रोग्राम जिसे कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम बना रही है। हमारे स्टार्टअप्स बना रहे हैं लॉयटरिंग ड्रोन्स बना रहे हैं, एक हमारी प्राइवेट कंपनी है जो स्वॉर्म ड्रोन बना रही है। तो भारत में इनोवेशन है, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि क्रिटिकल कंपोनेंट वल्नरेबल ना हो, इंपोर्टेड इतने ना हो कि भारत की वल्नरेबिलिटी बन जाए,
1: हम सेफ सिक्योर भी रहें, प्लस ये कि हमारी टेक्नोलॉजी
0: हम आत्मनिर्भर बने,
1: आत्मनिर्भर बने, मेड इन इंडिया हो सारे वो जो कंपोनेंट्स हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं वो हम खुद बनाएं ताकि हम हर तरह से टेक्निकली भी एडवांसमेंट पर जाएं प्लस सेफ और सिक्योर भी।
0: और हमारा जो है ना जो जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
1: जी,
0: जो कोर डिजाइन है वो हमारा
1: अपना हो,
0: हमारे जो वल्नरेबिलिटीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है जिसकी वजह से ये अटैक हुए वो सब भारतीय बने, धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक अप्रोच से करें तो मुझे लगता है भारत में बहुत पोटेंशियल है। मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहना चाहूँगा कि भारतीय स्टार्टअप्स, हमारी प्राइवेट कंपनी, इवन हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी में बहुत प्रॉमिस है। हमें प्राइवेट वर्सेस पब्लिक नहीं करना, प्राइवेट वर्सेस यू नो लार्ज कंपनी वर्सेस स्टार्टअप नहीं करना, हम सबको एक बनना है, एक मुट्ठी बनना है, पांच उंगलियां एक एक उंगलियां से ज्यादा स्ट्रांग बनेंगी। और अगर हमने स्टार्टअप्स, एकेडमिया, पब्लिक सेक्टर, डीआरडीओ, प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप, एमएसएमई, ये सब इकट्ठे आ गए तो हम भारत को एक विश्व पटल पर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर स्थापित कर पाए।
1: बिल्कुल सर, आपने एक किताब भी लिखी है India's Quest for UAVs and Challenges, तो वो इसी पर ही फोकस्ड है वो कि UAVs जो हैं और ये ड्रोन जो हैं उनकी टेक्नोलॉजी को, और उस पर किस तरीके की सर इसमें जो कंटेंट जो किताब आपने लिखी।
0: देखिए ये किताब 2014 में मैं सेंटर फॉर एयरपावर स्टडीज़ में गया था।
1: अच्छा।
0: जब मैं वहाँ रिसर्च करने गया तो मुझे मुझे गाइड किया गया
1: जी।
0: हमारे वहाँ डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल पटनी और बाकी जो टीम में बोला गया कि मुझे ड्रोन्स पे रिसर्च करनी
1: जी। आपने ऑलरेडी एविएशन, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम सब पर रिसर्च की है आपने
0: जी
1: जी।
0: तो मुझे लगता है कि ये भारतीय वायुसेना ने और हमारे जो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज जिसको आजकल सेंटर फॉर एरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज कहते हैं कैप्स, वहाँ पर मेरे जो लीडर्स थे और जो मेरे सीनियर्स थे और मेरे जो कलीग्स थे उनमें मेरे ग्रुप कैप्टन विवेक कपूर हैं, हमारे एयर मार्शल नौहार हैं, एयर मार्शल पटनी हैं, एवीएम बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया। और मैं उसमें मुझे याद है कई स्कॉलर्स होते थे जो नॉर्मल पीएचडी या एमएससी कर रहे थे और कैप्स में रिसर्च कर रहे होते थे, वो हमें गाइड करते थे कि रिसर्च कैसे की जाती है।
1: आप खुद भी सर एक हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन एयरफोर्स के और फिर रिसर्च में आप आए, तो ये भी बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन था
0: जी। मेरे मुझे इसमें मैं कहना चाहूँगा ग्रुप कैप्टन विवेक कपूर ने मुझे नज किया कि भाई आप पीएचडी कीजिए।
1: ओके।
0: तो ये मुझे लगता है कि वो मेरे मेंटर और गाइड रहे, उन्होंने जैसे उन्होंने सिखाया जैसे उन्होंने गाइड किया अभी भी मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। फिर मैंने जेएनयू में सिर्फ जब पीएचडी की तो मेरे जो प्रोफेसर्स थे मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरे जो कोलीग्स थे जिन्होंने मेरे साथ पीएचडी की उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, कैप्स में बहुत कुछ सीखा। और अब जो है मैं आईडीएसएम में हूँ, एमपी आईडीएसएम मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, वहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं एम्बेसडर चुनाव है और बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स और कलीग्स हैं
1: जी।
0: मुझे लगता है मेरे लिए एक बहुत ही सीखने का समय है और मुझे लगता है कि ये ज्ञान जो है भारत के फ्यूचर, भारत को एरोस्पेस पावर बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को एक सशक्त और विकसित भारत बनाने के कंट्रीब्यूट करे, तब मैं सोचूंगा कि मैंने अपना एक कुछ कंट्रीब्यूट किया।
1: बिल्कुल सर, इसी बात पर मैं भी ये भी जानना चाहूँगा अभी कि अभी जिस तरीके से आपने सब चीज़ें बताई, आत्मनिर्भर भारत और हम मेड इन इंडिया के थ्रू जिस तरीके से हम अपने आप चीज़ों को बना रहे हैं और अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं, सेल्फ रिलायंस बना रहे हैं, तो 2047 में 2047 में आप क्या मतलब देखना चाहते हैं, किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं? और ख़ास तौर सर इसके साथ ये भी कि जो इंडियन एयरफोर्स की एरोस्पेस पावर बनाने के लिए जो एक विजन होना चाहिए वो किस तरीके से आप देखते हैं?
0: देखिए भारतीय वायुसेना ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, उन्होंने अभी एक डायरेक्टरेट ऑफ रिमोट बनाया जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सेट है, मेहर बाबा स्वाम कॉम्पिटिशन है वो भी एक प्रोग्रेसिव सेट है
1: जी।
0: लेकिन एक पार्ट है जो मुझे लगता है भारतीय वायुसेना एक फैसिलिटेटर है, एनेबलर है,
1: ठीक है,
0: जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ कर पाए हैं
1: जी।
0: लेकिन मैं

0: हूं कि भारतीय वायुसेना पार्टनर बने डिजाइन डेवलपमेंट में। देखिए क्या है, हमारी इंडियन नेवी में शिप बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो है,
1: जी
0: तो उससे हमारा शिप बिल्डिंग का इंपोर्ट बहुत कम हो गया है और
1: ठीक है
0: उसका सक्सेस रेट बहुत बढ़ गया है। तो अगर मुझे भारतीय वायुसेना एक एरोनॉटिक एरोस्पेस डिजाइन बोर्ड या एरोस्पेस रिसर्च लेबोरेटरी और एरोस्पेस रिसर्च वर्टिकल बनाएगा,
1: जी
0: तो हमारा जो एरोस्पेस प्रोजेक्ट है उसमें सक्सेस रेट बहुत
1: बढ़ जाएगा,
0: बढ़
1: बिल्कुल
0: जाएगा।
1: बिल्कुल
0: और मुझे लगता है कि मैं चाहूँगा भारत जो है आत्मनिर्भर सशक्त एरोस्पेस फोर्स बने, भारतीय वायुसेना जो है
1: जी
0: आत्मनिर्भर सशक्त एरोस्पेस फोर्स बने 2047 तक।
1: जी
0: हम आत्मनिर्भर हों एरो इंजन में, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में, मैंड अनमैंड फाइटर्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी में एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये जो पांच वर्टिकल हैं ये भारत को, भारतीय वायुसेना को सशक्त रियली बना सकते हैं, और जो एरोस्पेस डिजाइन ब्यूरो है
1: जी
0: उसकी कमियों को सक्सेसफुल होगा। हमारे जितने भी इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं
1: जी
0: हमें उसको कैसे सक्सेसफुल बनाना है उसमें थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच करें, टेक्निकल रिव्यू कीजिए, रीओरिएंटेट कीजिए, कोर्स करेक्ट कीजिए और उनको सक्सेसफुल बनाइए। ये
1: बिल्कुल
0: मेरा
1: सर,
0: एक विजन है, मेरा सपना है, ताकि मैं अपने फाइटर्स भारत में बने, भारत में
1: बिल्कुल
0: डिजाइन किए फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और यूएवीज उड़ाऊं और उन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम से देश की रक्षा करूं, उन्हें एक्सपोर्ट करूं और भारत को विश्व पटल पर डिफेंस एंड एरोनॉटिक्स का एक सशक्त एक्सपोर्टर बना पाऊं और भारतीय अर्थव्यवस्था में
1: जी
0: एक कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊं।
1: कंट्रीब्यूशन भी हो। बिल्कुल सर, मैसेजेस हमारे पास लगातार आ रहे हैं, मैं आपको कुछ मैसेज यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये मैसेज है, राजेश भल्ला एडवोकेट हैं कंकर खेड़ा मेरठ से। ये कहते हैं सर, डर से डरना नहीं है, डर तो सूझबूझ भी देता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनसे
1: जी
0: मानता हूं कि वही मेरे सीनियर की बात याद आई कि भाई डर से ही आपको,
1: जी
0: डर को पॉजिटिवली यूज
1: जी
0: कीजिए,
1: वही डर आपके लिए
0: लिए
1: ताकत बनता है
0: ताकत बनता है अगर आप उसको ठीक से इस्तेमाल
1: अगर
0: करें।
1: आप ठीक से इस्तेमाल करें। जी, और ये मैसेज का इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, एयरफोर्स इज द बेस्टेस्ट इन द यूनिवर्स, दीपांशु भटिंडा से। इसके अलावा ये मैसेज है सर, भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर आप सबको विनम्र अभिवादन, आज के मेहमान कैप्टन सर से बातचीत सुनना अच्छा लग रहा है, मानसी महास्कर अंधेरी मुंबई। और इसके अलावा ये हैं, वायुसेना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, धन्यवाद। और ये हैं, काफ़ी लंबा मैसेज है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। क्वीन लक्ष्मीबाई मेट हर एंड वायल सेविंग हर झांसी एट सिंध भूमि लाइक अदर्स तांतियों टोपे बट इन द नेम रॉयल ओनली दोज गेट सीन वंस ड्यूरिंग कमेरा। और आपको सर ये धन्यवाद और नमस्कार कर रहे हैं आज के इस खास दिन पर जो है इंडियन एयरफोर्स डे। और सर, अब समय हमारे पास कम बचता है, हम यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है सर, आपने वायु सेना मेडल से भी आपको सम्मानित किया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, किस उपलक्ष्य में
0: देखिए,
1: और
0: ये
1: आपकी सर्विसेज के लिए।
0: देखिए वायुसेना मेडल प्रोफेशनलिज्म के लिए दिया गया था। शायद
1: जी
0: इसमें जो मेरा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था,
1: जी
0: हम तीनों लाइफ बची हमारी,
1: बिल्कुल
0: और मुझे लगता है कि वो वायुसेना मेडल मुझे नहीं मेरे इंस्ट्रक्टर्स को दे जाना चाहिए,
1: क्या बात
0: क्योंकि
1: है सर,
0: क्योंकि उन्होंने जो सिखाया ना होता,
1: जी
0: क्योंकि कई लोग हैं जो सर्वाइव नहीं किए हैं ऐसे एक्सीडेंट्स में। और देखिए मैं बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ा रहा था, 18,000 फीट पे, जहाँ पर बहुत ही कम जो है डेंसिटी होती है। तो मुझे लगता है जो मेरे सीनियर्स या जो मेरे कलीग्स थे ले में क्या होता है कि अगर आप
1: जी
0: जूनियर पायलट भी हैं, अगर आप कैप्टन हैं,
1: जी
0: तो अगर आपका वो क्वालिफिकेशन है तो आप कैप्टन हैं।
1: ओके
0: तो मैं उस वक्त को पायलट, उस सॉर्टी से पहले को पायलट था, सिर्फ इस सॉर्टी के लिए कैप्टन था। तो मेरे जो जूनियर थे लेकिन कैप्टन थे, तो उनसे जो सीखा, मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना की प्रोफेशनलिज्म को मैं देना चाहूँगा और अपने सीनियर्स को देना चाहूँगा।
1: सर, इसी बात पर मैं आगे आपसे पूछूं कि आपका जो करियर रहा इंडियन एयरफोर्स में, तो आपकी लाइफ का क्या एक्सपीरियंस था, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा?
0: देखिए वायुसेना एक एक आम स्कूल के बच्चे को एक एक प्रोफेशनल ऑफिसर बनाता है, उसे लीडर बनाता है, उसे रिस्पॉन्सिबल बनाता है,
1: जी
0: उसे अनफोर्सीन सिचुएशंस में डील करना सिखाता है, उन्हें अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को देखना सिखाता है, उन्हें अपने फैमिली अपने को पीछे रख के अपने देश
1: जी
0: को
1: जी
0: आगे
1: देश को
0: रखना
1: आगे
0: से
1: रखना ये
0: अपने
1: सिखाता है।
0: अपने सबॉर्डिनेट्स को आगे रखना चाहता है।

0: उसे कैसे वायुसेना को अगला बनाना है वो सोचना सिखाता है, और कैसे अनफोर्सीन सिचुएशंस हो उसको संभालना है। तो
1: जी
0: ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है।
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है कि आज मैं जो बन पाया हूँ, ये भारतीय वायुसेना की वजह से कर बन
1: जी
0: पाया हूँ।
1: जी
0: एक स्कूल से निकला और कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट जब
1: जी
0: उसमें आता है,
1: जी
0: कोई इंजीनियर बनता है, चाहे कोई पायलट बनता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनता है,
1: जी
0: वो सब
1: सर, जैसे
0: भारत के
1: आपने
0: एक
1: अपने
0: बहुत अच्छे से।
1: स्टूडेंट्स स्टूडेंट लाइफ का किस तरीके से आपने वो मोटिवेशन, आप यूथ को, आज का जो नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर पायलट होगा और यूथ होगा, उसको कैसे आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे?
0: मैं चाहूँगा कि जो भारतीय वायुसेना में जान ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है,
1: जी
0: ये आपको एक रिस्पेक्ट दिलवाता है, आप भारत की एक्चुअली सेवा कर पाते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छा कैपेबल बनाइए, आप
1: जी
0: हमारे लिए टेक्नोलॉजी बनाइए, आप भारत को कैपेबल बना सकते हैं, मेडिकल के, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंजीनियर, पायलट, बहुत तरीक़ों से आप बन
1: बिल्कुल
0: सकते
1: सर,
0: हैं।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और इतनी अच्छी, इतनी काम की और इतनी कीमती बातें आपने आज हमसे की, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए आज के एयरफोर्स डे स्पेशल पर। आप हमारे आज के खास मेहमान ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: और अब सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री
2: ने में संध्या के 5 बजे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर विषय पर मुंबई में आयोजित इंटरैक्टिव सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर कहा कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष सेवा क्षेत्र महिलाओं के लिए रोजगार के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और आरोग्य केंद्रों सहित विभिन्न संगठित क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो गई है। आयुष मंत्रालय ने जानकारी दी है कि आयुष सेवाओं के कुल श्रम बल में 43% महिलाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। भोपाल में SIR के दौरान सूची से बाहर हुए मतदाताओं के नामों की जांच के लिए BLO मैदान में काम कर रहे हैं। आज और कल शहर की 7 विधानसभा सीटों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं और उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के सुबह भगवान महाकाल की भस्म आरती विशेष श्रृंगार के साथ संपन्न हुई। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक और उसके बाद पंचामृत से अभिषेक किया गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं अमीषा पटेल
1: और मैं डिम्पी रावते
0: स्वागत करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, हमेशा की तरह हम हाजिर हैं आप सभी के

0: नई नई जानकारियाँ लेकर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की आज के दो प्रश्नों के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हजारों मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है?
1: दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
0: साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आज की चर्चाओं में, और सुनिए आज के कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म धड़क से, जिसमें आवाज दी है अजय गोगावले ने।

0: जहां हौसलों की उड़ान हो वहां आसमान भी छोटा लगता है, जहां तिरंगा दिल में हो वहां हर डर फीका पड़ता है, बादलों को चीर कर जो देश की हिफाजत करते हैं वो वायु वीर हैं जो आसमान से भी ऊंचा हिंदुस्तान रखते हैं।
1: साथियों, 8 अक्टूबर केवल एक दिवस नहीं बल्कि उन जाबाज वायु वीरों के साहस, अनुशासन और समर्पण को याद करने का अवसर है जिन्होंने भारतीय आकाश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। अमीश

0: शाह भारतीय वायुसेना की यात्रा भी कम गौरवशाली नहीं रही। 1932 में इसकी स्थापना से शुरू हुआ सफर आज एक आधुनिक और सक्षम वायु शक्ति के रूप में हमारे सामने है।
1: हाँ डिम्पी, इस सफर में तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ती है। लड़ाकू विमानों के साथ परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, रडार और आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियाँ वायुसेना की सामरिक शक्ति को मजबूत करती हैं।
0: दोस्तों, वायुसेना की ताकत सिर्फ युद्ध में ही नहीं दिखाई देती, बल्कि जब कोई प्राकृतिक आपदा किसी इलाके को बाकी देश से काट देती है, तब यही आसमान राहत का रास्ता बनता है।
1: साथियों, जहां सड़कें नहीं पहुंच पाती, वहां विमान और हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर पहुंचते हैं। किसी के लिए भोजन तो किसी के लिए दवा और किसी के लिए सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का सहारा बनते हैं।
0: साथियों, जिस देश ने कभी विमान तकनीक के लिए दूसरों की ओर देखा, वही आज अपने लड़ाकू विमान तेजस विकसित कर रहा है। यह बदलाव सिर्फ रक्षा क्षेत्र की उपलब्धि नहीं, आत्मनिर्भर भारत की कहानी भी है
1: डिम्पी। लेकिन इन मशीनों के पीछे इंसान है। महीनों का प्रशिक्षण, कठिन परिस्थितियों में अभ्यास और हर क्षण सही निर्णय लेने की जिम्मेदारी।
0: अमित शाह शायद इसलिए वायुवीर की वर्दी सिर्फ सम्मान नहीं देती, वह जिम्मेदारी भी देती है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें अपनी नींद से पहले देश की सुरक्षा, अपने आराम से पहले कर्तव्य और अपने डर से पहले तिरंगा आता है।
1: तो दोस्तों, आसमान की ओर जब अगली बार कोई लड़ाकू विमान उड़ता दिखाई दे, तो शायद हम सिर्फ उसकी आवाज ना सुने, उसके पीछे छिपा साहस भी महसूस करें। याद करें वायुसेना का कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य साहस से भरपूर ऑपरेशन सफेद सागर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक।
0: साथियों, जो बादलों के पार भी तिरंगे की शान ले जाएं, उन वायुवीरों को हिंदुस्तान दिल से सलाम करता है।

0: साथियों, जब एक बेटी जन्म लेती है तो सिर्फ एक नन्ही सी जिंदगी इस दुनिया में नहीं आती, एक नई कहानी जन्म लेती है, उसके सपनों की, उसकी उड़ान की, उसके अपने आसमान की।
1: साथियों, और उस कहानी को खूबसूरत मोड़ देने के लिए सबसे जरूरी है उसे जीने का अवसर देना, क्योंकि बेटी के सपनों की ऊंचाई तय करने का अधिकार उसकी किस्मत को नहीं, उसकी मेहनत और उसके अवसरों को मिलना चाहिए।
0: अमीशा, मुझे लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस संदेश का सबसे खूबसूरत हिस्सा पढ़ाओ से भी आगे है। बेटी को केवल किताबें देना पर्याप्त नहीं है, उसे यह विश्वास भी देना होगा कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं है।
1: हाँ डिम्पी, समाज को जब तक शादी नहीं हुई है तब तक पढ़ लो वाली सोच से बाहर निकलना होगा। उसकी शिक्षा उसके पूरे जीवन की नींव है, किसी एक पड़ाव तक पहुंचने का साधन नहीं।
0: बिल्कुल, आज बेटियां डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, अधिकारी और उद्यमी बन रही हैं, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब किसी बेटी के सपने को देखकर पहला सवाल यह ना हो कि लोग क्या कहेंगे,
1: बल्कि पहला सवाल हो तुम क्या करना चाहती हो। और अगर उसका जवाब हमारी सोच से अलग हो तो शायद हमें उसे रोकने से पहले उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि बेटी को अवसर देना और उसके हर फैसले से सहमत होना दो अलग बातें हैं, लेकिन उसे अपनी बात रखने का अधिकार तो मिले।
0: साथियों, शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, हमारे अपने घर से हो सकती है। बेटे से जितनी उम्मीदें हैं उतनी ही बेटी से भी हो। बेटे की पढ़ाई जरूरी है तो बेटी की भी, बेटे के सपने महत्वपूर्ण हैं तो बेटी के भी, क्योंकि बेटी को बराबरी देने का मतलब किसी को कम करना नहीं है, बल्कि दोनों को आगे बढ़ने का समान अवसर देना है।
1: तो आज किसी बेटी को उपदेश देने के बजाय
0: उसे एक मौका दीजिए,
1: उसके सपने सुनिए,
0: उसका हाथ थामिए
1: और उसे उड़ने दीजिए, क्योंकि बेटी सिर्फ घर की रौनक नहीं, वह समाज के भविष्य की रोशनी है।
0: आइए बेटी को जन्म का अधिकार दें,
1: शिक्षा का अधिकार दें
0: और सबसे बढ़कर उसके सपनों को जीने का अधिकार दें।
1: बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं और बराबरी का समाज बनाएं। तो दोस्तों, अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अंग्रेजी मीडियम से, जिसमें आवाज दी है विशाल ददलानी और सचिन जिगर ने।

0: थे।
1: डिम्पी, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि आजकल आंखें पहले से ज्यादा थकने लगी हैं?
2: बिल्कुल अमीषा, सुबह उठते ही फोन, फिर काम के लिए लैपटॉप और बीच में सोशल मीडिया, आंखों को आराम मिलने का मौका ही कहाँ मिलता है।
1: सच कहा, लेकिन डिम्पी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये सिर्फ थकान है या हमारी आंखों को सच में इससे आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है।
2: दोस्तों, हर परेशानी को सिर्फ स्क्रीन की वजह मानना सही नहीं है, लेकिन लगातार और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, सूखापन, जलन और धुंधला दिखाई देना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए अमीषा, आंखों की देखभाल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: हाँ दोस्तों, और इसी वजह से आंखों की सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, जो कि 2026 में 8 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। दोस्तों, इसका उद्देश्य लोगों को आंखों की सेहत, दृष्टि संबंधी समस्याओं की रोकथाम और समय पर जांच व उपचार के प्रति जागरूक करना है।

0: हमेशा कई लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि आंखों की बीमारी तो उम्र बढ़ने पर ही होती है।
1: नहीं डिम्पी, यही सोच को तो बदलने की जरूरत है। आंखों की समस्याएं किसी भी उम्र में हो सकती हैं और कुछ बीमारियां शुरुआत में बिना स्पष्ट लक्षण के भी हो सकती हैं। अगर अचानक दृष्टि में बदलाव, तेज आंख में दर्द, बहुत ज्यादा लालिमा या अचानक नजर कम हो तो ऐसी स्थिति में बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बहुत आवश्यक है।
0: हाँ, और किसी को अगर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है तो उसे नियंत्रित रखना भी बेहद जरूरी है।
1: डिम्पी, इन सब के साथ खाने पीने और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना भी तो जरूरी है।
0: हाँ साथियों, संतुलित और पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधि और धूम्रपान से बचना, ये सब पूरे शरीर के स्वास्थ्य के साथ आंखों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
1: तो दोस्तों, इस विश्व दृष्टि दिवस चलिए एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि आंखों की परेशानी को नजरअंदाज नहीं करेंगे और समय समय पर आंखों की नियमित जांच करवाएंगे।
0: साथियों, क्योंकि आंखें हैं तो हर स्क्रीन के पार की दुनिया खूबसूरत है और आंखों का ख्याल रखना हम सब की जरूरत है। इसी के साथ आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से, जिसमें आवाज दी है रोमी और तनिष्क बागची ने।

0: साथियों, अब वक्त है कार्यक्रम के प्रारंभ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने का। आज का हमारा पहला प्रश्न था, हजारों मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, जिसका उत्तर है तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर को।
1: दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जिसका उत्तर है राजस्थान।
0: तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा।
1: हम फिर मिलेंगे आपसे नई ऊर्जा, नई उत्साह और नई जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी रेडियो दोस्त डिम्पी रावते
0: और अमीषा पटेल को। नमस्कार।

अभी आप आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब लेते हैं एक अंतराल।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।
2: बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। शिवाय फिल्म से सुनिए मिथुन, मोहित चौहान और साथियों की आवाज़ संदीप श्रीवास्तव।

अगली आवाज सुनिए वरुण जैन, रोमी और अनुराग साई की अकीदत डिप्लोमेट फिल्म से। इसके गीत के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और संगीत है अनुराग साइकिया का।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार विशेष, प्रादेशिक समाचार एकांश विशेष कार्यक्रम। विषय है नक्सल मुक्त के बाद मंडला की बदलती तस्वीर।
1: नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज की चर्चा एक ऐसे बदलाव पर जो सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि जंगल, वन्यजीव, पर्यटन और गांव की जिंदगी से भी जुड़ा है। मंडला और उसके आसपास के क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों के समाप्त होने के बाद अब सुरक्षा के साथ साथ विकास और पर्यटन की तस्वीर भी बदलती दिखाई दे रही है। विशेष रूप से कान्हा टाइगर रिजर्व में वन अमले की आवाजाही और गश्त बढ़ी है। संवेदनशील क्षेत्रों में दिन के साथ साथ रात में भी निगरानी हो रही है। इसका असर वन्यजीव संरक्षण के साथ पर्यटन और स्थानीय रोजगार पर भी दिखाई दे रहा है। इन्हीं बदलावों को समझने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल सर। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
2: नमस्कार दीपा जी, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अजय सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि नक्सल गतिविधियों का समाप्त होना वहां की सामान्य जिंदगी को किस तरह प्रभावित करता है, खासकर मंडला के संदर्भ में आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं?
2: देखिए, नक्सलवाद खत्म होना मध्य प्रदेश के लिए कम से कम एक बहुत बड़ा वरदान की तरह है। हालांकि मध्य प्रदेश उतना प्रभावित नहीं था जिससे जितने हमारे पड़ोसी राज्य रहे हैं।
1: जी जी।
2: लेकिन जो सीमावर्ती जिले हैं, खास करके मंडला, डिंडोरी और बालाघाट,
1: जी जी,
2: इस पर नक्सलियों का ज्यादा प्रभाव रहा है। और नक्सलियों के कारण वहाँ के स्थानीय लोग, खास करके आदिवासी, उनके लिए अलग तरह की परेशानियां पैदा होती रही हैं। और दूसरी बात यह है कि विकास की धार जो रोशनी है वहां तक पहुंचनी चाहिए थी, वो उनके कारण नहीं पहुंच पा रही थी। हालांकि नक्सली जो अपनी गतिविधियां इस यह कहकर चला रहे थे कि वो आदिवासियों को उनका हक दिलवाएंगे, उनको न्याय दिलवाएंगे, लेकिन हकीकत में वैसा कुछ हो नहीं रहा था।
1: जी जी।
2: बल्कि यह है कि उनका दोनों तरफ से शोषण हो रहा था। नक्सली अलग परेशान कर रहे थे और जो शोषण करने वाले तो थे, और इसमें ये दो पार्टों के बीच में आदिवासी फंसे हुए थे। नक्सलवाद खत्म होने से सबसे बड़ी राहत तो उनको ये मिली है, कम से कम वो विकास की मुख्यधारा में लौटने लगे हैं।
1: जी जी।
2: और जो सरकार की योजना है और बहुत सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अब वहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। और मंडला जिले में तो एक और सबसे महत्वपूर्ण पहला उसका ये है कि वहाँ जंगल बहुत हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से भी मंडला का बहुत ज्यादा महत्व है।
1: जी जी।
2: तो मेरे ख्याल से जो लोग पहले मंडला जाते थे उससे कई गुना ज्यादा लोग अब मंडला की तरफ रुख करने लगे हैं, क्योंकि अब वहाँ शांति है।
1: बिल्कुल सही कहा है सर आपने। सुरक्षा के मजबूत होते माहौल के बीच में अगर बात करें विकास की, शिक्षा की, रोजगार, पर्यटन तथा कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर किस तरह की नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं?
2: देखिए, मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व तो है ही, दुनिया में विख्यात है। इसके अलावा वहाँ नर्मदा नदी बहती है, उसके अलावा और जो वहाँ के जंगल और पहाड़ियाँ जो क्षेत्र है पूरा, वो अपने आप में बड़ा देखने लायक है मंडला जिले का। तो वो तो एक बड़ा कारण है ही।
1: बिल्कुल।
2: नक्सली होने के कारण ये था कि बाहर के लोग वहाँ जाने से डरते थे।
1: बिल्कुल।
2: और आदिवासी को तो परेशान रहते ही थे, क्योंकि वो नक्सली उनका भी अपने ढंग से शोषण करते थे, क्योंकि नक्सलवाद को खाद पानी कहाँ से मिल रहा था, ये भी बड़ा सवाल है। तो वो जो है जगह जगह के अवैध तरीके से वसूली करना और आदिवासियों को बहकाना कि भाई हम उनके भले के लिए काम करें, जबकि वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा था। कितने निर्दोष आदिवासियों की हत्याएं हुई, तो ये इसमें से आदिवासी नक्सलवाद के कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। और इस सरकार ने जो है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से उसका डेडलाइन रखी कि भाई मार्च 2026 में सफाया होना है, तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के लिए तो सबसे बड़ी राहत की बात है कि यहाँ पर सारे इतने बड़े नक्सली हैं वो सरेंडर कर चुके हैं या फिर नक्सलवाद का रास्ता छोड़ के मुख्य धारा में लौट चुके हैं। तो मंडला में अब और टूरिज्म विकसित करने के लिए नए रास्ते खुल गए हैं।
1: कान्हा टाइगर रिजर्व के उप संचालक पीके वर्मा बता रहे हैं,
3: मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व प्रतिदिन कोई ना कोई एक जो है पूरी रात भर रात्रियों गश्ती में रहते हैं, तो पूरे क्षेत्र में, जबकि उस समय पे थोड़ा सा ये चीज़ अवॉइड करना होती थी। जैसे कि मुख्यालय या पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी निर्देश मिलते थे कि आप इस तरीके से टाइम बाय टाइम विभिन्न क्षेत्रों में न जाएं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी पूरा सभी तरफ हमारे क्षेत्र में स्टाफ चाहे डे हो चाहे नाइट हो, सभी जगह जा रहे हैं।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मंडला में भी बहुत सारा जंगल है और कान्हा टाइगर रिजर्व जो है विश्व प्रसिद्ध है, तो सर नक्सल प्रभाव से मुक्त होने के बाद मंडला की सबसे बड़ी और बदली हुई तस्वीर में आपको क्या दिखाई देता है?
2: नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पे जो बाकी विकास की जितनी भी धाराएं हैं अलग अलग हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, और सरकार की जितनी लाभ लाभ पहुंचाने वाली आम लोगों की योजनाएं हैं वो दूसरी बात है कि जब रास्ते बन जाते हैं, सुरक्षा बढ़ जाती है, तो व्यापार व्यवसाय अपने आप खुद बढ़ता है।
1: जी, जी, जी।
2: जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो जंगल में होने वाले उत्पाद हैं, वो उतनी बड़ी पैमाने पे यहाँ नहीं आ पा रहे थे नक्सलियों के कारण। तो मेरे ख्याल से आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा तो फायदा वही वाला है जिसको माइनर प्रोड्यूस कहा जाता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहा जाता है। तो वो जो आदिवासी जंगलों से इकट्ठा कर करके शहरों में ला करके बेचते हैं या जो दूसरी जगह उसको एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें अपने आप बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है, क्योंकि उनके लिए अब ये समस्या नहीं है कि भाई अब अगर वो यहाँ से कोई ले जाएंगे तो कोई उन पर हमला कर देगा या उनको रोक देगा। तो ये सबसे बड़ी जो है उनके लिए एक आश्वस्ति का जो वातावरण बना है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा कारण है। और अगर कान्हा की बात है तो वो तो है ही,
1: बिल्कुल
2: वहाँ, और ज़्यादा सरकार उसको और डेवलप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शेर तो हमारी मध्य प्रदेश के अंदर ही है आज की तारीख में, और कान्हा उनका बड़ा बहुत बड़ा हब है।
1: जी, मंडला में वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े चंद्रेश खरे भी इस बदलाव को नजदीक से देख रहे हैं, सुनते हैं उनकी बात।
4: विगत कुछ 10-12 वर्षों से कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलिज्म का बहुत ज्यादा बढ़ावा हो गया था, मगर इस सरकार के रहते जो नक्सलवाद खत्म किया गया है, इससे हमारा टूरिज्म बढ़ा है।
1: सर, जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि नक्सल समस्या का अंत हो गया है और लगातार वहां पर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ रही हैं, साथ ही छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। पहले नक्सल समस्या के चलते वहां के युवा पलायन करते थे, अब शायद अपने क्षेत्र में ही रोजगार की संभावनाएं तलाशेंगे, आपकी क्या राय है?
2: निश्चित रूप से देखिए, पर्यटन को इस सरकार ने जो है बहुत महत्व दिया है, ये चाहे धार्मिक पर्यटन हो, चाहे जो पारंपरिक पर्यटन हो, चाहे वो जंगलों में लोगों का जो अपने वाइल्ड वाला हो। तो जैसे कि अब जैसे होम स्टे योजना है, तो होम स्टे में तो यही कि आप अपने घर में थोड़ा बहुत उनके जो मानदंड है सरकार के जो पर्यटन के लिए जरूरी है उतना आप सुधार कर लीजिए और आप अपने घर में कुछ शुरू करिए। और खास करके जब बड़े पैमाने पर पर्यटक आते हैं तो बहुत से लोग होटल में रुकने के बजाय अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है ये, तो होमस्टे में रुकना पसंद करते हैं, तो स्थानीय लोगों को वहीं के वहीं रोजगार मिल जाता
1: जी,
2: है
1: जी, जी।
2: गाइड के रूप में काम मिलता है, गाड़ी लॉजिस्टिक्स का काम मिलता है, गाड़ियाँ चलती हैं, लोग इधर से जाते हैं होटलों के अंदर रुकने, तो वैसे बहुत सारे अलग अलग हैं जो जिसमें सरकार सीधे तौर पर इन्वॉल्व भले ही ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ें अपने आप बढ़ती हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार जब आपने शुरुआत कर दी है तो जो जिन युवाओं को काम के लिए बाहर जाना पड़ता था किसी न किसी तरह या छोटे मोटे काम जाकर बाहर करते थे, वहीं अगर लोकल में ही काम उनको मिलने लगेगा तो वो बाहर क्यों जाएंगे? तो जाहिर है कि ये पर्यटन से ये सबसे बड़ा फायदा तो ये हो रहा है, और हम देख भी रहे हैं जहाँ भी धार्मिक पर्यटन तो इतनी तेज़ी से बढ़ा है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसकी हमें कल्पना नहीं थी। उज्जैन में महाकाल लोक बना तो उसके बाद जहाँ कभी साल भर में लाखों लोग आते थे, अब करोड़ों लोग आ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: रोजगार तो अपने आप ही क्रिएट हो रहा है, लोगों की मंथली आय बढ़ गई है। तो वैसे ही मंडला के अंदर भी हम जल्द दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। सर, मंडला के आदिवासी समाज में बात की जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, साथ ही संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं के स्तर पर अब क्या बदलाव देखते हैं?
2: देखिए, मंडला और इसमें जो मोटे तौर पर जो आदिवासी समुदाय गौंड समुदाय रहता है, और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये सब चीज़ें योजनाएं कह लीजिए और दूसरी तरह से जो फायदे लोगों तक पहुंच रहे हैं या उनको इसकी जानकारी मिल रही है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि एक क्रिकेट टीम, एक गौंड बच्ची जो है वो जिस समुदाय की है, आज भारतीय क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी सदस्य, क्रांति गौंड का उदाहरण दूंगा मैं आपको। हालांकि वो मंडला से नहीं आती है, लेकिन वो छतरपुर से आती है, लेकिन आज वो बच्ची जो है वो आज देश का गौरव बनी हुई है। तो सवाल ये कि अगर आप उनको सुविधाएं देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे, सरकार उनको प्रमोट करेगी, तो वो कुछ तो बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं वो
1: जी।
2: ये तो एक उदाहरण हुआ। और अलग अलग खेलों, अब बच्चे आदिवासी बच्चे खेलों में भी आगे आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, न सिर्फ बल्कि ये उद्योग धंधे की तो बात है ही, खैर
1: जी जी,
2: लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको सुविधाएं मिल रही हैं या उनको आगे बढ़ावा मिल रहा है, प्रमोट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो वो तो दिखा रहे हैं कि वो आसमान छू सकते हैं।
1: और अब बात उस व्यक्ति की जो जंगल और वन्य जीवों को करीब से देखता है और मंडला में इस बदलाव को महसूस भी कर रहा है, सुनते हैं वन्य जीव प्रेमी शिवम मेहता की बात।
5: टूरिज्म की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पहले जो लोग आते थे तो एक मैसेज तो सबके बीच में था कि नक्सलवाद फैला हुआ है, नक्सलवाद का कुछ असर कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों से भी ये नक्सलियों का आना जाना लगा रहता, तो एक दहशत का माहौल बना रहता था। पर अब जब से ये नक्सल समाप्त किया गया है, तब से पर्यटकों को आने में एक निश्चिंतता है।
1: मंडला की पहचान सर देखा जाए तो आदिवासी संस्कृति और उसके ग्रामीण जीवन से ही है, तो किसी भी क्षेत्र के विकास का असली पैमाना वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलाव लाते हैं?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका जीवन स्तर सुधरेगा। ज्यादातर आदिवासी अभी भी घने जंगलों में रहते हैं क्योंकि परंपरागत रूप से रहते आए हैं, तो शहर की जो हवा है या जो जिसको हम सभी समाज का कह सकते हैं वो तक उन तक कई लोगों तक नहीं पहुंचा, और शायद इसका कारण ये भी है कि उनको लगता है कि वो उनके लिए अजनबी जैसा भी है। तो अगर हम उन तक पहुंचेंगे तो जाहिर है कि वो धीरे धीरे उस मुख्यधारा में शामिल होते चले जाएंगे, और ये शुरुआत हो चुकी है
1: जी।
2: बड़े पैमाने पर तो सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी आ रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जैसे अपने वो जो उनका पारंपरिक जीवन है जंगलों पर ही पूरी तरह से निर्भर था
1: जी जी जी,
2: उसको हट करके अब वो समाज की मुख्य धारा में शामिल होते जा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बात है, और ये धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। अब आप इसके छोड़ पेंटिंग के अंदर गौंड पेंटिंग जो कहलाती है, अगर मैं उदाहरण दूं तो उनकी उस पेंटिंग जैसे अभी वो उनकी जो गौंड कलाकार हैं जनगढ़ सिंह, उनकी पेंटिंग आपको पढ़ा होगा कि 18 करोड़ में बिकी
1: जी जी जी।
2: तो यहाँ पर जो है वो गौंड जो समुदाय के लोग उसी इलाके से आते हैं, यहाँ भारत भवन के अंदर वो लोग पेंटिंग बनाते हैं, काम कर रहे हैं, वो पेंटिंग बिकती है, उनकी अपनी कला पुनर्जीवित हुई है
1: ट्राइबल म्यूजियम में भी उनकी।
2: हाँ है, तो ये मेरा कहना मतलब ये है कि ये अलग अलग क्षेत्र हैं जो जिससे विकास की धारा अलग अलग बहती है, और इससे उनका जीवन स्तर भी सुधर रहा है और वो समाज की मुख्य धारा में आ रहे हैं, और बल्कि आ नहीं रहे बल्कि कई जगह नेतृत्व भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: ये बड़ी बात
1: है। सर, नक्सल प्रभावित या संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा असर बोलते हैं कि बच्चों और युवाओं पर ही पड़ता है, तो क्या मंडला के सामने अब नए विकल्प किस तरह से रहेंगे? जैसे कि आपने पर्यटन और रोजगार की तो हमने बात की ही, और इसको कैसे विस्तार दिया?
2: इसके पहले मैं ये ये कहूंगा कि दरअसल नक्सलियों का काम करने का तरीका क्या था।
1: जी जी,
2: वो अपनी सुरक्षा के लिए सरकार की पहुंच वहां तक बनने नहीं देते थे
1: जी।
2: सरकार की पहुंच बनने देने का मतलब यह है कि न वहाँ स्कूल खुलने देते थे, न कोई अस्पताल खुलने देते थे, और भी दूसरे संसाधन है वो वहाँ पहुँच नहीं देते, सड़क नहीं बनने देते थे, बांध नहीं बनने देते थे, और ये कहकर के कि भाई आप जंगलों में हस्तक्षेप कर रहे हो, और इसकी आड़ में जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इन सब चीज़ों को रोक के रखा था
1: जी जी,
2: जबकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप जहाँ जहाँ पे मध्य प्रदेश में तो फिर भी तुलनात्मक रूप से कम रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि जिन जो घने इलाके में जहाँ पे पहली बार उनके अड्डों को अस्पताल में कन्वर्ट किया जा रहा है जो नक्सलियों के रहे हैं, तो सोचिए आप कि इतने इतने इंटीरियर में जहाँ पर कि लोग शहर में आते भी नहीं होंगे, यहाँ के लोग बहुत कम जाते हैं, वहाँ पे अगर ये सुविधा धीरे धीरे पहुँचने लगी है तो जाहिर है कि वो जो उनके सामने जो दिक्कतें थी, उनको इलाज समय पर नहीं मिल पाता था, जो राशन समय पर नहीं मिल पाता था या पर्याप्त राशन नहीं मिलता था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ तक अब पहुँचना शुरू हो गई हैं, और ये इसी कारण से हुआ कि नक्सलियों का दबाव खत्म हो गया है
1: जी। सर, जो स्थानीय आदिवासी संस्कृति और परंपरा है उसको कहते हैं कि बचाते हुए विकास का मॉडल तैयार करना मंडला के लिए बड़ी चुनौती होगी और साथ ही अवसर भी।
2: देखिए, ये सरकार का प्रयास तो हमेशा ये रहा है कि जो वहाँ की स्थानीय संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए।

0: हमने गोंड पेंटिंग की बात की तो
1: जी, जी.
0: ये तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि हमने उसको वैश्विक स्तर पर प्रमोट किया है. तो इसलिए नहीं उसको खत्म करने के में उसको हम प्रमोट कर रहे हैं बल्कि, और तो खत्म करने का तो सवाल ही नहीं है.
1: बिल्कुल.
0: तो और भी बहुत से उनके रीति रिवाज हैं उसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी. इवन अगर यूसीसी भी सरकार ला रही तो आदिवासी क्षेत्रों को इसीलिए अलग रखा गया. कुछ क्षेत्रों में जो है वो संविधान का वो जो वो भी लागू है प्रावधान जहाँ पे आदिवासियों के हक सुरक्षित रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी लागू है. तो आदिवासियों की पहचान को उनकी संस्कृति और उनके रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने को लेकर के तो कोई दो राय है ही नहीं.
1: जी जी जी.
0: सरकार भी अपने तरीके से पूरी उसको बचा के रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए वो बाकी मुख्यधारा से कैसे जुड़े, बाकी समाज से कैसे जुड़े, ये असली चुनौती है. तो उस अपनी पहचानों रखें लेकिन मुख्यधारा में भी आए और इस तरह से उनका विकास हो हर दृष्टि से.
1: जी जी जी.
0: चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, संस्कृति की दृष्टि से हो, सभ्यता की दृष्टि से हो. तो ये सरकार का उद्देश्य है और मेरे ख्याल से इस दिशा में तेजी से काम होने लगा है.
1: विकास की रोशनी जरूर मंडला के गांव-गांव तक पहुंचेगी और मंडला भी विकास के मुख्य धारा से कदम ताल करेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए.
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद.
1: और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश विशेष कार्यक्रम. विषय था नक्सल मुक्त मंडला के बाद बदलती तस्वीर. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश. अब लेते हैं एक अंतराल.
3: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन. कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज. प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज.
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी.

0: Tata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड। जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं और अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का ये विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर विषय पर मुंबई में आयोजित इंटरैक्टिव सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर कहा कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है और आयुष सेवा क्षेत्र महिलाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों और आरोग्य केंद्रों सहित विभिन्न संगठित क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेक लाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
3: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं
2: उमंग कार्यक्रम के सितम्बर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
3: आप आगे लिखते हैं आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
2: जी,
3: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
2: जी।
3: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है।
3: जी।
2: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
3: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। तो लिखते हैं प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी। वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है
3: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
3: जी, तो श्रोताओं इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
2: जी।
3: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओं परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
3: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
2: जी, तो अजीत जी अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी, उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय क्रेडिट, विक्रम रामजी खानुलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
3: जी हाँ श्रोताओ, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
2: जी,
3: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
2: जी,
3: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
2: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
2: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी, क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
3: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो। यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
2: और इसे प्रदान कौन करता है?
3: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
2: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन। जय हिंद।
3: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
4: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
5: मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो खाओगे वही खिलाऊंगा।
4: भालू ने कहा,
6: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
4: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
6: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
4: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया, जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं। भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
6: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
4: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

0: नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ, चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तू विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर

0: आश्रमवासी बना दिया।
1: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी। वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चल चल।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें?

0: समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
1: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।
2: अरे चल ना, जल्दी कर ना,
3: जल्दी जल्दी पैर बढ़ा,
2: लकड़ियां काट के लानी है। अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
4: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियां काटने।
2: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियां मत काटना।
5: है? वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
2: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
4: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
5: हाँ।
4: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
5: और क्या
4: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
5: हाँ?
2: देखो इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से?
4: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी, तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तक में उसके प्राण है। बेटा तू कौन है, कहां से आई है?
2: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
4: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
2: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
4: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
5: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
2: चलो चलो
5: चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते
6: हैं। और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे।

0: रारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।
1: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
2: अर्षद,
3: चेतना,
2: कुसुमलता,
3: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
3: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश प्रसारण में अब आनंद लीजिए। फिल्म संगीत का सुनिए बचना है हसीनों से। ये गीत लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाज है, अन्विता दत्त गुप्ता के बोल और संगीत है विशाल एंड शेखर का।

अगली आवाज़ सुनिए श्रेया घोषाल, गणेश चंदांश और साथियों की बाजीराव मस्तानी फिल्म से ये गीत, लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने और संजय लीला भंसाली का संगीत है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। अब सुनिए अरिजीत सिंह को कलंक फिल्म से। ये गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

अब सुनिए पैप ऑन सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत बर्फी फिल्म से नीलेश मिश्रा के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब लेते हैं एक अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
3: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड,
4: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
3: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
2: परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत की विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
5: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष $863 अरब का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जलशक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं की नेतृत्व वाली सामूहिक भागीदारी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर में 7:25 पर बुंदेली समाचार और उसके ठीक बाद 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी प्रस्तुत होगा। शाम 8:00 विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा प्रस्तुत होगा। शाम 8:35 और रात 9:30 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। रात 10:00 आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित कुमार गंधर्व की आवाज में ख्याल गायन का आनंद लीजिएगा। राग होगा हमीर। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण जो आप सुनेंगे कल शुक्रवार यानी 9 अक्टूबर की सभा में। कल सुबह 6:05 पर वंदना और 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 6:40 पर चिंतन और सुबह 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल और 8:30 पर विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:05 और 9:30 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। कल सुबह 9:15 पर गांधी चर्चा प्रस्तुत होगी। सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। और कल सुबह 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला में उस्ताद महमूद मिर्जा पेश करेंगे सितार वादन। राग होगा तोड़ी। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में। अब कुछ मुख्य कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल सुबह 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में। कल सुबह 11:00 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने प्रस्तुत होगा। कल दोपहर 12:00 और 2:30 साथ ही रात 10:00 आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की 8वीं कड़ी प्रस्तुत होगी। कल दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम, दोपहर 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवावाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति में। शाम 5:33, 6:30, 8:35 और रात 9:45 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। कल शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। कल के इस कार्यक्रम का आकर्षण होगा आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। शाम 8:00 विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा प्रस्तुत होगा। कल रात 9:30 पर खेल जगत कार्यक्रम प्रस्तुत होगा और कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा विदुषी शुभा मुदगल की आवाज में ख्याल गायन का। राग होगा बेहाग। इसी के साथ कार्यक्रम

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास सम्मेलन के समापन सत्र में होंगे शामिल। एआई के विनियमन पर अगले महीने आएगा परामर्श पत्र। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीप फेक जैसे खतरों से बचाव पर रहेगा जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में उद्योगपतियों से की मुलाकात। प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर हुई चर्चा। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में जोश टीम की शुरुआत की। टीबी उन्मूलन में जुटेंगे माय भारत स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट्स। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर आयोजित दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े मंत्री और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर सहकारी संघवाद को मजबूत करना और योजनाओं के बेहतर परिणाम हासिल करना है। सम्मेलन में पोषण, शिक्षा, बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे चार प्रमुख विषयों पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई और साइबर सुरक्षा के साथ इसके फायदे और संभावित नुकसान पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार का जोर एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और डीप फेक जैसे हानिकारक इस्तेमाल से लोगों को बचाने पर रहेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने युवाओं से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी प्रतिभा, कौशल और रचनात्मकता का उपयोग करने का आह्वान किया। नोएडा में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता युवाओं को नए अवसरों के लिए तैयार करने में अहम है। डॉ. मुरुगन ने बताया कि वर्ष 2014-15 से 2023-24 के बीच भारत में करीब 17,01,00,000 रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा देने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मुंबई में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, नर्मदापुरम के रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट जोन, धार के पीएम मित्र पार्क और उज्जैन के मेडिकल डिवाइसेस पार्क की जानकारी दी। इन बैठकों में अलग अलग कंपनियों ने विद्युत पारेषण, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई। भिलोसा इंडस्ट्रीज ने धार के पीएम मित्र पार्क में 2,500 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश और 3,750 से ज्यादा रोजगार का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों को जनवरी 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया।
1: 25 पॉलिसियां लागू करने वाला एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने अपने सारे व्यापार व्यवसाय को सरलीकृत आधार पर ये पॉलिसियां भी लगाई। 1,00,000 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक आज भी मध्य प्रदेश के पास है। फार्मा सेक्टर भी है, माइनिंग से लगाकर एनर्जी, फॉरेस्ट से लगाकर हैवी इंडस्ट्री भी है, एमएसएमई भी है, लघु कुटीर उद्योग भी है। और हमारे राज्य के अंदर व्यापार व्यवसाय के लिए 1 करोड़ लगाने वाले का भी वही सम्मान है जो 1,00,000 करोड़ लगाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि पार्टी को हार का ठीकरा आयोग पर फोड़ने के बजाय अपने प्रदर्शन और संगठन पर आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी चुनाव प्रक्रिया के तहत कांग्रेस को केरल और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला, इसलिए हार और जीत में अलग अलग रवैया नहीं होना चाहिए। डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस को अपने कमजोर होते जनाधार, नेतृत्व और संगठन की स्थिति पर विचार करना चाहिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज भोपाल में ज्वाइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ टीम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि माय भारत के स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट्स टीबी उन्मूलन अभियान में घर घर स्क्रीनिंग और जागरूकता के प्रसार में मदद करेंगे। प्रदेश में अब तक सघन स्क्रीनिंग से 1,12,000 टीबी मरीजों की पहचान कर उनका इलाज शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों, निक्षय मित्रों और बेहतर कार्य करने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट के दूसरे दिन पर्यटन के नए क्षेत्रों और रोजगार बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस सत्र में एडवेंचर टूरिज्म, MICE आधारित इवेंट इकोनॉमी और वन्य जीव पर्यटन को स्थानीय गांवों, युवाओं, होमस्टे, गाइड व हस्तशिल्प से जोड़ने की रणनीति पर मंथन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि पर्यटन की सफलता सिर्फ पर्यटकों की संख्या से नहीं बल्कि स्थानीय लोगों और प्रकृति को होने वाले फायदों से तय होनी चाहिए। सेवा संकल्प अभियान के तहत बालाघाट स्थित कमला नेहरू महिला मंडल में विकसित भारत संकल्प सभा तथा सिवनी मालवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दिव्यांगजनों और वरिष्ठ जनों की सहायता के लिए खंडवा में सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम तथा गुना के जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में सहायक उपकरण वितरित किए गए। वहीं आगामी 12 अक्टूबर को नीमच के होटल सनराइज ग्रैंड में यूथ एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। भोपाल में पीएनजी सप्लाई शुरू होने के बाद ही संबंधित उपभोक्ताओं की एलपीजी सप्लाई बंद करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो। जिले की 4 सोसाइटियों में पीएनजी सुविधा शुरू होने के बाद उन्हें एलपीजी फ्री घोषित किया गया है। वहीं पीएनजी वाले क्षेत्रों में एलपीजी बंद करने से पहले उपभोक्ताओं को 90 दिन के नोटिस देने का प्रावधान है। भोपाल में SIR के दौरान सूची से बाहर हुए मतदाताओं के नामों की जांच के लिए BLO मैदान में काम कर रहे हैं। आज और कल शहर की 7 विधानसभा सीटों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जहां पर लोग अपने नाम की दोबारा जांच करा सकते हैं। जांच में पात्र पाए जाने पर स्थायी रूप से बाहर हुए या फिर पते पर नहीं मिले मतदाताओं के नाम फिर से मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। वहीं 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं के नाम जोड़ने के लिए एडवांस में फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिला न्यायालय परिसर में मीडिएशन नेशन 3.0 के तहत विशेष मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने मुरैना के पिछड़ा वर्ग छात्रावासों का निरीक्षण किया। झाबुआ के आजीविका भवन में 2 दिवसीय आकांक्षा आजीविका हाट का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में हाउसिंग बोर्ड के मकानों में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों को बोर्ड ने नोटिस जारी किए हैं। जबलपुर के PMC विद्यालयों में कृषि विभाग द्वारा स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम संचालित किया जाएगा। नीमच के महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्कूल में मुख्यमंत्री निःशुल्क स्कूटी योजना के तहत 39 मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। आगरमालवा के शासकीय नेहरू कॉलेज में पुलिस सेवा की तैयारी कर रही 100 बालिकाओं को शैक्षणिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। खंडवा जिले के 29 निजी अस्पतालों में दुर्घटना पीड़ितों को PM राहत योजना के तहत अब त्वरित कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। गुना जिले के ग्राम शाहपुर में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा शिक्षा में AI के प्रयोग विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धार के महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य एवं जांच शिविर लगाया गया। सीहोर जिला जेल में बंदियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और मंदसौर में 70वीं राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन ग्वालियर, सागर, उज्जैन और भोपाल की टीमों ने अपने अपने मुकाबले जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास सम्मेलन के समापन सत्र में होंगे शामिल। AI के विनियमन पर अगले महीने आएगा परामर्श पत्र। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीप फेक जैसे खतरों से बचाव पर रहेगा जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में उद्योगपतियों से की मुलाकात। प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाओं पर हुई चर्चा। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में जोश टीम की शुरुआत की। TB उन्मूलन में जुटेंगे माय भारत स्वयंसेवक और NCC कैडेट्स। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये
1: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। हम आपको सुनवा रहे हैं सबसे पहले रंजना तिवारी का गाया ये भजन।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आइए सुनते हैं करण सिंह जाटव से ये चेतावनी।

नौने हैं। भैया हम आपकी सबकी मंगल कामना सोई करत हैं कि आप सब आई जने खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भैया हरो देखो अब पितरापन के जे हैं बिल्कुल अब जाबे वारे हैं और माता रानी की आवक की तैयारी जो है वो जोर शोर से चलन लगी है। गांव गांव में पंडाल सजाए जा रहे हैं, घर द्वारों की सफाई सजावट चल रही है। तो उतई दूसरी तरफ हमारे पुरखों के लाने दोई टाइम के न्योता पानी भी बिल्कुल चल रहे हैं। तो भैया हरों देखो कि ऐसे समय पे अपने स्वास्थ्य को ध्यान धरवो बहुत ही जरूरी है। और भैया आज के सानवाड़ी कार्यक्रम में अपन खूब सारी बतखाव सोई कर हैं और अपन और लोकगीत भी सुन है। तो भैया हरो एक बहुत ही जरूरी आप और उनके संगे साझा करने हाथी जानकारी की। भैया हरो आज है विश्व दृष्टि दिवस, 8 अक्टूबर को हर साल मनाओ जात है। और भगवान ने अपन सबके सबसे अनमोल चीज दई है, वह है हमारी आंखें। विश्व दृष्टि दिवस मनावे को जइया मकसद है कि अपनी आंखों को दृष्टि के लाने हमें जागरूक रहने हैं, समय समय पे आंखों की जांच कराने हैं, स्वस्थ रहने हैं। और भैया हरों अपन खे अपनी आंखों को पूरा देखभाल सोई करन है। अपन जो चीज देखा थे कि अपने आसपास की दुनिया अगर देखने हैं, पढ़ने हैं, सीखने हैं, तो हमें तो अपनी आंखों पे तो हमें निर्भर रहने पड़ा था। तो भैया हरों अगर आप और उनके कोई भी समस्या होए ऐसी कि आंखों से संबंधित, तो तुरंत में हमें क्या करने चाहिए, जाँच कराने चाहिए। और अपने मन से कोई भी दवाई नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल चिकित्सक की सलाह से ही पूरी काम करने चाहिए। और आजकल तो अपन देख ही रहे हैं मोबाइल फोन कंप्यूटर जो दूसरे डिजिटल उपकरण है भी हमारी जिंदगी को हिस्सा बन गए हैं। लंबे समय तक अपन स्क्रीन में देखते रहते हैं, जैसे कहा होते हैं आंखों में थकान हो जाते हैं, जलन, सूखोपन और धुंधला दिखाई देवे वाली समस्या हो जाते हैं। तो भैया हरो स्क्रीन देखा समय बीच बीच में अखियों को आराम जरूर दें, पर्याप्त रोशनी में पढ़ें और मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन से हमके थोड़ी दूरी सुई बनाने चाहिए।

जरूरी ये है कि भैया हरों अपन आंखों को अच्छे से ध्यान रख लें, पौष्टिक आहार जरूर लें, हरी सब्जी, मौसमी फल और पोषक भोजन अपन के लाने बहुत जरूरी होता है। भैया हरों आज हम एक ऐसी पहल और आधुनिक तकनीक की भी और बात करबो जा रहे हैं जे के किसानन को

0: और उनमें मौसमी बीज, खाद, कीटनाशक और मंडी भाव, सरकारी योजना और नई कृषि तकनीक से जुड़ी जो सारी जानकारी होत है, उसकी जानकारी की भी जरूरत पड़ा है। अब सोचो भैया, अगर सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो किसान कई अपने नुकसान से बच सकत है। ऐसे समय पर डिजिटल तकनीक किसानन की बहुत ही काम आत है ना, और साथी बन जात है। ई किसान मित्र में जइया सोच को माध्यम है कि मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए किसान खेती से जुड़ी हर जानकारी बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकत है। मौसम की जानकारी मिल जाए तो बुआई, सिंचाई और फसल कटाई की योजना सही ढंग से बना सकत है। बाजार में अगर फसल के भाव अपन के सही जानकारी मिल जाए तो किसान अपनी उपज सही समय पर सही जगह बेच के उचित दाम पा सकत है। तो जितनी जरूरी खेती बाड़ी की जानकारी है, उतना ही जरूरी मोबाइल और इंटरनेट को सुरक्षित और सही उपयोग जानना भी जरूरी है। तो एक लाने मदद कौन करत है? किसान ई मित्र। तो कोई भी ऑनलाइन योजना या जानकारी पे भरोसा करवे से पहले ओके आधिकारिक स्रोत से पुष्टि जरूर कर लेने चाहिए। अपनी निजी जानकारी, बैंक खाता, पासवर्ड और ओटीपी कोई भी अनजान व्यक्ति के अपन के नहीं देने हैं। और भैया हरो, ई किसान मित्र केवल एक डिजिटल माध्यम नहीं, बल्कि किसान और कृषि विशेषज्ञ के बीच जानकारी को पुल बन सकत है। गांव के पढ़े लिखे युवा भी इनमें बड़ी मदद कर सकत हैं। वे अपने परिवार और आसपास के किसानन को मोबाइल पर कृषि संबंधी सेवाओं को इस्तेमाल कर वो सिखा सकत हैं। तो कह सकत हैं कुल मिलाके की बात यह है कि हम सभी मिलके खेती किसानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ें और अपने किसानन को डिजिटल रूप में मजबूत बनाएं। सही जानकारी, सही समय पर लिया गया निर्णय, सही फैसलों और आधुनिक तकनीक किसान की सफलता की मजबूत कुंजी बन सकत है। किसान भैया हरो, अपन सभी मिलके सुन रहे हैं अपनो पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। और भैया हरो, और कपास जो है बहुत ही अच्छी हमारे देश की नगदी फसल है और कई किसानों की आमदनी को महत्वपूर्ण जरिया भी है। तो जरिया विषय पे आज हम विस्तार से जानकारी ले हैं, जब बारे में बात कर रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश परसाई। तो चलो मिलते हैं भैया हरो और इनकी सुनत हैं बातचीत, आधुनिक तकनीक अपनाकर कपास की खेती कैसे अपन बढ़ा सकते हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, कपास एक खरीफ की नकदी फसल है जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, बीज बुवाई के लिए सही समय क्या होता है और कीट नियंत्रण के बारे में उचित जानकारी लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सतीश परसाई जी को। आप सेवानिवृत्त वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक है। नमस्कार सतीश सर आपको।
2: नमस्कार किसान भाइयों, राम राम।
1: सर आज हम बात करेंगे आधुनिक तकनीक से कपास उत्पादन विषय पर।
2: जी हाँ, तो किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, हम प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को अपना विश्व कपास दिवस भी मनाते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश में कपास की क्या स्थिति है संदर्भ। जहाँ तक मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन का प्रश्न है, हम 9 जिले में कपास का उत्पादन लेते हैं और सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष 6.5 लाख से 7 लाख हेक्टेयर के बीच में कपास का क्षेत्र जो रहता है मध्य प्रदेश में। जहाँ तक 9 जिलों का प्रश्न है, सबसे बड़ा हिस्सा हमारा 3/4 या 75% भाग केवल निमाड़ में होता है। निमाड़ में यदि हम बात करें तो खरगोन सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, जहाँ 2.25 लाख हेक्टेयर में कपास लगाते हैं। बड़वानी दूसरा है, 90,000 हेक्टेयर में वहाँ कपास लगता है। खंडवा तीसरा है, जहाँ 50,000 हेक्टेयर में कपास लगता है। बुरहानपुर निमाड़ अंचल का चौथा जिला है, जहाँ 40,000 हेक्टेयर कपास लगा रहे हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा क्षेत्र जो है हमारा, वो मालवा अंचल का है। मालवा में धार सबसे बड़ा जिला है, जहाँ 1.25 लाख हेक्टेयर के आसपास कपास लगता है। रतलाम है 35,000 के आसपास। तीसगा झाबुआ में है, उसी प्रकार से 30,000 के आसपास अलीराजपुर में। और एक जिला इन सब से हट कर के है, वो है पांडुर्ना, जो अलग है इनसे, काफ़ी दूर है और महाराष्ट्र का जो नागपुर का क्षेत्र है, बरार वाला क्षेत्र है, उससे लगा हुआ। वहाँ करीब 50,000 हेक्टेयर में कपास किसान लगाते हैं।
1: जी सर, बीटी कपास की लोकप्रियता के क्या क्या कारण
2: हाँ,
1: ऐसे हैं?
2: लोकप्रियता के लिए 3 महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है, बीटी नहीं था तब 3 प्रकार की इल्लियाँ आती थी,
1: जी।
2: अमेरिकन फिर चितकबरी डेंडू छेदक और गुलाबी डेंडू।

0: चेतक। ये समस्याएं पूरी तरह से बीटी आने के बाद दूर हो गई। जब हम परंपरागत कपास लगाते थे तो 15 से 18 बार कीटनाशक फसल अवधि में लगता था, अब केवल 3-4 बार हम कीटनाशक दवा डाल करके और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। इससे पर्यावरण का हित हुआ है, कीड़ों में कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक की संभावना समाप्त हुई है, मित्र कीड़ों का संरक्षण संवर्धन हुआ है, पर्यावरण हितैषी साबित हुआ है हमारा बीटी कपास। दूसरी फायदा इसका हुआ है कि उत्पादन देवड़ा है। तीसरा बड़ा फायदा किसान भाइयों को ये हुआ है कि बीटी के आने के बाद रबी फसल लगाने की संभावना बनी है, गेहूं चना हमारे किसान लेने लगे हैं। उसका कारण यह है कि दो बार चुनाई कर ली, इतना हमको उत्पाद मिल जाता है, लागत पूरी वसूल हो जाती है और हमको लाभ भी मिल जाता है। अक्टूबर के अंत में वो सारा कपास उनका चुनाई हो जाती है उसकी 2 या 3, और ख़त्म करके नवंबर में सही समय पर रबी मौसम की फसल भी अपनी लगा लेते हैं, साध लेते हैं उसको।
1: कपास का अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन सी और नवीन तकनीकों का उपयोग किया?
0: हम नवीनतम तकनीकों में एक तो HDPS बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसको हम उच्च सघनता वाली तकनीक कहते हैं। सामान्य रूप से हम कपास जो लगाते हैं वो 3 से 4 फीट कतार से कतार की दूरी रहती है और पौधे से पौधे की दूरी भी 3 फीट के आसपास लेते हैं। अब ऐसी संभावना बन गई है कि कतार से कतार की दूरी 1 फीट ले रहे हैं और आधा फीट पौधे से पौधे की दूरी, और इसके लिए हम विज्ञान को ऐसी जातियां विकसित करना पड़ी हैं जो फैलती कम है, खड़ी खड़ी बढ़ती हैं। आज प्रति इकाई HDPS की मदद से 4-4, 5-5 गुना पौध संख्या हम खेत में बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से एक ELS लंबे रेशे वाली एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जिसको कहते हैं, और लंबे रेशे वाला जो कपास होता है उसकी बाजार मूल्य है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, उसकी मांग बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार से हम नीली और पीली पट्टियों का उपयोग बता रहे हैं किसानों को नई तकनीक के रूप में, जिससे रस चूसने वाले कीड़े सारे के सारे जो हैं उसमें चिपक जाएंगे, छोटे हरा मच्छर है, सफ़ेद मक्खी है, माहू है, तेला है, फुदका है, ये सब चिपक जाएंगे और हमको दवा के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहेगी या न्यूनतम हो जाएगी, तो ये फायदा ले रहे हैं। टी आकार की खूंटी लगा रहे हैं, मान लीजिए हमारी फसल 3 फीट की ऊंचाई की है तो हम उस समय किसान से अपेक्षा करते हैं कि वो 4 फीट ऊंचाई पर जाकर के कम से कम 1 एकड़ में 20 टी आकार की खूंटी लगाए। इसका फायदा क्या मिलता है उसको कि खूंटी पर पक्षी बैठते हैं और यदि कहीं आपके पौधों पर कोई इल्लियां हैं, उनका प्रकोप चल रहा है, तो वो झट से इल्लियों को खा जाते हैं, तो आपका प्राकृतिक नियंत्रण हो जाता है। इसी प्रकार से हम प्रकाश प्रपंच की बात कर रहे हैं कि किसान भाई इसको लगाएं तो जो रात्रि में संवेदनशील या प्रकाश संवेदनशील कीड़े हैं वो इसमें आकर्षित होंगे। और मैं तो किसानों को ये भी आए दिन कहता हूँ कि पूरी रात प्रकाश का साधन जला करके रखने की, केवल सूर्यास्त जब होता है तब जला दें और 9 बजे या 10 बजे जब उनका सोने का समय है उस समय उसको बंद कर दें। तो कीड़ों के आने का समय भी केवल 3 या 4 घंटे का है, यानी सूर्यास्त से लेकर 9 या 10 बजे की अवधि में वो इधर उधर विचरण करते हैं, उसके बाद तो वो एक स्थान पर स्थिर होकर के बैठ जाते हैं। एक स्प्लैट ट्यूब हमने विकसित की है कपास के लिए, विशेषकर गुलाबी इल्ली के लिए, एक मटर के दाने के बराबर हम जेल हमने बनाया है, पेस्ट बनाया है, ये एक मटर के दाने के बराबर 3 मीटर के अंतर पर, और वो भी एक कतार में पहले लेंगे फिर बगल की कतार में लेंगे आड़ा तिरछा क्रम में, सर्पिल गति जिसको कहते हैं, उसमें चलते हुए पूरे खेत में ये हम लगाते हैं। 125 ग्राम का एक ट्यूब ये आता है, तो ये 1 एकड़ के लिए उपयोगी होता है, और सामान्य रूप से एक बार इसको लगा दिया तो 30 से 45 दिन की अवधि के लिए आपको गुलाबी इल्ली के लिए कोई दवा के उपयोग की आवश्यकता नहीं। इसमें क्या है, ये भ्रम पैदा करती है नर पंखियों में, भ्रमित होकर के वो जो गंध हमने मटर के दाने के बराबर लगाई उसके आसपास ही वो नरपंखी घूमती रहती है, मादा के पास पहुंच नहीं पाती है, यानी हम उनका परिवार जो है वो नियोजित कर ले।
1: सर, क्या जैविक कपास की भी बेहतर संभावना है?
0: बहुत बेहतर संभावना है, और हमारे लिए तो बहुत गर्व का विषय है कि जैविक कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। 10 या 11 राज्य में

0: हम कपास लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी जैविक कपास नहीं लग रहा है। मध्य प्रदेश में ही सारा जैविक कपास, देश का नहीं विश्व में हम आगे हैं। उसमें भी खरगोन जिला सबसे आगे है, और साधारण तौर पर आपका देवड़ा और दुगना भाव मिलता है। यदि आपका सामान कपास 8,000 रुपये के भाव जा रहा है, तो ये 15-16,000 रुपये के हिसाब से जाता है, तो ये फायदा किसानों को है। तो निश्चित रूप से जैविक कपास का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।
1: सर, प्राकृतिक रंगीन जो जैविक कपास है, उसमें हमारे वैज्ञानिकों का क्या योगदान है?
0: प्राकृतिक रंगीन कपास का प्रश्न है, वो मध्य प्रदेश की देन है। पूरे विश्व को मध्य प्रदेश ने दिया। के अलावा हमने गुलाबी, हल्का हला, ये रंग भी विकसित किए। और प्राकृतिक रंगीन कपास अभी थोड़ी सी व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण व्यावसायिक रूप से किसानों के खेत में ये नहीं लग पा रहा है, लेकिन आने वाला समय हम इसको किसानों को भी लगाना संभव होगा।
1: सर, नीम आधारित भी कुछ कीटनाशकों का हम प्रयोग
0: करते हैं? नीम आधारित कीटनाशक का उपयोग तो बहुत महत्वपूर्ण है, और आज की जो हमारी वर्तमान अवस्था की अनुशंसा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुशंसा है कि शुरू के 60 दिन तो केवल नीम आधारित कीटनाशक ही कपास में डालें। हम कहते हैं कि 5 ml नीम तेल 1 लीटर पानी इस अनुपात में मिलाएं। किसान क्या करता है कि 15 लीटर पानी टंकी में लेता है साधन, तो अब 75 ml लगता है, मिलीलीटर लगता है, तो वो सीधी उड़ेल देता है आपकी टंकी में और छींटने लगता है अपना नीम तेल। क्या होता है कि थोड़ी देर बाद नीम तेल घुलनशील नहीं है, तो पानी में तैरता हुआ रहता है तेल बिंदु के रूप में, और नोजल चोक कर देता है, किसान परेशान होता है। तो थोड़ी सावधानी यदि पंसारी के दुकान के नीम तेल में किसान भाई करते हैं तो इसकी बहुत उपयोगिता है। यानी 100 रुपये लीटर में किसान बड़ा अच्छा कीटनाशक बना लेगा। उसके लिए करना ये है कि केवल 1 लीटर पानी में आपका 75 ml नीम तेल को मिलाना है, हाथ से मथना है। मथने के बाद फिर उसको टंकी में डालें, 15 लीटर पानी में डालें, और वहाँ भी एक सावधानी देने की आवश्यकता है। चिपको, जो आम बोलचाल की भाषा में किसान भाई बोलते हैं, टीपाल या सेंडोविट के नाम से मिलता है चिपकने वाली दवाई, वो मिलाना है। कभी कभी ये होता है कि गांव में ये टीपाल और सेंडोविट मिलते नहीं
1: जी।
0: तो उसके लिए भी मैं किसान को एक तरीका बता देता हूँ। साधारण तरीका है, हर घर में डिटर्जेंट हो गई, कपड़े धुलते ही हैं, कपड़े धुलने का पाउडर हर घर में, तो आधा चम्मच एक टंकी के पीछे यदि वो पाउडर डाल लेगा तो उससे भी हम टीपाल या सेंडोविट या चिपको का काम ले लेंगे। तो ये करेंगे तो निश्चित रूप से नीम तेल की भी उपयोगिता है।
1: सर, कीटनाशकों का उपयोग कब और किस प्रकार हमें करना चाहिए?
0: कीटनाशकों का उपयोग आजकल जो नया हमारा विज्ञान कह रहा है कि कीटनाशकों का आवश्यकता मूलक, यानी प्रत्येक कीट के लिए एक पैमाना हमने निश्चित कर रखा, इतना प्रकोप होगा तभी हमें दवा डालना है, उस पैमाने पर कीट का प्रकोप आने पर ही कीटनाशक उपयोग करें, अन्यथा हमको कोई उपयोग की जरूरत नहीं।
1: अंत में आप हमारे किसान भाइयों को और क्या जानकारी देना
0: मैं
1: चाहेंगे?
0: अंत में किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा महत्वपूर्ण रूप से कि किसान भाई कीटनाशक की मात्रा में मनमानी, तो मात्रा में मनमानी ना करें, पहली बात। दूसरी, एक दवा का लगातार उपयोग से बचें। यदि एक दवा का बार बार उपयोग करेगा तो निश्चित रूप से कीड़ों में कीटनाशक के प्रति प्रतिरोधकता विकसित होगी और वो कीटनाशक फिर कोई काम की नहीं रहे। और कॉकटेल यानी मिश्रण बना करके दो दो तीन तीन क्या करते हैं कि किसान जाता है विक्रेता के पास, आदान विक्रेता के पास, आदान विक्रेता व्यवसायी है, अपना फायदा दिखता है, वो एक के साथ दो तीन उनने कहा ये फफूंद नाशक भी ले जाओ, ये कीटनाशक भी ले जाओ, ये वृद्धि नियामक भी ले जाओ, तो वो 3-4 तरह की चीज़ें ले दे देता है। अब क्या होता है, कई बार ये इनमें आपस में मिलनशालिता नहीं और वो विपरीत असर कर देते हैं, फसल प्रभावित होती है, सूखने लगती है, फिर किसान दौड़ता है वैज्ञानिक के पास, अपने महाविद्यालय में या कृषि विज्ञान केंद्र में, फिर वैज्ञानिक कहता है भैया आपने क्या किया था, ये गलती की आपने, इसके आप परिणाम देख रहे हैं। तो मिलान ना करें, कॉकटेल से बचें। यदि करना ज़रूरी है तो आजकल तो रेडीमिक्स आ रहे हैं, यानी मिक्सचर, जो मिश्रित कीटनाशक बाजार में चलन में, तो मिश्रित कीटनाशकों को प्राथमिकता दें, उन्हीं को लें। तो ये अंत में कहना चाहूंगा, धन्यवाद, राम राम किसान।
1: आपने

0: हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे किसान भाई भी ये जानकारी के माध्यम से अपना बहुत अच्छे से कपास को उत्पादन करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: खूब इन्होंने जानकारी सोई दई डॉक्टर सतीश परसाई ने कि कैसे कपास की खेती में भैया हारे कैसे आमदनी बढ़ ले सकत हैं। और अब हो रहा है किसानवाड़ी में एक मनोरंजन को टाइम, तो भैया हरो अपन और सुनत है मन बहलाओ के लावे माता रानी की भक्ति में डूबी जसुरीली प्रस्तुति बहन गिरजाबाई की आवाज में।

0: किसान भैया हरो, आबे वाली फसलों के लाने भी काम काज के लावे भी अपन के तैयारी बहुत जरूरी होत है कि अगर तैयारी अच्छी रहे थे तो कहते हैं कि उत्पादन भी खूब अच्छो मिला था। तो रबी की फसलों की तैयारी कैसे करें और की पूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रतनदीप सोनी। तो अपन सुनते हैं जा लघु वार्ता।
1: आज हम आपको रबी फसलों की तैयारी के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। सबसे प्रमुख बात है रबी फसलों के लिए, यदि गेहूं के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो गेहूं की खेती बारानी खेती भी होती है, अर्धसिंचित भी होती है और सिंचित खेती भी होती है। इसी तरह से रबी फसलों में दलहनी फसलें हैं, चना है, मटर है, मसूर है, इनकी खेती होती है। इसी तरह से आपका तिलहनी फसलों में सरसों हैं, अलसी है, कुसुम है, इनकी खेती होती है। कहने का मतलब ये है कि फसलें कोई भी यदि किसान भाई लेते हैं, उन सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तम किस्म का बीज होना चाहिए। उत्तम किस्म मतलब जिसकी आनुवांशिक शुद्धता हो, दूसरी बात है उसका अंकुरण प्रतिशत अच्छा हो, तीसरी बात यह है कि उसमें कोई इनर्ट मैटर माने अपशिष्ट पदार्थ न हो जो उसके साथ मिले हुए हो। इसके लिए बीजों का श्रेणीकरण किया गया है कि प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए, कम से कम प्रमाणित बीज, आधार बीज ये किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं जिनकी अंकुरण क्षमता सुनिश्चित होती है और उनकी आनुवांशिक गुण सुनिश्चित होते हैं। यह बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित भी होता है, तो इनको बोना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको जो भी फसल हम लगा रहे हैं उनको लगाने के लिए जो वैज्ञानिक अनुशंसाएँ हैं फसलों को लगाने के लिए, बीज दर, कतार से कतार की दूरी, उनका अनुशंसा अनुसार पालन अवश्य करना चाहिए किसान भाइयों। इसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण जरूरी बात यह है कि फसल हम कोई भी लगाएंगे उसके पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अब पोषक तत्वों की आपूर्ति का प्रयास यदि उस खेत में जिसमें लगा रहे हैं उस खेत की मिट्टी का परीक्षण करके प्रतिवेदन में जो अनुशंसाएँ हैं उन अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग होता है तो फसल के उत्पादन में पोषक तत्वों के कमी के कारण या अधिकता के कारण उत्पादन प्रभावित नहीं हो पाता है। ये दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरी बात यह है कि जो भी हम बीज लगा रहे हैं वह बीज रोग मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब कि उसमें रोगों का प्रादुर्भाव न होने पाए, और रोगों का की उपस्थिति मिट्टी के अंदर भी होती है, हवा के अंदर भी होती है, पानी के अंदर भी हो सकती है, इसलिए उनका बीजोपचार करना नितांत आवश्यक है। रोगनाशी रसायनों से या जैविक फफूंदनाशी से यदि हम करते हैं और करके बोते हैं तो हमारा पौधा स्वस्थ होगा, और जब स्वस्थ होगा, रोग मुक्त होगा, तो उसकी पैदावार बेहतर होगी। तीसरी बात यह है कि बीज उपचार पोषण में प्रबंधन में सहयोग के लिए और विशेष कुछ पोषक तत्वों के उपलब्धता के लिए किया जाता है, तो जैविक उपचार होता है। अनाज वर्गीय फसलों में एजोटोबैक्टर के माध्यम से होता है और दलहनी फसलों में विशेष रूप से राइजोबियम कल्चर से होता है, जो कि वातावरण के नत्रजन को एकत्र करती है और पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। ठीक इसी तरह से फास्फोरस तत्वों की उपलब्धता, जमीन के अंदर जो फास्फोरस तत्व उपलब्ध है वह आसानी से उपलब्ध हो सके, उसके लिए पीएसबी कल्चर का उपचार करते हैं, ये पोषण के संबंध में। इसके अतिरिक्त ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम फसल बो रहे हैं तो उसको पोषक तत्व तो तरल रूप से मिलते हैं, तो सिंचाई के साधन हों, पर्याप्त हों, फसल की मांग के अनुसार हों, यह व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही साथ जो हम पोषक तत्व तो दिए हैं, सिंचाई पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन खेत में उगने वाले यदि खरपतवार हैं उनका समसामयिक नियंत्रण नहीं हो पाया तो उनकी वजह से उत्पादन में गिरावट आती है, और उत्पादन गिरावट आती साथ ही गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए समसामयिक खेत में उगे हुए खरपतवारों का नियंत्रण भी आवश्यक है। उसके लिए यांत्रिक साधन हैं जो मानव चलित भी हैं, इंजन चलित भी हैं, बैलों से भी चलने वाले हैं, तो जितना अपने क्षेत्र है उस हिसाब से व्यवस्था अनुसार अपन कर सकते हैं किसान भाइयों। और खरपतवारों का नियंत्रण सामान्यतः फसलों में 30 से 35 दिन की अवस्था में पूर्ण होना चाहिए। ऐसा यदि हम प्रारंभिक तौर में रबी फसलों की तैयारी में करते हैं तो हमारी फसलें बहुत अच्छा उत्पादन दे सकेंगी।
0: और किसान भैया हरों, अब बता दें आपके मंडी के भाव। गेहूं 2400 से 3016 रुपया प्रति क्विंटल भाव में बिकत देखोगा। चना 6500 से 7600 रुपया प्रति क्विंटल के भाव में रहो। उड़द की बात करें तो उड़द 9350 रुपया से 9911 रुपया प्रति क्विंटल के भाव में बिकत देखो भगव। लेकिन भैया हरों, मंडी के भाव फसल की किस्म, गुणवत्ता और आवक जावक के हिसाब से घटत बढ़त रहे थे। तो भैया हरों, अपनी मंडी के पास के भाव देख सकत हैं, पास की मंडी के भाव आप और देख सकते हैं। तो भैया हरो, अब देखो घड़ी की जो टिक टिक है, बा कह रही है कि रानी बिन्ना अब हो जाओ तुम, तनक चिमानी हो रही है बिरिया की टाइम। तो भैया हरो, अब देव हमें अनुमति। बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज की किसान बाड़ी कार्यक्रम में जो आपने जानकारी हासिल करी वह आप लोगों के लाने बहुत उपयोगी हुई है। तो भैया हरो, आप सबकी मंगल कामना के संगे अपनी रानी बहन के दें अनुमति और स्वीकार करें रानी बहन की। राम राम, जय सीताराम।
2: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। कार्यक्रम का विषय है हर घर बेहतर जीवन।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में और जिन अलग अलग पहलों की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हो। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
3: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में, पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट आपको, उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड बी 5 साल, कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
2: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए।
3: जी
2: डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
4: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो फैसला हो गया कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे, इसको बनाने का टाइम लगेगा,
2: बिल्कुल
4: 4-5 साल 3 साल लगते हैं बनाने में, इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीज़ों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इम्पैक्ट। लेकिन एट अ गुड बेंच मार्क इज, आई एग्री विद सर दैट 5 years इज अ गुड बेंच मार्क फॉर मैनी ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट विल एंड हैव चेंज्ड the ease of living for our families.
2: Okay.
4: तो उस benchmark से आपसे आगे बात बढ़ाते।
2: जी बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, जो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
3: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाए, घर से ज़्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें घर में रहकर आप, आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार हैं उसकी देखभाल करिए आप, तो आप मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है,
2: एक होलिस्टिक
3: पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है उसका, वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
2: बिल्कुल,
3: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी
2: जी, बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रही थी, और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जिस इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
3: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी, इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, साथ ही साथ जो सरकार एक ओवरऑल होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें चेंज लाया, जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है ये, हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये केवल स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ है, आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था। इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया, और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था, ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में
2: जी।
3: तो ऐसा नहीं, घर केवल उनके लिए अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है, वो घर है, इसलिए वो सबसे पहला तो उनको कि साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे अभी, क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे, आगे बिजली की बात करिएगा, ये सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
3: और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है, तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं, उनको इस भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का एक,
2: यानी काफी लेयर्ड टर्म है जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या है सर इस पे?
4: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है, और शायद उससे पहले आता है, कि टॉयलेट हो
2: जी,
4: घर में एक टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना, या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना, या उस तक का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें तो प्रधानमंत्री जी ने आपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गाँव में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस हैं, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए,

0: खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, जो काम पूरा नहीं हुआ था
1: जी।
0: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो साफ पानी है और एक एनवायरनमेंट है जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास, गांव में सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं की बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट हमारे पास है कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी, और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
1: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे, दोनों की मेरे ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो उसे पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
2: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज हमने किताबें पढ़ी है, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में देखा, राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था, वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी नियर का, जाना आना और तैयारी। ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था, इकोनॉमिक्स में बोलते ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
1: बिल्कुल।
2: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, वो सीन नहीं है जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में। यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था,
1: बिल्कुल।
2: टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैं ये कहूंगा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर,
1: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा, इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा, शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है।
0: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया
2: उस
0: घर की तो दशा उसी दिन बदल गई,
1: उसी दिन बदल गई।
0: अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ, पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इस काम का, मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा। उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे चल रहा था उस टाइम पे एवरी सेकंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था, एवरी सेकंड। इसका थोड़ा सा अगर मैथ्स करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैथ्स है ये, रिफ्लेक्ट कर आप सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टिमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए आप सोचो, आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं, जिंदगी और है, कल बदल गया, ये स्पीड है। तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए, स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 3.2

0: 3 करोड़ 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं और वो 17% था और आज हमें 79% 80%। 17 से 80 की जर्नी और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाली बात। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और वो पता है कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राज़ील की 21 करोड़ अमेरिका 33 ब्राज़ील 21 और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5-7 साल के अंतर अमेरिका इंग्लैंड ब्राज़ील उतने बड़े हाउस होल्ड्स में उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की, ये सर खास बात है इस सरकार में जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ है। और हेल्थ से जोड़ूं अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स है पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
1: जी,
0: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो है वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
1: जी,
0: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई, ये 2 मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
1: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
0: स्वच्छ हो भारत, गांव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जांपल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया, टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई और सबसे बड़ी बात इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
1: जी।
0: ठीक है, आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाया, राज्यों ने भी दिखाई, और उसको करने के लिए जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूँगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
1: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में।
2: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो में राइट
1: जी,
2: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूँ, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हूँ तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको, कोने पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको नेशनल मीडिया सेंटर के कोने पे, वगैरह वगैरह। ये अपने आप नहीं आया है, सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए कुछ चीजें समझने के, हर बात के लिए हम सरकार को बोलें कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती।
1: बिल्कुल
2: राइट, मेरा ये मानना है कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा, सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती, सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती।
1: बिल्कुल,
2: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं तो, कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो एश्योरेंस है, आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों
1: अलग अलग नजरियों
2: दोनों के रिस्पॉन्स में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म, घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और भी 10 उपयोग है, मिक्सी कैसे चलाएगा, मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिल बट्टे पे
1: जी।
2: आधा घंटा आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे सिल बट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जैसे बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब। और जब पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा, महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं, फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा, वगैरह वगैरह। उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के आप उसके देखिए बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है जो
1: जन जनता की कैटेगरी
2: में जी। तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
1: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रासरूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
0: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में और फिर दो उसके बाद आए। पहले जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद में लाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना है, इन पेशेंट इलाज होना है, आउट पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले, पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े
1: जी,
0: ये उसका मेन पर्पस है। अब सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टीमेट या 2014 के एस्टीमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टीमेट कहते थे कि हमारे देश में 9 करोड़ लोग, डिफरेंट एस्टीमेट्स हैं, बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
1: जी,
0: इतने लोग, और वो किस तरह से, और इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है तो क्या होगा, या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो
1: जी।
0: और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना, तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये, कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब ये बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियाँ कवर हो रही हैं ना उसमें कोई भी छूटी नहीं है। 1900 से ज़्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई है उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डालनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15 इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं इन परिवारों को। तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों के एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया। और अभी जो NSSO का साइकिल आया उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पे एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बारी कोशिश करो डालने की, तो हर रोज़ लगभग 90,000 से 1 लाख लोग व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर। आजकल अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फ़ायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी एग्जैक्ट
2: जी,
0: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2 लाख करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया है वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है और ऐसे ये एक यूनिवर्सल हेल्थ एश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है जो कि आम जिंदगी को बहुत बेहतर करता है, और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
1: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से, शायद वो भी काफ़ी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से।
0: इन स्कीमों से, ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
1: जी,
0: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर, फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक नया, एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है 6,000 की पॉपुलेशन के लिए, उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब के वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है। वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए हैं, या पिछली बार आपने देखा मेरा डायबिटीज़ मैंडेटेड है हर साल चेक होना, जाइए वहाँ पे जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए, वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें तो। एक्सेस बढ़ना एक फ़र्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ जेब के ऊपर, मेरे पर्सनल खर्चे के ऊपर, मेरा फाइनेंशियली मुझे सिक्योर रहना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक बड़ा ही नोबल मिशन हुआ है, बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत हद तक आप भी आगे जाना है।
1: बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पवन जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये नवंबर 2023 में स्कीम आई थी। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं या जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस स्कीम की, इस कदम की, इस योजना की क्या भूमिका है?

0: फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीज़ें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए लॉन्च किया था वो, इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज़्यादा विकट है। तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए जन सेवा की कसौटी जो सरकार काम कर रही है, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव आया। इसमें ये भी आम आदमी है
1: जी।
0: जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कह रहे थे, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। तो आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व ये है
1: जी।
0: और आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कह रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
0: कवरेज क्या है नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसका कवरेज, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूँ कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊँगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा
1: जी।
0: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या है? कोई नहीं,
1: कोई नहीं। बहुत खूब, मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा, विषय था हर घर बेहतर जीवन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
4: सदी हो तुम या यूं कहें वक्त की रफ्तार, कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब लेते हैं एक अंतराल।

सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में सुनिए समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to rupees 10,000.
1: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
2: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
3: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
2: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
4: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
5: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में

0: पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
1: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को AI का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है AI का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
3: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
4: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
5: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ ₹96.79 पर बंद हुआ।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
7: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं। इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
1: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees, no changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says, growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential, calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month to ensure AI safety and tackle deepfakes, announces Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in the national capital this evening.
9: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crores and reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000.
8: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings.
9: GST council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
8: Ms. Sitharaman said the council has also taken steps to facilitate the smoother movement of goods. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today.
10: आज टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
8: Mr. Modi also highlighted the growing challenges of deep fakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat.
10: Deep fakes kitni badi chunauti ban chuki hai ye bhi hum dekh rahe hain isliye zaruri hai ki hum iske liye ek global framework par kaam kare sarkaren technology companies telecom operators aur financial institutions sabhi ko is framework se judna मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
8: Prime Minister Modi said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said the Digital India campaign has been the core of the country's digital transformation, with the mobile phone placed at the center of the initiative to bridge the digital divide and make technology more accessible to all. Mr. Modi said that 5G connectivity has now reached every district of the country. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav has said that the government plans to release a consultation paper on the future regulations of artificial intelligence, AI, within the next month, with a key focus on ensuring AI safety and addressing the growing threat posed by deepfakes. The minister was speaking

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनिए, यहूदी फिल्म से ये गीत गाया है मुकेश ने, शैलेंद्र के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: अगला गीत सुनिए हम दोनों फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत है जयदेव का।
1: मैं जिन

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में कश्मीर की गली से। ये गीत लिखा है SH बिहारी ने और संगीत है ओपी नैयर।

और इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम से अब लेते हैं विदा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदिनी रतले। हमारे श्रोताओं, आपको ज्यादा इंतजार ना कराते हुए आगे बढ़ते हैं पहले फरमाइशी खत की ओर। और ये हमें लिखा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुज्ताबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बागाकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और एक और ख़त है घंटा घर चौक खंडवा से, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा

संदेश भी दिया है, पौधे लगाओ, पर्यावरण को सुरक्षित रखो। संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, आप सभी की फरमाइश पर सुनिए ये गीत मल्हार फिल्म से, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में।

और अगली फरमाइश है फिल्म जीने नहीं दूंगा। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में ये गीत सुनेंगे आप, और फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं ग्राम महेशवाड़ी, तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न ढांडे, वाल्मीक ढांडे, निनाजी ढांडे, स्वप्निल ढांडे, अजय खिरोडकर, इसके अलावा कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली, कोटवा नारायणपुर से बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबेहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय से।

और अब अगली फरमाइश सुनिए छबीली फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज़ में। इस गीत की फरमाइश की है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती पूजा जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक के आरसाहू अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री ने।

0: जावा।
1: और अगली पसंद अब सुनिए स्वीकार किया मैंने फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज। आप सुनेंगे फरमाइश करता सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश की फरमाइश पर। एक और ख़त है जिसमें किसी भी गीत की फरमाइश है, तो इसमें नाम मैं कुछ नाम पढ़ देती हूँ, पता बहुत साफ नहीं है तो आपसे गुजारिश है कि अगली बार इसमें पता थोड़ा साफ लिखिए। नाम है अनिल, फलक, पूजा, सुषमा, सीमा, मीनू जोशी। सुनिए ये गीत।

0: और अगले गीत के फरमाइश करताओं के नाम हैं बेरेडी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची, तनु करमरकर, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति, रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, और ये गीत है आरती फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: कैसे?
2: मालूम नहीं, चलो मुझे घर पहुंचा दो।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम, और अगली फरमाइश प्यार भरे नमस्कार के साथ भेजी है खामोशी द म्यूजिकल फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ में, और फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता, सिद्धांत प्रिंस, एकांश गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली श्वेता, सुमित कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी, इसके अलावा गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमा नंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, सुनिए ये गीत।

बहुत ही प्यारे संदेश, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, संदेश और आदाब के साथ। अगली फरमाइश है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सारीमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, छठिया पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा, मुस्तफ़ाबाद दिल्ली से लाल बाबू देवाना और गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले। और ये गीत है खिलाड़ी फिल्म से अभिजीत अलका याग्निक की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारे आपकी फरमाइश कार्यक्रम से अब नंदिनी रतले को दीजिए आज्ञा। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए फरमाइशी पत्रों के साथ। नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आनंद लीजिए पंडित कुमार गंधर्व के ख्याल गायन का। राग है हमीर।

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे थे पंडित कुमार गंधर्व से ख्याल गायन राग था हमीर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और

0: डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको कुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in National Capital this evening.
3: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now, that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
2: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST Council has recommended common standards for notices and proceedings. Ms. Sitaraman said the council had also taken steps to